मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 5 जुलाई सन 2026। सवेरे के 5:58 हो रहे हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का

0: किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नहीं अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंघम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव

0: ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, अनन्य प्रेम और पूर्ण समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर वे संतों की संगति में भजन गाने लगी। उनके लिए कृष्ण कोई विग्रह नहीं बल्कि उनके जीवन का एकमात्र सच थे। उनका प्रेम माधुर्य भाव का था जिसमें उन्होंने ईश्वर को अपना सर्वस्व स्वीकार किया। आइए अपना तन और मन प्रभु के चरणों में अर्पित कर हम भी ईश्वर के राह से जुड़ने का प्रयास करें।

मीठी वाणी सुनने वाले के मन से क्रोध और कटुता मिटाकर उसे सुखा देती है। साथ ही जब हम मधुर और आदरपूर्ण शब्द बोलते हैं तो हमारे अपने भीतर का अहंकार और ईर्ष्या शांत हो जाती है, जिससे स्वयं के तन और मन में एक गहरी शांति और शीतलता का अनुभव होता है।

गुरु की महिमा का मैं कैसे करूं बखान, गुरु से ही तो किया है ये सब अर्जित ज्ञान। ऐसा कोई कागज नहीं जिसमें वो शब्द समाए, ऐसी कोई स्याही नहीं जिससे सारे गुरुगुण लिखे जाएं।

तसव्वुर में मदीने की गली का नज़ारा रहता है, लबों पर हर घड़ी आपका नाम प्यारा रहता है। झुका देता है सर अदब से ये सारा ज़माना भी, जिसे मेरे नबी के आस्ताने का सहारा रहता है।

भगवान सूर्यदेव को सनातन धर्म में चराचर जगत की आत्मा और साक्षात प्रत्यक्ष देवता माना गया है, जिनकी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन संचालित होता है। वेदों और पुराणों में सूर्यदेव को तेज, आरोग्य, ज्ञान और सफलता का मुख्य स्रोत बताया गया है। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सूर्यदेव की ये स्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान,
1: एपिसोड 194।

भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी बलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:40 हो रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत मानववाद है। दुनिया के तमाम सारे मनुष्यों को समभाव से देखना चाहिए। मानव मानव पहले है और उसके बाद राजनीतिक, अर्थशास्त्री अथवा वैज्ञानिक। दुनिया का सबसे बड़ा समाजवाद यही है। संपूर्ण दुनिया से वर्ग, जाति आदि परंपरावादी व्यवस्था को समाप्त करके संपूर्ण दुनिया एक ऐसे समाज की स्थापना में रत हो जाए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता, अधिक समानता, अधिक न्याय, अधिक सुरक्षा और उच्चतर जीवन स्तर निर्मित करने का अवसर प्राप्त हो। मेरा उद्देश्य नैतिक पूर्ण है, अतः उसकी प्राप्ति के निमित्त अपनाए जाने वाले सभी साधन नैतिक हैं। ऐसे नैतिकवादियों पर विश्वास करना उचित नहीं जो स्वयं शराब पिए और अन्य को जल पीने का आदेश दें। मानवता तथा उत्तमता के सिद्धांत ऐसी ही बातें हैं जिन पर कोई विवाद नहीं किया जा सकता। हम धर्म और विज्ञान के समन्वय से युग की महान सेवा कर सकते हैं। साथ ही वैज्ञानिकता एवं तार्किक विवेचना में भी समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। इससे जीवन में स्पंदन, चेतना और उत्साह भरता है। इन सभी से ऐसे स्वर्ग की कल्पना की जा सकती है जो स्वयं पृथ्वी पर है। इस प्रकार धर्म का नवीन स्तर तथा मुक्ति का आनंदमय मार्ग सुस्थिर किया जा सकता है। मनुष्य का जीवन उनकी चेतना से निर्धारित न होकर सामाजिक जीवन से निर्धारित होना चाहिए। उसी से चेतना का निर्माण होता है। इस प्रकार मनुष्यों को चेतना उनके अस्तित्व का निश्चय नहीं करती, प्रत्युत उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना का निश्चयन करता है। अतः समाज व्यक्ति से ऊपर है। विश्व निरंतर गतिशील है। उसकी कोई भी वस्तु कभी भी स्थिरता व अपरिवर्तनशीलता की स्थिति में नहीं रहती, वरन सदैव बदलती रहती है। मानव समाज सदा से बदलता आया है। वो जो कल था आज नहीं है, जो आज है वो भविष्य में नहीं रहेगा। सामाजिक परिवर्तन का ये परिवर्तन कभी धीरे धीरे हुआ है और कभी शीघ्रता से हुआ है। ये कभी गुणात्मक होता है तो कभी भावात्मक। इस प्रकार प्रकृति अथवा जगत, जिसमें मानव समाज भी शामिल है, में पूर्णतः पृथक और स्वतंत्र सत्ता रखने वाली वस्तुएं नहीं होती हैं। अर्थात ये संसार वस्तुओं का या दृश्यों का केवल जमघट नहीं होता, वरन एक ऐसी सुसंगठित एवं एकीकृत संपूर्णता होता है जिसमें वस्तुएं, दृश्य इत्यादि एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे द्वारा निश्चित होते हैं। दुनिया का निरंतर विकास ये कहता है कि भौतिक तत्व अथवा वो तत्व जिसमें चेतना नहीं होती, उस तत्व से पहले ही कहीं विद्यमान था, जिसे विचार तत्व या ऐसा तत्व कहा जाता है जिसमें चेतना होती है। उसका अर्थ ये भी होता है कि बाह्य सत्य मस्तिष्क में स्वतंत्र रूप में स्थापित रहता है। इसका तात्पर्य ये भी होता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों की कोई पृथक सत्ता नहीं होती। वे बाहरी वस्तुओं के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रतिबिंबों की भांति होती है। इस प्रकार उनकी उत्पत्ति बाह्य सत्य से होती है। अतः ये सिद्ध हो जाता है कि भौतिक तत्व ही वास्तविक एवं प्राथमिक सत्य होता है। मानव मस्तिष्क, आत्मा, चेतना आदि सब इस तत्व के अति विकसित रूप होते हैं। मानव में

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमिसंस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमिकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांतेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 यावत् भारते 5 सेमीकंडक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21तमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक सञ्जालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्ष नेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्त मासस्य 23-23 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलै मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अन्त्यद्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखीकरिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का

0: डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा।
3: हम अपने स्वास्थ्य के विषय में चाहे दिन रात कितना भी सोचते रहें तथा आहार संबंधी नियमों का पालन करते रहें या अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कितने ही पौष्टिक पदार्थों का सेवन करते रहें, किंतु स्वच्छता एवं सफाई के बिना ये सब व्यर्थ हैं, क्योंकि स्वच्छता से ही स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। स्वच्छता से हमारा तात्पर्य केवल शारीरिक स्वच्छता से नहीं वरन अपने घर और अपने आसपास के वातावरण से भी है। इस विषय में आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन ताजे पानी से स्नान करें, तत्पश्चात त्वचा को तौलिये से भली भांति रगड़कर सुखाएं। दिन भर में कम से कम 2 बार मुख और दांतों की सफाई अवश्य करें। हमेशा साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पीने का पानी एवं अन्य खाद्य पदार्थ भी स्वच्छ होने चाहिए, क्योंकि अस्वच्छता से रोगों की उत्पत्ति होती है। आपका घर साफ सुथरा, हवादार एवं प्रकाशयुक्त होना चाहिए। सामान्य वस्त्रों की भांति सदैव स्वच्छ अंतर्वस्त्र ही धारण करें तथा नियम पूर्वक बदलें। वस्त्रों की भांति बिस्तर भी साफ होना चाहिए। बिस्तर की चादर को प्रतिदिन बदलें और अन्य वस्त्रों की भांति धूप में सुखा लें। कोशिश करें कि घर के किसी भी हिस्से में सीलन तथा अंधकार न हो। अपने पहनने के वस्त्र, तौलिया, कंघा आदि के विषय में भी पूरा पूरा ध्यान रखें। ये चीजें ना तो किसी को प्रयोग में लाने दें और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति की ऐसी चीजें प्रयोग में लाएं। इससे रोग के जीवाणु फैलते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कदापि ना करें जो गंदे या बासी हों, अथवा जिन पर मक्खियां आदि बैठ चुकी हों। किसी की जूठी चीज या जूठे बर्तन का प्रयोग कदापि ना करें और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को अपने जूठे पदार्थ अथवा बर्तन का प्रयोग करने दें। अपने परिवार के सदस्यों के बीच भी इस नियम का पालन करें तथा आरंभ से ही बच्चों को अलग अलग खाने की आदत डालें। रात्रि को सोने से पहले भी अपने दांतों एवं मुख की अच्छी तरह सफाई कर लें और प्रातः उठने पर भी यही काम करें। खांसी, जुकाम आदि संक्रामक रोगों में खांसते अथवा छींकते समय अपने नाक और मुंह के आगे रुमाल रखें ताकि रोग के जीवाणु फैलने ना पाएं। यदि घर में कोई रोगी हो अथवा आपको रोगी के पास रहना ही पड़े तो रोग जैसा भी है उससे सुरक्षित रहने तथा स्वच्छता के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बहुत से व्यक्तियों को जगह जगह थूकते रहने की आदत होती है, ये ठीक नहीं है। यदि आप में भी ये आदत है तो इसे त्याग दें। सप्ताह में एक दिन बच्चों तथा अपने नाखूनों को अवश्य काटें। नाखूनों में जमा मैल भोजन के द्वारा पेट में पहुंचकर संक्रमण भी पैदा कर सकता है। अक्सर आपने देखा भी होगा कि बच्चे नाक और कान में उंगली डालते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कार दें ताकि बच्चे जीवन पर्यंत उसका पालन करें। खाना खाने के पहले हाथ अच्छी तरह धो लें। स्वच्छ रहकर ही आप अपने तथा परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार याद दिला दें, आज रात्रि 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आज रात्रि 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7:10 होने को है। प्रस्तुत है खेती की बातें।
4: किसान भाइयों नमस्कार। खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है बरसात के मौसम में किसान भाई रखें अपनी सुरक्षा। किसान भाइयों, बरसात का मौसम खेती के लिए वरदान माना जाता है। इसी मौसम में धान की रोपाई, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, उड़द, मूंग और अन्य खरीफ फसलों की बुआई का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। समय पर होने वाली वर्षा अच्छी पैदावार की उम्मीद जगाती है, लेकिन यही मौसम कई प्रकार की दुर्घटनाओं और बीमारियों का कारण भी बन सकता है। इसलिए खेती के साथ साथ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना भी प्रत्येक किसान की जिम्मेदारी है। किसान भाइयों, बरसात शुरू होते ही मौसम का स्वभाव तेजी से बदलता है। कभी तेज धूप, कभी तेज बारिश, कभी आंधी और कभी आकाशीय बिजली। इसलिए खेत पर जाने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें। यदि मौसम विभाग ने भारी वर्षा, तेज हवा या बिजली गिरने की चेतावनी दी हो तो खेत का कार्य कुछ समय के लिए टाल देना ही समझदारी है। बरसात के मौसम में सबसे बड़ा खतरा आकाशीय बिजली से होता है। यदि आसमान में बादल गरज रहे हो या बिजली चमक रही हो तो तुरंत खेत का कार्य बंद कर देना चाहिए और किसी मजबूत या पक्के भवन में चले जाना चाहिए। कभी भी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश से बचने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऊंचे पेड़ों पर बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है। बारिश के दौरान बिजली से करंट लगने का भी खतरा काफी बढ़ जाता है। खेतों में पानी भरा होने के कारण यदि कोई बिजली का तार टूटकर गिर जाए तो करंट पानी के माध्यम से दूर दूर तक फैल सकता है। इसलिए टूटे हुए तार के पास बिल्कुल ना जाएं। यदि कहीं ऐसा तार दिखाई दे तो तुरंत बिजली विभाग को सूचना दें। मोटर पंप या ट्यूबवेल चलाते समय गीले हाथों से स्विच ना छुएं। यदि किसी उपकरण में करंट आने का संदेह हो तो स्वयं उसकी मरम्मत ना करें बल्कि प्रशिक्षित व्यक्ति से ही ठीक करवाएं। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव जंतु अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। खेतों में पानी भर जाने के कारण वे मेड़ों, झाड़ियों और फसलों के बीच छिप जाते हैं, इसलिए खेत में हमेशा मजबूत जूते या गमबूट पहनकर जाएं। यदि रात में खेत जाना पड़े तो टॉर्च अवश्य साथ रखें। बिना देखे झाड़ियों या घास में हाथ ना डालें। साथ ही किसान भाइयों, बरसात के मौसम में मधुमक्खियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि तेज बारिश, आंधी या पेड़ों की कटाई के कारण मधुमक्खियों के छत्ते प्रभावित हो सकते हैं और वे आक्रामक हो सकती हैं। बरसात के मौसम में खेतों में फिसलन बहुत अधिक हो जाती है। मेड़ों पर चलते समय संतुलन बनाए रखें। जल्दबाजी में दौड़ने या भारी बोझ उठाकर चलने से बचें। यदि खेत में गहरा पानी भरा हो तो पहले उसकी गहराई का अनुमान लगा लें। साथ ही बरसात के मौसम में ट्रैक्टर, पावर टीलर, रीपर, थ्रेसर और अन्य कृषि यंत्रों का उपयोग भी सावधानी से करना चाहिए। कीचड़ में ट्रैक्टर फिसल सकता है, इसलिए तेज गति से वाहन ना चलाएं। ट्राली में निर्धारित क्षमता से अधिक वजन ना रखें। साथ ही किसान भाइयों, धान की रोपाई के समय किसान लंबे समय तक पानी में खड़े रहते हैं। लगातार कई घंटे तक पानी में रहने से पैरों में संक्रमण, खुजली और त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, इसलिए काम पूरा होने के बाद पैरों को साफ पानी से धोएं, अच्छी तरह सुखाएं और यदि आवश्यक हो तो एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग करें। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का उपयोग करते समय विशेष सावधानियां बरतें। तेज हवा या बारिश के समय दवा का छिड़काव ना करें। छिड़काव करते समय मास्क, दस्ताने, चश्मा, जूते अवश्य पहनें। दवा की अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करें। बरसात में दूषित पानी के कारण डायरिया, हैजा, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। हमें हमेशा साफ और सुरक्षित पानी ही पीना चाहिए। यदि संभव हो तो पानी को उबालकर उपयोग करना चाहिए। साथ ही भोजन को ढककर रखें और बासी भोजन खाने से बचें। साथी भैया, खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को स्वच्छ कर लेना चाहिए। बरसात के मौसम में मच्छरों की संख्या भी तेजी से बढ़ जाती है। यही मच्छर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। घर और पशुशाला के आसपास पानी नहीं जमा होने देना चाहिए। पुराने टायर, टूटे बर्तन और गमलों में जमा पानी नियमित रूप से खाली करते रहना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की खेती की बातें। अब हमें कल तक के लिए अनुमति दें। किसान भाइयों, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज रात्रि 9:30 पर और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आज रात्रि 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम सुनिएगा आज सवेरे 7:31 पर। सवेरे 8:45 पर आप सुनेंगे गोल्डन हिट्स। आज सवेरे 10:00 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। धरती गाती है कार्यक्रम में आज सवेरे 9:20 पर बीना के गाए रुहेलखंडी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। आपका पत्र मिला, ये कार्यक्रम आप सुनिएगा आज दोपहर 12:05 पर। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी संडे। बाल श्रोताओं के साप्ताहिक कार्यक्रम बालवाटिका के अंतर्गत आज दोपहर 1:15 पर श्री शमशेर अली की लिखी बाल कहानी सच्चाई की जीत सुनवाई जाएगी। लोकधारा कार्यक्रम में आज दोपहर 1:45 पर A.S. कॉन्ग के गाए पंजाबी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। कार्यक्रम एक और अनेक आप सुन सकते हैं आज दोपहर 2:30 पर। मेरा सपना उन्नत भारत, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे आज शाम 5 बजे। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा आज शाम 5:15 पर। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर सहायक कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर विकास कुमार से आलोक कुमार की बातचीत का विषय रहेगा आधुनिक कृषि में ट्राइकोडर्मा के अनुप्रयोग। विविधा क्रम में आज शाम 6:45 पर श्रीमती पूनम राणा की लिखी कहानी नेग सुनवाई जाएगी। अदबी दुनिया कार्यक्रम में आज शाम 7:50 पर कलाम शायर प्रस्तुत करेंगी सुश्री इकरा शकील। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 7:18 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 कल हुई संपन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जन भवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट। आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कल पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
3: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पे लोगों ने मुझे अभिमान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता हूं।
2: श्री नवीन कल अपने लखनऊ प्रवास के दौरान हनुमान सेतु मंदिर गए। वहां उन्होंने हनुमान जी के दरबार में शीश नवाकर देश और प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे में आज विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्रामसभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कायम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय के लिए उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने इस संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
5: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई को दो दो पाली और कल एक पाली में आयोजित हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। ये परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और SDF के प्रति आभार व्यक्त किया है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन कल लखनऊ के जनभवन में मैंगो बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के बीच अनुबंध भी हुए। महोत्सव में उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ में प्रदेश सरकार के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
6: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच गई है और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार हो गए हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
2: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कल अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार यह बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित है। इस बीच लखनऊ सहित राज्य के कुछ जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। कल कानपुर और टुंडला में हुई भारी बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTAT 2026 कल हुई संपन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जनभवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट, आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सूरज के साथ साथ कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज आपसे होंगी बहुत सारी बातें, दिन विशेष के विषय में भी होंगी बातें, और आगामी आने वाले समय में वन महोत्सव उसके ऊपर भी होंगी बहुत सारी बातें, आज का इतिहास वो भी जानेंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते आते समय क्या हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, और अगर करते हैं तो हम कितने जागरूक हैं? जागरूक होने से अभिप्राय ये है कि हम स्वयं तो नियमों का पालन करते ही हैं, लेकिन आसपास जो व्यक्ति या जो कोई दूसरा बच्चा ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसे इसके विषय में बताते भी हैं या नहीं? भारत में बच्चे हर दिन स्कूल, ट्यूशन या खेलने के लिए व्यस्त सड़कों पर निकलते हैं। सड़कें कारों, साइकिलों, बसों और लोगों द्वारा शेयर की जाती हैं, इसलिए जोखिम हमेशा बना रहता है। बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें गति और दूरी का अंदाज़ा थोड़ा सा कम होता है, जिससे उनसे गलतियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और यही कारण है कि सुरक्षा नियमों को बचपन से ही सिखाया जाना और बार बार दोहराया जाना आवश्यक है। माता पिता के मार्गदर्शन और स्कूलों में नियमित अभ्यास से बच्चे स्वाभाविक रूप से यातायात सुरक्षा के नियमों का पालन कर सकते हैं। सुरक्षा एक कोई अतिरिक्त पाठ नहीं कि जिसे हमें पढ़ना है और याद करना है, बल्कि ये एक ऐसी आदत है जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, और अभ्यास करने से ये एक आदत बन जाती है। बच्चों को हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाली जगहों से ही सड़क पार करनी चाहिए और इसके बारे में उन्हें बताया जाना चाहिए। इन्हें पैदल यात्री क्रॉसिंग के संकेत के लिए भी कहा जाता है और सुरक्षा के लिए इन्हें बनाया गया था। वाहनों को यहाँ गति धीमी करनी होती है तो बच्चों को इस बात का विशेष ध्यान दिलवाया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा से पहले शिक्षक अक्सर खेलों के माध्यम से ये सारे नियम बच्चों को सिखाते हैं। छोटे बच्चों के लिए माता पिता को केवल चिन्हित रेखाओं यानी पेडेस्ट्रियन से ही सड़क पार करके दिखाना चाहिए। बार बार अभ्यास करने से ये आदत बन जाती है। जब कोई बच्चा सड़क के पास आ जाता है तो सबसे पहले रुकना चाहिए, फिर बाईं ओर देखें, दाईं ओर देखें और फिर बाईं

करने से ये आदत बन जाती है। जब कोई बच्चा सड़क के पास आ जाता है तो सबसे पहले रुकना चाहिए, फिर बाईं ओर देखें, दाईं ओर देखें और फिर बाईं ओर देखें। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप तो सही हैं, बच्चा सही है, लेकिन ड्राइवर

ये सड़क सुरक्षा संकेतों और चार्ट के और कक्षा में लगे पोस्टरों के माध्यम से ये सारे जो इंडिकेटर हैं, इंडिकेशन हैं, संकेत हैं, ये सीख सकते हैं। बच्चों को यातायात संकेतों के प्रकार भी पता होने चाहिए, जैसे कि चेतावनी बोर्ड और स्कूल क्षेत्र की चेतावनी। शिक्षक विभिन्न प्रकार के यातायात संकेतों को याद रखने में बच्चों की मदद करने के लिए एक मज़ेदार प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन कर सकते हैं, और हर स्कूल में ऐसा किया भी जाता है, चाहे कार हो या साइकिल। बच्चों को सुरक्षा उपकरण पहनना अनिवार्य है। सीट बेल्ट अचानक ब्रेक लगाने पर झटके को कम करती है। हेलमेट सिर की चोट से हमें बचा देता है, और माता-पिता को खुद हेलमेट पहनकर उदाहरण पेश करना चाहिए। हम देखते हैं कि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, और जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके मम्मी या पापा कोई भी स्कूटी या स्कूटर से उनको स्कूल तक छोड़ करके आते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या अमूमन देखने को मिलता है कि ना तो जो बड़े हैं मम्मी या पापा उन्होंने हेलमेट पहना है और ना ही बच्चे ने पहना है। तो अगर हम इस तरह की लापरवाही करते हैं तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, और साथ ही माता-पिता जो भी काम करते हैं बच्चे को उसकी आदत बन जाती है। यदि माता-पिता सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली ही वो सारी चीज़ें स्वतः ही सीख जाएंगे और उनकी आदत में ये चीज़ें शुमार हो जाएंगी। तो इस तरह की बातें अगर हम बच्चों के साथ करें ना, तो शायद बच्चों को सुरक्षा नियमों की, सड़क सुरक्षा नियमों की बहुत अच्छी जानकारी होगी। आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर जोश में बिल्कुल बिना सोचे समझे सड़क पर दौड़ने लगते हैं, लेकिन बिजी रोड पर उनका एक कदम भी सामने से आने वाले ड्राइवर को भ्रमित कर सकता है और परेशानी खड़ी कर सकता है। तो ऐसे में बच्चों को धीरे धीरे चलने के लिए कहें, उन्हें कभी भी सड़क पर भागने के लिए ना कहें। छात्रों के लिए अगर हम देखें तो आजकल स्कूल बहुत दूर दूर हो गए हैं, बहुत सारी जनसंख्या जो वृद्धि हुई है उसकी वजह से स्कूलों की संख्या भी बढ़ी है, और शहर से काफ़ी दूर स्कूल स्थापित है, तो बसें जो हैं वो छात्रों के लिए परिवहन का मुख्य साधन है। बस के अंदर सड़क सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण है, बच्चों को बस के पूरी तरह से रुकने के बाद ही उसमें चढ़ना चाहिए। आपने देखा होगा कि कभी कभी बच्चे लेट हो जाते हैं और शायद ड्राइवर पीछे नहीं देख पाता रियर व्यू मिरर से, और बच्चे बस के पीछे भाग रहे हैं और भागते भागते ही बस में चढ़ने का प्रयास करते हैं, जो कि जोखिम भरा हो सकता है। तो अगर इस तरह की सावधानियां बरतें तो शायद हम सड़क सुरक्षा के नियमों का सही पालन कर पाने में और सही पालन करवाने में सक्षम हो सकते हैं। माता-पिता को फ़ोन नंबर, पुलिस हेल्पलाइन जैसे कि 100 और एम्बुलेंस 108, ये सब नंबर याद रखना बेहद ज़रूरी है, और बच्चों को भी इन नंबरों को याद करवाया जाना चाहिए। और देखा भी जाता है कि समय समय पर स्कूल सड़क सुरक्षा नियमों से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें बच्चे प्रतिभाग करते हैं, और मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाती हैं। तो अगर हम इस तरह का एक माहौल अपने बच्चों के आसपास क्रिएट कर सकते हैं तो उससे हो सकता है कि सारे सारे जो सड़क सुरक्षा नियम हैं उन सभी का हम सही से पालन कर भी सकते हैं और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से करवा भी सकते हैं। और अब आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: श्रोताओं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और अब हम आपसे जिक्र करेंगे आज की प्रमुख सुर्खियों का। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि 25 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। मानसून की आहट है और अगले कुछ दिनों में पहाड़ों पर बारिश के साथ जिला बिजनौर की नदियों में भी उफान आने लगेगा। ऐसे में जिले में बाढ़ आने की आशंका गहराने लगी है। जिला प्रशासन के बाढ़ प्रबंधन प्लान में 147 गांवों को उच्च, 119 को मध्यम और 60 गांवों को निम्न जोखिम की श्रेणी में रखा गया है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण को लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के विशेषज्ञों ने सरकार की ओर से लोगों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस ईंधन की व्यापक स्तर पर वैज्ञानिक टेस्टिंग हुई है और ये सख्त गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है। संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इसमें 130वां संविधान संशोधन विधेयक, महिला आरक्षण लागू करने से जुड़ा विधेयक,

और अब बात करते हैं जल संचयन में वृक्षों की भूमिका। जी हाँ, जल संचयन या जल संरक्षण दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही बात है, एक दूसरे के पूरक हैं। जल संरक्षण वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है, विशेष रूप से सूखे और जल संकट से ग्रस्त क्षेत्रों में। पौधे प्राकृतिक जल नियामक होते हैं, मतलब रेगुलेटर होते हैं, और वे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से जल संरक्षण में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषकर गहरी जड़ों वाले पौधे मिट्टी को स्थिर रखने और कटाव को रोकने में मदद करते हैं, जिससे जल हानि का जो एक महत्वपूर्ण कारण है वो कम होता है। भारी बारिश होने पर पौधों की जड़ें मिट्टी को अपनी जगह पर रोके रखती हैं, जिससे बहाव कम होता है और अधिक पानी जमीन में रिस कर भूमिगत जल भंडारों में जमा हो जाता है, यानी कि जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स हैं उसमें पानी स्टोर हो जाता है। पौधे, विशेषकर वे जिनकी जड़ें व्यापक यानी बड़ी होती हैं, मोटी होती हैं, मिट्टी में पानी के रिसने की दर को बढ़ाते हैं, मतलब कि बारिश का पानी या सिंचाई का पानी वाष्पीकरण या बह जाने की बजाय अधिक मात्रा में जमीन में अवशोषित हो जाता है। इससे न केवल पानी की बचत होती है बल्कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बढ़ता है। पेड़ और झाड़ियाँ ये मिट्टी के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, जिससे मिट्टी और अन्य सतहों से पानी का जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सूखे क्षेत्रों में छायादार सूक्ष्म जलवायु वाले बनाने वाले पौधे मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं, जिसमें बार बार पानी देने की आवश्यकता कम हो जाती है। पौधे जो पेड़ जो होते हैं, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया के माध्यम से जल चक्र में योगदान देते हैं, मतलब जो पानी मिट्टी में है वो पानी अवशोषित होगा पौधों की जड़ों के द्वारा पौधे के अंदर, और जब फोटोसिंथेसिस होगा यानी प्रकाश संश्लेषण होगा पौधों में खाना बनाने के लिए, तो उस समय में पौधे छोटी छोटी वेपर्स की तरह अपनी पत्तियों से पानी की बूंदों को, वेपर्स को वातावरण में खोल देती हैं, वो ऊपर क्लाउड में जा करके, बादलों में जा करके संघनित होकर यानी कंडेंस्ड होकर के बादल का निर्माण करती हैं, और फिर बारिश के रूप में वही जल हमारी पृथ्वी पर आ जाता है। अब अगर हम देखें कि पेड़ पौधों में ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से जल संचयन बहुत ज़रूरी रहता है, तो भैया बात ऐसी है कि पेड़ पौधे को हम बोला जाता है कि हमेशा पेड़ पौधे ही रेन को यानी बारिश को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, जिसका कारण हमने अभी अभी आपको बताया। तो अगर हम अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो अवश्यंभावी ही कि हम जल संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और अब हम आपसे जिक्र करेंगे 5 जुलाई को विश्व इतिहास में घटित प्रमुख घटनाओं के विषय में। तो सन 1658 में आज की ही तारीख में मुगल शासक औरंगजेब ने अपने बड़े भाई मुराद बख्श को बंदी बनाया था। 1811 में आज की ही तारीख में वेनेजुएला के 7 प्रांतों ने स्पेन के शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 1922 में आज की ही तारीख में नीदरलैंड में पहली बार आम चुनाव हुए थे। 1935 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका के नेशनल लेबर रिलेशंस कानून पर हस्ताक्षर किए थे। 1950 में आज की ही तारीख में नए कानून के तहत सभी यहूदियों को इसराइल में रहने की अनुमति दी गई थी। 1954 में आज की ही तारीख में बीबीसी ने अपने पहले टीवी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया था। 1959 में इंडोनेशिया ने संविधान बहाल किया गया था आज की ही तारीख में। और 1960 में मंगोलिया ने आज की ही तारीख में संविधान को अपनाया था। अल्जीरिया 132 साल के फ्रांसीसी शासन से आज़ाद हुआ था सन 1962 में आज की ही तारीख में। और 1968 में आज की ही तारीख में भारत की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस से पहुंची थी। 1977 में आज की ही तारीख में जनरल मोहम्मद जियाउल हक के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने तख्ता पलटकर देश के शासन पर कब्जा किया था। 1994 में आज की ही तारीख में जेफ बेजोस ने ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़ॉन की स्थापना की थी। तो ये तो थी आज की तारीख की कुछ प्रमुख सुर्खी घटनाएं। और अब चलते चलते आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथ साथ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 8 बजने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
3: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे

0: किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
0: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग 1 सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
0: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
2: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति

0: स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष ठंडी सड़क है। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
4: Udaan Yojana ke naye charan ki bhi shuruaat hui. Iske tahat छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
4: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
2: Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu also said that the launch of the Viksit Udaan scheme will mark the next chapter of India's regional connectivity journey. Mr. Naidu said, the scheme launched by Prime Minister with an outlay of over 28,840 crore rupees will facilitate the development of over 100 new aerodromes and 200 helipads, bringing the dream of affordable air travel closer to millions and connecting the aspirations of a rising India.
5: आदरणीय प्रधानमंत्री जी को छे.
2: इट इज द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट वेयर एवर देयर इज एक्सपेंशन ऑफ सिविल एविएशन इट शुड बेनिफिट नॉट जस्ट पैसेंजर्स बट ऑल्सो द इकोनॉमी ऑफ द एंटायर सिटी बिजनेसेस स्टूडेंट्स एंड एवरी सेक्टर एज वेल एज सिटीजन्स. वी कैन सी द इफेक्ट अक्रॉस द कंट्री टूडे.
5: देश भर में हमें देखने को मिल रहा है.
2: Later in the day, Prime Minister Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test, or OSAT, plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
4: Bharat jo thaan leta hai, wo karke dikhata hai.

0: मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की युगल आवाजों में हमजोली फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तेरी धड़कन ही मेरी जिंदगी का गीत है, तो वो मुस्कान है जो हर गम को जीत ले। बस इतनी सी ख्वाहिश है इस दिल की, बस इतनी सी ख्वाहिश है इस दिल की, हर जन्म में तेरा ही साथ नसीब हो।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के

कार्यक्रम का अगला गीत है अमिताभ बच्चन और साथियों की आवाज़ों में मिस्टर नटवरलाल फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया है राजेश रोशन ने। ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक सच्चा दोस्त जो हमेशा साथ निभाए, बस हमें वही प्यारा सा इंसान चाहिए।

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में,

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत।

0: सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
1: फिर क्या हुआ?

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाज़ों में राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। काश खुशियों की गंगा कभी गरीबों की बस्ती में आए, काश खुशियों की गंगा कभी गरीबों की बस्ती में आए, जिन्हें मुस्कुराएं सदियां हो गई वो थोड़ा सा मुस्कुराएं।

कार्यक्रम का अंतिम गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में, कारवां फिल्म से। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है R.D. बर्मन ने। वादा करते तो कोई बात होती, वादा करते तो कोई बात होती, मुझे ठुकराते तो कोई बात होती। यूं ही क्यों छोड़ दिया दामन, यूं ही क्यों छोड़ दिया दामन, कसूर बताते तो कोई बात होती।

कितना प्यार। कारवां फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही गोल्डन हिट्स अब यहीं समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 9:15 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव पर अर्थशास्त्री एपी तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 सालों में ग्रामीण विकास, कृषि और कृषि उत्पादन के साथ ही रोजगार के मोर्चे पर कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब मनरेगा की जगह विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी के साथ ही 300 रूपए की न्यूनतम मजदूरी भी तय की गई है। सरकार का प्रयास है कि गाँव में सिर्फ मजदूरी आधारित रोजगार नहीं बल्कि स्थायी पर संपत्तियों का निर्माण, कृषि उत्पादकता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी जाए। सरकार के इस विजन को बीवी रामजी अधिनियम कैसे पूरा करेगा, क्या खास बातें हैं इस अधिनियम में, मनरेगा की खामियों को इसमें कैसे दूर किया गया है, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री एपी तिवारी जी।

0: है, तो एक जो कोशिश की गई है हाल ही में, भारत देश का विकास तभी होगा जब गांव का तेजी के साथ विकास होगा, लेकिन इसकी एक अहम कड़ी है कि गांव में ही लोगों को काम मिले, खासतौर पर वह जो अकुशल लोग हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उन्हें गांव स्तर पर ही काम मिले। इसलिए ये है जो विकसित भारत जी राम जी स्कीम एक नए अवतार में कह सकते हैं लाई गई है, ये एक गारंटी है रोजगार की। जो पात्र श्रमिक होंगे उनको वर्ष में 125 दिनों का काम मिलेगा, इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक संपत्तियों का सृजन है, इसको बल मिलेगा। जो कौशल विकास, बाजार और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेती का काम है, जल सुरक्षा है, इन सबको जोड़कर गांव का समग्र विकास हो, इसकी कोशिश इस स्कीम के माध्यम से किए जाने का संकल्प लिया गया है।
1: बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने ग्रामीण विकास की बात की, मनरेगा की बात करें सर, तो मनरेगा को रोजगार की गारंटी के तौर पर लाया गया था, लेकिन जो ये नया अधिनियम है रोजगार के साथ साथ विकास की भी बात करता है, जैसा आपने चर्चा में कहा भी, तो ये नया अधिनियम सर इन दोनों के बीच, यानी कि रोजगार और विकास, इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बना रहा है?
0: देखिए, जब हम गांव के विकास की बात करते हैं तो एक उसका महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि गांव में ही गांव वालों को रोजगार मिले, क्योंकि इसका परिणाम ये होगा कि गांव के जो लोग हैं उनकी आर्थिक तरक्की होगी, उनकी आजीविका सुगम होगी, या उनके आजीविका के स्रोतों में गांव स्तर पर ही बढ़ोतरी होगी। तो जब ऐसा होगा तो उनका पलायन भी गांव से जो नगरों की तरफ होता है वो थमेगा। इससे जो कई तरह की आर्थिक और सामाजिक दुश्वारियां मजदूरों को झेलनी पड़ती हैं, उससे भी निजात मिलेगी। मेरा मानना है कि जब गांव विकास की बात की जा रही है तो गांव विकास का मूल मंत्र ये है कि खेती तो बढ़े आगे, लेकिन खेती के साथ जो गांव की गैर खेती की क्रियाएं हैं, वानिकी है, पशुपालन है, मछली पालन है, इन सब को अगर जोड़कर देखा जाए तो विकास की गति और तेज होगी।
1: बिल्कुल सर, आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की और हमने देखा कि कोरोना काल में जब कठिनाई का वक्त था तब ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने बड़ी मदद की सरकार की अर्थव्यवस्था को संभालने में। सरकार की सोच है कि इस नए अधिनियम के जरिए कृषि, सिंचाई, जल संरक्षण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती दी जाए, तो आपको सर क्या लगता है जो प्रावधान किए गए हैं उससे ये सोच कैसे पूरी हो सकती है?
0: देखिए, जब गांव के विकास की बात की जाती है तो जो गांव में खेती है उसके साथ ही साथ गैर खेती की क्रियाएं हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जो मझोले उद्योग क्षेत्र की क्रियाएं हैं, जो ODOP सेक्टर की क्रियाएं हैं, कह सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनके द्वारा जो क्रियाएं संपादित की जा रही हैं खेती की, उनको अगर बागवानी से जोड़ा जाए या खेती का विविधीकरण अगर किया जाता है, तो खेती के विविधीकरण के लिए ये आवश्यक होगा कि नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। नई तकनीक में जब हम बात करते हैं तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाए, और जब नई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाएगा तो तार्किक तौर पर गांव में एक ओर जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गांव वालों को गांव में ही रोजगार मिलेगा, भौतिक संपत्तियों का या भौतिक परिसंपत्तियों का सृजन होगा, तो गांव की तरक्की एक टिकाऊ आधार पर होगी, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो गया था कि गांव का विकास तो तभी टिकाऊ आधार पर होगा जब गांव स्तर पर रोजगार और आजीविका के टिकाऊ और गुणवत्ता परक संसाधनों में वृद्धि की जाती है। कि विकसित भारत जी राम जी स्कीम इस मंतव्य के साथ शुरू की गई है कि गांव का एक तरह से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो, वहां पर जिंदगी सुगम हो लोगों की, गरीबों की, जो मजदूर हैं उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। जब उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो मेरा मानना है कि गांव की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बढ़ी हुई गांव की क्रय शक्ति औद्योगिक विकास को भी तेज करेगी, क्योंकि ये जरूरी है कि गांव में जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन कह सकते हैं उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत हो रही है उनकी भी मांग बढ़ेगी। तो इस तरह गांव का जब विकास होगा तो लोगों की जिंदगी में सुधार होगा, लोगों का जीवन सुगम होगा, उनको स्थानीय तौर पर रोजगार मिलेंगे, तो इस प्रकार

0: वो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जो संस्थाएं उनके गांव स्तर की हैं उनसे जुड़कर विकास को और आगे बढ़ाने में वो भरपूर सहयोग कर सकने की स्थिति में होंगे।
1: बिल्कुल सर, बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद इस अधिनियम के जरिए की जा रही है, लेकिन सर मनरेगा की वो कौन सी बड़ी खामियां थी जिन्हें दूर करते हुए इसे लागू किया गया है? ग्रामीण युवाओं के लिए ये किस तरह का अवसर पैदा करेगा? और सर क्या आपको लगता है इससे गांव से जो शहरों की ओर पलायन हो रहा था वो कम होने की संभावना है? बड़ी खामियों की बात करें तो जिस तरह से मनरेगा में हम देख रहे थे, चाहे दिनों की संख्या की बात कर लें या फिर वेतन भुगतान की बात कर लें या फिर कृषि फसलों के अवकाश की बात कर लें, ये सारी चीजें दूर की गई हैं इस नए अधिनियम में?
0: देखिए, जहां तक मनरेगा की बात है, जो पहले स्कीम चली तो उसमें कुछ खामियां पाई गई, जैसे बड़े पैमाने पर उसमें पारदर्शिता का अभाव था, यही नहीं जवाबदेही का अभाव भी पाया गया, कई प्रकार की अनियमितताएं हुई, कई तरह से कह सकते हैं उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, मशीनों का प्रयोग किया गया, काम जो मजदूरों से होना था उनको मशीनों के जरिए कराया गया, और जो लेखा जोखा होता था उसमें भी जवाबदेही की कई तरह की कमियां पाई गई। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो मनरेगा स्कीम थी वो तो डिमांड ड्रिवन थी, कह सकते हैं लोग मांग करेंगे तब उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन जो ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम नई शुरू की गई है इसमें सप्लाई की जाएगी या सप्लाई ड्रिवन रोजगार शुरू किए जाएंगे, अर्थात सरकार के स्तर पर ये जो स्कीम लागू की गई है अब पंचायतों को स्थानीय स्तर पर इस बात का अवसर प्राप्त होगा कि वो गांव की तरक्की के लिए योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं के लिए वित्तीय जो प्रबंधन है, वित्तीय जो संसाधन है वो केंद्र सरकार 60% देगी, 40% राज्य सरकारें लगाएंगी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर केवल केंद्र शासित प्रदेशों को 10% लगाना होगा, बाकी केंद्र सरकार देगी। तो कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि यह स्कीम इस तरह तैयार की गई है जिसमें प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और बजटिंग तीनों को एक साथ लेकर जब आगे बढ़ा जाएगा तो गांव की आर्थिक विकास की गति तेज होगी और जो पहले से कह सकते हैं मनरेगा में व्याप्त एक जवाबदेही का अभाव था, पारदर्शिता का अभाव था, एक नई प्रणाली ऐसी उभरेगी जिसमें जवाबदेही होगी, बेहतर कार्यान्वयन होगा और यही नहीं जो स्कीमें लागू की जाएंगी उनका अनुश्रवण भी होगा, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत महत्वपूर्ण है, डैशबोर्ड के जरिए दृष्टांकित किया जाएगा कि कौन सा काम कहाँ कब होना है, किस प्रकार की स्कीमों को तैयार किया जाना है। तो ये कह सकते हैं कि जो आवश्यक स्कीमें हैं गांव के समग्र विकास के लिए उन स्कीमों को तरजीह दी जाएगी। एक बड़ी बात है कि इसमें जो प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं, यानी जो जलवायु से चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं उनको भी संबोधित करने के लिए इस विकसित भारत जी राम जी स्कीम में एक क्षेत्र दिया गया है, कार्य का क्षेत्र दिया गया है। तो मेरा मानना है कि जल सुरक्षा हो, चाहे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खेती हो, मछली पालन हो, भंडारण हो, बाजार हो, कौशल विकास हो, इन सभी को एकीकृत करते हुए गांव की समग्र उन्नति की चेष्टा के लिए ये स्कीम लागू की गई है और इससे गांव स्तर पर तो तरक्की होगी ही, साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि गांव अब राष्ट्रीय विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।
1: बिल्कुल सर, आपने कहा कि गांव भी अब राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकेंगे, तो सर आपसे जानना चाहेंगे इस नए अधिनियम में रोजगार, परिसंपत्ति निर्माण, कृषि और ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ने की बात की गई है, ऐसे में कौन कौन से वो विशेष प्रावधान है जो आपको इस नए अधिनियम में विशेष तौर पर प्रभावी लगते हैं?
0: देखिए, जाहिर सी बात है कि इस नई स्कीम में सड़क है, सार्वजनिक भवन है, जैसे स्कूल के निर्माण की बात अगर है, स्वच्छता की विभिन्न सिस्टम्स जो काम कर रहे हैं, सोलर प्रणाली और कह सकते हैं जो नवीकरण ऊर्जा है उसको आगे बढ़ाने का काम, और जो आवासीय योजनाएं पहले से संचालित हो रही हैं और नई स्कीमें आवास की शुरू की जाएंगी उनमें कह सकते हैं मजदूरों को रोजगार देकर एक ओर जहां उन्हें आजीविका के गुणवत्ता पर अवसर प्राप्त होंगे, इसके साथ ही साथ जो ये बात केंद्र में महत्वपूर्ण होगी या ये कह सकते हैं कि सबसे अहम बात यह है कि स्थानीय स्तर पर टिकाऊ संपत्तियों के सृजन द्वारा गांव का विकास होगा और गांव स्तर पर ही कह सकते हैं स्थानीय रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे, तो इससे जब पलायन थमेगा तो ये कह सकते हैं कि नगरीय विकास पर भी जो एक दबाव बनता है, गांव से जब मजदूर पलायित होकर नगरों की तरफ आते हैं तो कई प्रकार की नगरीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनको भी संबोधित करने में ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम सहायक सिद्ध हो सकती है।
1: सर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार साल 2047 तक एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना चाहती है, यानी कि विकसित भारत की सोच को साकार करना चाहती है, उस दिशा में ये पहल आपको कितनी महत्वपूर्ण लगती है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण विकास और रोजगार की बात बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है?
0: देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, उत्तर प्रदेश में खेती का क्षेत्र अभी भी एक प्रधान स्थान रखता है। साथ ही साथ जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि ODOP का क्षेत्र है, जो छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, फूड प्रोसेसिंग है, एग्रो प्रोसेसिंग है, इनको आगे बढ़ाने का काम चल रहा है और उसको और अधिक मजबूती देने में इस स्कीम से मदद मिलेगी। साथ ही साथ जहां तक विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, उसको मूर्त रूप देने में भी ये स्कीम काफी सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि ये स्कीम केवल रोजगार देने की स्कीम नहीं है या आजीविका देने की स्कीम नहीं है। इसमें एक और जहां समेक मजदूरी देते हुए मजदूरों का सशक्तिकरण होगा, साथ ही साथ मजदूर एक जनशक्ति के रूप में राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो जनशक्ति है, जो मैन पावर है या मानवीय पूंजी है, उसकी सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में उभरने में। तो इस तरह देखा जाए तो ये है स्कीम जो एक नवाचारी है, कह सकते हैं, ये टिकी हुई है नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल द्वारा, गाँव का आमूल चूल परिवर्तन।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर धरती गाती है कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बीना के गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

0: धरती गाती है कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बीना के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 10 बजने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत तुम्हारे। गीत तुम्हारे कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं सचिन शर्मा और मेरे साथ हैं,
1: मैं हूं विवेक प्रताप सिंह। बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं आपका कार्यक्रम में।
0: और विवेक का अब ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे श्रोताओं ने हमारे व्हाट्सएप पर यानी कि 9457078288 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया है, अपनी फरमाइश भेजनी शुरू कर दी है। तो कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है उत्तम नगर नई दिल्ली से,
1: गीतिका खोरवाल, बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश ने। और आप हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने।
0: खमहरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार ने गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है। और बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से नैना सत्यनारायण, कपिल शोभा, फनूदी बाई बागरी, इन सभी ने इस गीत को सुनने की फरमाइश की है।
1: और आप हैं नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नशीब, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी।
0: नगर पंचायत बहरपुर बिजनौर से मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद उजैफ। तो आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में।
1: फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश में भेजी है अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा ने। काजगंज से मास्टर राधे श्याम, शाक्य, ऋषभ, जौली, मधु और इनके सभी परिवार वालों ने।
6: और आप हैं भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्यंश भूषण, संस्कृति पौरुष, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल। पांडरकवड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे। और बल्हार शाह से हैं सूरज लौड़े, प्राची लौड़े और एकलव्य लौड़े।
5: जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बडोना। रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़।
6: ये फरमाइश हमारे पास आई है जेल रोड जालंधर से। फरमाइश करता है अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर और धर्मजीत फातिमा कौर। सरगुजा मैन पार्ट से हैं रुबीना थापा, सोनम थापा, सोनिया थापा, रेशमा थापा। जुट मिल रायगढ़ से हैं डब्लू बेलदार, अधिवद बेलदार, सरफुद्दीन बेलदार और आसमा बेलदार। राजधानी रायपुर से हैं नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। ये फरमाइश हमारे पास आई है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। फरमाइश करता है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना। और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगता।
5: आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कबीर सिंह।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है छठिया पोखर डुमराव से फातिमा वली बेलदार, डब्लू वली बेलदार, आसमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, बिहार भवन दिल्ली से सरफुद्दीन कुटरिया, उल्लाह वली कुटरिया ने। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से गीत सुनना चाहते हैं रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा।
3: नगर पंचायत बड़ापुर बिजनौर यूपी से हैं एम मोहम्मद ताहिर और इनके सभी परिवार वाले। ये फरमाइश हमारे पास आई है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। फरमाइश करने वाले हैं अभिजीत गवाड़कर राही, सरिता गवाड़कर, प्रणीता सिद्धांत गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर, टुक टुक। परिमहल कासगंज उत्तर प्रदेश से हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और इनके

0: सभी परिवार वाले।
1: गांव जेवरा हिसार से गीत सुनना चाहते हैं वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र, मनोज और इनके सभी परिवार वाले। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा ने। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से गीत सुनना चाहते हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार।
0: आप हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। और ये फरमाइश हमारे पास आई है चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्लू वली जाटव, सोनम वली जाटव।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से गीत सुनने की फरमाइश मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से हमें भेजी है गुलाम हसन, निषाद बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शहजादी शराफत अली, अब्दुल रहमान, रानी बिटिया मदीहा और इनके सभी परिवार वालों ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और साथियों की आवाज़ों में आँखें फिल्म से।

0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है डाब की रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर ने। बलराम गेट कासगंज से गीत सुनना चाहते हैं मोहम्मद असलम सैफी, जैबुन निशा बेगम, अकरम सैफी, जाहिद सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी और आबाद खान। लक्सर रोड गांव सुवाहेड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोहेब, कहका शाह और इनके पूरे परिवार ने।
1: आप हैं नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, अब्दुल रहमान, सैयद खलील, मुबीन भाई और यासीन भाई। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से हैं इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी और बाबू अंसारी। जलालाबाद बेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। ये फरमाइश हमारे पास आई है फुलोंग निजामाबाद से। फरमाइश करता है एम ए वाहिद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल।
0: कृष्णा पार्क दिल्ली से गीत सुनना चाहते हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना और इनके सभी परिवार वाले। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह ने। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से गीत सुनना चाहते हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी। तो आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और कुमार सानू की युगल आवाजों में चमत्कार फिल्म से।

0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। विलेज और पोस्ट राहुल नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, मदन गिरी, आसिफ चौधरी, राशिद अंसारी और प्रकाश चंद्र ने। वरवट बकाल बुलढाणा से गीत सुनना चाहते हैं नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय ने। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन और इनके सभी परिवार वालों ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने। आकोट से गीत सुनना चाहते हैं विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय, शुभम बेंडे, पवन और संजीव डाबेराव ने। आइए सुनते हैं अगले गीत को। और कौन से श्रोता सुनना चाहते हैं?
1: आप हैं करणवीर हाउस भुचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर बरिंदर, कुलदीप सिंपू, एकम दमन और अभिजोत। और ये मैसेज हमारे पास आया है धनौरी तेलीवाला से, भेजने वाले हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। ये मैसेज है हमारे पास उत्तराखंड की ठंडी ठंडी वादियों से, फरमाइश की है उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बनी, आरुष, शौर्य और दिनेश ने। श्री गणेश अबिका आर्ट श्री रामपुर से हैं, अशोक कुमार, अविका, जीविका, सानू कुमार, अर्चना कुमार, कोयते बस्ती पुनावले से हैं अजय सोन बने, करिश्मा सोन बने, अविका सोन बने और साइसा सोन बने। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी। ये फरमाइश हमारे पास आई है गांधीबाग अकोला से, रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर की।
0: तो आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का।

0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है नाला सुपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा, माहिरा शेख, नौमान शेख, सुलेमान शेख और शेख मोहम्मद कलीम ने। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से गीत सुनना चाहते हैं संतोष खडसे और विनोद खडसे। श्रोता रघुवीर नगर से गीत सुनना चाहते हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू।
1: डायमंड रेडियो श्रोता संघ महबूबपुरा सनाबद मध्य प्रदेश से हैं मोहम्मद जावेद खत्री, मोहम्मद इकबाल खत्री, जैद मुनीरा और बाबू भाई खत्री। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से हैं सईद भाई मंसूरी, भाई रफत साहब, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली नगमा नाज मंसूरी।
0: तेलंगाना निजामाबाद से गीत सुनना चाहते हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख। सहारनपुर से गीत सुनने की फरमाइश में भेजी है आशा नारंग और सोनाली नारंग और सुरेश नारंग ने। शाही मार्केट स्योहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदीब और कादिर चौधरी ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में कसूर फिल्म से।

0: ये तुम्हारे कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म कुली नंबर 1 से कुमार सानू और साथियों की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। मजनू का टीला से फरमाइश की हमारे पास कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से हैं गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोतरा गुरशबद। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से हैं मोहम्मद इंतज़ार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद। दाऊद सराय सहारनपुर से हैं अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और शरीफ साबरी। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा।
1: तो आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अंतिम गीत कुमार सानू और साथियों की आवाज़ों में कुली नंबर 1 फिल्म से।

कुली नंबर फिल्म में कुमार सानू और साथियों के गायस गीत के साथ विवेक अब अपने श्रोताओं को कर लेते हैं नमस्कार, क्योंकि घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं दे रही है कि कार्यक्रम को और आगे बढ़ाए, तो कर लेते हैं अपने श्रोताओं को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर 11 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है श्रेया घोषाल की आवाज में। फिल्म का नाम है तारा रमपम।

तररमपम। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार विशाल शेखर। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है, फिल्म है हम तुम। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और शान। शब्द रचना प्रसून जोशी की और संगीत है जतिन ललित का।

0: क्या बात है यार,
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है,
0: बड़ा है।
1: फिर बिजी हुई एक एकड़ तुमको वो
0: टर्का
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है
0: भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडराए,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: इंटीरियर
1: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं शान और गायत्री अय्यर की आवाज में फिल्म सलाम नमस्ते का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं जयदीप साहनी ने और धुन तैयार की है विशाल शेखर ने।

चालबाज। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। बोल थे आनंद बख्शी के और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम की अगली पेशकश हमने ली है फिल्म है गुलामी। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

गुलामी फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अभिजीत और साथियों को। फिल्म है बादशाह। शब्द रचना जावेद अख्तर और समीर की है। संगीत है अनु मलिक का।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं गुलाम फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। बोल हैं समीर के, संगीत है जतिन ललित का।

विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म बाजीगर का गीत। गीतकार थे जमीर काजमी और संगीतकार थे अनु मलिक। कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम ग्रंथ से विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ में। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

विनोद राठौर और अलका याग्निक के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नचिपाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों के विषय में।

आज रात 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 बजे आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। कार्यक्रम का वक्त रहेगा 12:05 पर। फिल्मी संडे कार्यक्रम का वक्त रहेगा अपराह्न 12:30 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे 1992 की फिल्म खिलाड़ी की कहानी।

बाल वाटिका कार्यक्रम में अपराह्न 1:15 पर आपको सुनवाई जाएगी शमशेर अली की लिखी कहानी सच्चाई की जीत। इसके अलावा महान विभूति क्रम में आप सुनेंगे आचार्य भास्कराचार्य के बारे में और जानकारी दी जाएगी विश्व जनसंख्या दिवस और विश्व चॉकलेट दिवस की। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में आप सुनेंगे पंजाबी लोकगीत A.S. कॉन्ग की आवाज़ में। अपराह्न 2:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक और अनेक का, जो आधारित होगा चेतन आनंद और अन्य कलाकारों पर।

शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे जानकारी, सीनियर केयर, एजिंग ग्रोथ इंजन और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में जानकारी। युववाणी में शाम 5:15 पर आज क्रम रहेगा शब्दों के शिल्पकार और बात जुबान से।

शाम 6:05 पर प्रसारित होगा कृषि जगत, जिसमें आपको सुनवाई जाएगी चर्चा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और गन्ना फसल में समसामयिक कार्य विषय पर। इसके अलावा आप सुनेंगे डॉक्टर विकास कुमार, सहायक विकास कृषि अधिकारी से आलोक कुमार की बातचीत, जिसका विषय होगा आधुनिक कृषि में ट्राइकोडर्मा के अनुप्रयोग। विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर प्रसारित होगी पूनम राणा की लिखी कहानी नेग। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे शाम 6:55 पर छाया गीत कार्यक्रम में। सुगम संगीत कार्यक्रम में संध्या 7:32 पर आप सुनेंगे परवेज मेहंदी की आवाज में गजलें। शाम 7:50 पर कलाम शायर के अंतर्गत अदबी दुनिया कार्यक्रम में प्रसारित होगा इकरा शकील का कलाम।

रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत संध्या और रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नचिपाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के कार्यक्रम आपका पत्र मेला में। मैं हूं विवेक प्रताप सिंह और मेरे साथ हैं
1: सचिन शर्मा। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आपके बहुत सारे मैसेज हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं और जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप अगर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। कोई शिकायत है तब वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से आ सकती है आपके द्वारा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9457078288। तो सचिन जी, मैसेज देखिए हमारे पास लगातार आ रहे हैं और आएंगे भी। हमारे जो नए साथी हमारे पास जुड़े हैं, तो पहला मैसेज हमारे पास किन का आया है?
1: पहला मैसेज हमारे पास आया है ज़िला मुरादाबाद, ग्राम धूलापुर, उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का। और ये लिखते हैं, आपका पत्र मेला पेश करने वाले भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मुझे और मेरे परिवार वालों को सभी प्रोग्राम बहुत पसंद आते हैं। आपसे मेरी एक शिकायत है कि हमारे मैसेज शामिल नहीं हो रहे हैं आपको, मैं हमारे मैसेज दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या हमारे मैसेज का शामिल कम हो रहे हैं? और दूसरी बात, जिस श्रोता भाई का मैसेज लगा, दोबारा मैसेज ना करें, उनकी वजह से हम छूट जाते हैं। आप लोग प्रोग्राम तो सुनते नहीं हो और जितने भी घर के नंबर हैं उनसे व्हाट्सएप करते हैं, तो इस तरह की इनकी कुछ शिकायत है कि इनका मैसेज नहीं पढ़ा जाता। लेकिन विवेक जी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आज
0: जो हमने इनका मैसेज हमने पढ़ा है आज 3 बार।
1: हाँ,
0: ओफो, मतलब ये खुद कई बार मैसेज करते हैं आप ये कहना
1: कुछ इस तरह का युवा बिल्कुल इनका ही मैसेज कई बार पढ़ा गया है कार्यक्रम में।
0: अच्छा इन्होंने दूसरे श्रोता भाइयों को भी मैसेज किया है कि बार बार मैसेज ना करें।
1: ये इनकी बात सही लगती है,
0: बिल्कुल सही,
1: बार बार मैसेज ना करें।
0: जी जी,
1: यदि एक बार में आपका मैसेज मिल गया है तो उसको बार बार ना भेजें।
0: जी,
1: अगला पत्र लेंगे विवेक भाई। अगला पत्र लिखा है मोहल्ला हलवाईयान, कस्बा शेरकोट, जिला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदरानी, हिना कौसर, इन सब ने लिखा है। और ये लिखते हैं, आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप? हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, बिल्कुल सभी प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद आते हैं। हमें 4 जुलाई का गीत तुम्हारे, जो धर्मेंद्र जी ने और निधि जी ने पेश किया था, बेहद पसंद आया। गीत आपके नाम, जो शिवानी और सिमरन कौर ने पेश किया, बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा 3 जुलाई का हेलो नजीबाबाद और रात के हमसफ़र, जो जसवंत सिंह जी ने प्रस्तुत किया, बहुत पसंद आया। इसी दिन का गीत तुम्हारे, जो निधि जी और रेणु कोटनाला जी ने पेश किया, वो भी बहुत अच्छा लगा। 2 जुलाई का गीत तुम्हारे, जो विश्वास जी और निधि जी ने पेश किया, बहुत अच्छा लगा। 1 जुलाई का गीत तुम्हारे, जो ताहिर महमूद जी ने पेश किया, बहुत अच्छा लगा। 30 जून का गीत तुम्हारे, जो फरीना जी और रेणु कोटनाला जी ने पेश किया, लाजवाब लगा। आपकी फरमाइश, जो धर्मेंद्र जी ने पेश किया, बहुत अच्छा लगा। एक बात जानना चाहते हैं कि मुझे याद है ज़रा ज़रा प्रोग्राम क्या बंद कर दिया गया है, प्लीज़ बताएं। इसके अलावा एक गुजारिश है आपसे, गीत तुम्हारे का टाइम अब 1 घंटा हो गया है, तो
0: दो अनाउंसर
1: कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। एक खत पढ़े, दूसरा मैसेज शामिल करें, जिससे प्रोग्राम अच्छा बन पड़ेगा, क्योंकि पत्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सकती है। जी,
0: तो ऐसा लगता है इनके इनके मैसेज से ऐसा लगता है कि इन्होंने बार बार गीत तुम्हारे का जिक्र किया है।
1: हाँ, जैसे कि ये सुनते हैं इसका।
0: हाँ, ये कार्यक्रम इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जहाँ तक बात है, बहुत सारे अनाउंसर जो हमारे हैं उनका नाम भी इन्होंने लिया है और इन्होंने लिखा है कि मुझे याद है ज़रा ज़रा प्रोग्राम क्या बंद कर दिया गया है, प्लीज़ बताएं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ, कार्यक्रम बंद नहीं किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ और शेड्यूल हो जाता है, या दिल्ली से रेले आने के कारण या और कोई आवश्यक कोई कार्यक्रम इस तरह का है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें कार्यक्रम को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्यक्रम को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। कार्यक्रम अभी भी सुचारू है और जैसा भी आप देखेंगे भविष्य में कि आपको लगेगा कि ये कार्यक्रम आपको दोबारा से सुनने को मिलेगा
0: जी। और एक और इन्होंने बात लिखी है कि गीत तुम्हारे अब 1 घंटे का हो गया है, 2 अनाउंसर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, तो इन्होंने हमें सुझाव दिया है कि एक खत पढ़ें और दूसरा मैसेज शामिल करें जो व्हाट्सएप पर।
1: ये बात है कि काफी हद तक मुझे सही लग रही है कि इस तरह का अगर हम इस तरह का अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छा पत्र इन्होंने लिखा, वकार भाई पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का अगला मैसेज विवेक भाई देखिए किसने लिखा है हमें।
0: ये हैं पुरुषोत्तम कुमार, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। लिखते हैं कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को हमारा नमस्कार। चित्रपट संगीत में मैसेज कब भेजते हैं? आपके सभी अनाउंसर मीठी वाणी बोलते हैं और कार्यक्रम लाजवाब हैं आपके।
1: हाँ।
0: तो देखिए चित्रपट संगीत में आपको मैसेज नहीं करना है, मैसेज करने वाले जो जिसमें आपको मैसेज करने हैं, एक तो हमारा ये आपका पत्र मिला कार्यक्रम है, अगर आप उनकी बात कर रहे हैं कि फरमाइशी गीतों वाले जो प्रोग्राम है तो उसमें हमारा अभी 10 बजे प्रोग्राम आया था गीत तुम्हारे, उसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 9457078288, यही मैसेज करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और ये अगला मैसेज हमारे पास है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से, इनका
1: नहीं
0: तो,
1: विवेक जी कार्यक्रम का अगला पत्र यहाँ से मिला है हमें, शाही मार्केट सुहारा जिला बिजनौर से, और लिखने वाले हैं आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, अदीब चौधरी, कादिर चौधरी और बेगम रिहाना चौधरी ने। और ये लिखते हैं, इस सप्ताह राजवीर जी, ताहिर जी, फरीना जी, रेणु कोटनाला जी, विश्वास जी, निधि जी, धर्मेंद्र जी, नमित जी, जसवंत जी और आज सुबह विवेक प्रताप सिंह जी, आप सभी ने कार्यक्रम बखूबी पेश किए, बहुत अच्छे लगे। एक शिकायत है, अगर पूरी हो जाए तो हम समझेंगे हमारी दुआ कबूल हो गई। आपका पत्र मिला, अगर 10 मिनट का टाइम इसमें बढ़ा दिया जाए तो शायद सभी के पत्र शामिल हो जाएंगे, सभी निराश नहीं होंगे क्योंकि कुछ पत्र रह जाते हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं, कोई भी शिकायत नहीं। अंकित सैनी जी और शोभित शर्मा जी और डबराल जी ये कार्यक्रम में बहुत मेहनत कर रहे हैं, इन सबको दिल से सैल्यूट। और हम एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि कार्यक्रम आपका पत्र मिला में अंकित सैनी जी और शोभिशर शर्मा जी आएँ तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा
0: जी।
1: विवेक जी क्या कहना चाहेंगे आप?
0: तो इन्होंने लिखा है और बहुत सारे जो हमारे अनाउंसर साथी हैं उनका नाम भी इन्होंने लिखा है। और देखिए खास बात क्या रही इस मैसेज में, इसमें सचिन शर्मा जी का भी नाम है, वो नाम आपने क्यों नहीं पढ़ा?
1: अपना नाम स्वयं से पढ़ने में विवेक जी आपको लगता है कि अपना नाम स्वयं नहीं बोलना चाहिए, यही कारण था।
0: ये नाम मैंने पढ़ दिया है और जो इनकी रिक्वेस्ट है, जो इन्होंने सुझाव हमारे पास दिया है कि अंकित जी और शोभित जी आपका पत्र मिला में आएँ, तो वो सुन रहे हैं आपका जो आपने जो मैसेज किया है।
1: हाँ।
0: आपकी बात उन तक पहुंच चुकी है,
1: भविष्य में वो भी कार्यक्रम में शामिल।
0: बिल्कुल बिल्कुल जरूर। और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है, कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। हमें नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, सभी कार्यक्रमों को मन लगाकर सुनते हैं। हमारी आपसे शिकायत है कि हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम में 2 नंबर दिए जाते हैं, दोनों पर घंटी जाती रहती है, कोई फ़ोन नहीं उठाया जाता, जबकि लाइव कार्यक्रम होता है, फ़ोन तो उठना चाहिए। ये मैसेज हमारे पास आया है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से, लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और तमन्ना परवीन का।
1: तो इसके लिए जो अंसारी फैमिली से हमें ये पत्र मिला है तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि हेलो लोक मंजरी में 2 फोन नंबर हमारे यहाँ दिए जाते हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की, हमारे दोनों फ़ोन नंबर से 9457078288 और 01341203010। आप ये 2 नंबर पर हमसे लगातार संपर्क में रहते हैं और आप बोल रहे हैं कि कभी कभी दोनों फ़ोनों पर दोनों नंबर्स पर घंटी जाती है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन जिस समय आप घंटी कर रहे होते हैं तो उस समय एक लाइन एंगेज रहती है और उस पर कॉलर उस समय लगा हुआ रहता है, कॉल से ऑन एयर रहता है और कॉलर बात करता रहता है, और फिर जब वहाँ से बात कट हो जाती है तब आप उसी नंबर पर दूसरे नंबर पर कॉल लगाते हैं तब वो वैकेंट होता था। हमारा ये प्रयास रहता है कि दोनों नंबर को इक्वल नंबर ऑफ चांसेस दिए जाएँ, पहले जो कॉल उठाते हैं जिस नंबर से तो दूसरे नंबर से उसके बाद फिर हम जो कॉल उठाते हैं वो दूसरे नंबर पे जो कॉल आ रही है उसको उठाते हैं। तो दुर्भाग्यवश ऐसा रहा होगा कि जब आपने जिस नंबर पे कॉल किया होगा तो वो उस समय खाली होगा और उस पे घंटी जा रही होगी, लेकिन उसी समय दूसरे श्रोता ऑनलाइन होंगे, और जब आपने उस नंबर को छोड़ करके दूसरे नंबर पे ट्राई किया होगा तो दूसरे नंबर पे उस समय उसको खाली छोड़ा गया होगा, क्योंकि एक बार में एक ही श्रोता को हम ऑनलाइन या ऑन एयर ले सकते हैं, इसी वजह से आपको ऐसा लगा। लेकिन दोनों ही नंबरों पे फ़ोन उठाए जाते हैं, दोनों ही नंबरों पर हमारे श्रोताओं को सुना जाता है और आप सब भी हमारे सारे श्रोताओं को फ़ोन नंबर्स के माध्यम से सुनते हैं। पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का अगला पत्र मिला है विवेक भाई हमें नगीना से अनिल विनोशा ने, और ये लिखते हैं, आज के प्रोग्राम की बात करें तो बहुत अच्छे लगे, सभी प्रोग्राम प्रस्तुत करने वालों को हमारा, आकाशवाणी के सभी कलाकारों को हमारा नमस्कार। लास्ट वीक की हाल सूरत कुछ इस तरह है, वेडनेसडे को डिजिटल अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा बहुत अच्छी और कीमती लगी। इसी दिन ताहिर जी ने बहुत अच्छे सॉन्ग प्ले किए और अनुपम जी ने चित्रपट और संदेश.com पर बहुत अच्छे से गाने प्रस्तुत किए। मंडे को राजवीर और ज्योति गौड़ जी की उपस्थिति तो 100% अच्छी रही, अच्छे प्रोग्राम के सिग्नेचर हैं वो दोनों, वो सदा ही अच्छे सॉन्ग सिलेक्शन कर प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा बना देते हैं। ट्यूसडे को धर्मेंद्र जी और फरीना जी ने रेडियो से हिलने नहीं दिया, बड़े ही मन से प्रोग्राम करते हैं। आज सुबह से सचिन जी, वंदना और सूरज के साथ साथ बहुत अच्छा किए हैं। बच्चों के लिए ट्रैफिक के नियमों की जानकारी पर अच्छी जानकारी दी, सच में बहुत अच्छा लगा। अब चित्रपट बहुत अच्छा जा रहा है, जिंदगी लाइव भी बहुत अच्छी, अच्छा कार्यक्रम जिंदगी लाइव में भी बहुत अच्छा टॉपिक लिया था निधि जी ने किया था। रात के हमसफ़र को भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया, जो सादर जसवंत जी ने किया था। रेणु कोटनाला जी की मीठी आवाज़ तो दिल पर वार करती है, प्रोग्राम तो फिर हिट होता ही है। और शिकायत सुझाव बहुत आपकी टेबल पर पेंडिंग पड़े हैं, इंतज़ार है DRS यानी कि थर्ड अंपायर के निर्णय का, तब तक चुप हैं हम बस, धन्यवाद। तो विवेक जी क्या कहना चाहेंगे आप?
0: देखिए शिकायत भी है और इनकी जो आखिरी लाइन है, इन्होंने लिखा है कि DRS यानी थर्ड एम्पायर के निर्णय का ये इंतजार कर रहे हैं, तब तक चुप
1: रिव्यू सिस्टम।
0: तो देखिए गुस्सा भी इसमें झलक रहा है, नाराजगी भी झलक रही है, और शिकायत तो इन्होंने बहुत सारी भेजी हुई है, वो पेंडिंग है इनके हिसाब से।
1: क्योंकि कभी कभी विनोचा जी ऐसा होता है कि हमारे पास भी यहाँ पर कुछ बाध्यताएं हैं और उन्हीं बाध्यताओं के तहत हम भी बंधे हुए हैं, है ना। हम अपनी मर्जी से या कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से एकदम से आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकता। महानिदेशालय से पहले इसके लिए परमिशन ली जाती है, जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तब ही हमारे श्रोता द्वारा की गई किसी भी शिकायत या सुझाव पर अमल को धरातल स्तर पर, जमीनी स्तर पर लाया जा सकता है, मतलब कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस बात को अन्यथा ना लें और बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि आपकी शिकायत पेंडिंग है या DRS या थर्ड अंपायर सिस्टम डिसीजन रिव्यू सिस्टम में पड़ी हुई आपकी शिकायत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस इंतज़ार है तो बस अप्रूवल का, जैसे ही अप्रूवल्स आ जाती हैं, अलग अलग सुझाव जो हमारे श्रोताओं के होते हैं, हम तुरंत कार्यक्रमों को उसी कलेवर में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम का अगला पत्र लेंगे विवेक जी, कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और ये पत्र हमें लिखा है मदनगिरी ग्राम गधारोना पोस्ट लंढौरा रुड़की से, और ये लिखते हैं, सुबह से ही कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आकाशवाणी नजीबाबाद के सभी कार्यक्रम इतने अच्छे हैं कि जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, सभी उद्घोषक बड़ी लगन से और मेहनत से प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आकाशवाणी नजीबाबाद में कार्यक्रम कृषि जगत जो आता है ना, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, किसानों का मार्गदर्शन करता है, इसका उल्लेख कम ही श्रोता करते हैं। किसी कार्यक्रम

0: आलोचना करूं, ये शब्द मेरे पास है ही नहीं। आकाशवाणी नजीबाबाद इसी तरह फलता फूलता रहे, यही मेरी कामना है।
1: वाह क्या बात है, कितना अच्छा मैसेज और कितनी अच्छी दुआएं इन्होंने हमारे लिए लिखी हैं। और सुबह से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और रोज़ ये हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत ही लगन से आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं। बहुत खुशी होती है जब इस तरह की तारीफ़ हमारे पास आती है। और इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम की आलोचना करूं, इनके पास ऐसे कोई शब्द नहीं है। तो हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, कृषि जगत की आपने बात की, महिला जगत है हमारे पास, और युववाणी है, कार्यक्रम बहुत सारे हैं जो बेहतरीन हैं। आप सुनते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए हमें।
0: कार्यक्रम का अगला पत्र हमें लिखा है विलेज और पोस्ट राहुल नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान और राघव चौहान ने। ये लिखते हैं, जब हम जून की छुट्टी के बाद स्कूल जाते हैं तो उस समय आज की तरह हॉलीडे होमवर्क का प्रेशर नहीं था, बहुत खुशी मिलती थी। इस तरह की कुछ बातें लिखी हैं। और ये एक बात और लिख रहे हैं, लेकिन अब आजकल के बच्चों में इस तरह की बातें हो रही हैं। अब ये लिखते हैं कि आकाशवाणी नजीबाबाद को कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, कृषि जगत से किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है, युववाणी से नई जानकारी मिलती है, महिला जगत भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। रेणु कोटनाला जी, निधि जी, ज्योति जी, नेहा, शिव, अनुपम जी, महवश, हुमा, ये सब लोग और जितने भी अनाउंसर हैं बहुत अच्छी प्रस्तुति कर रहे हैं, करते हैं। शोभित जी, अंकित जी का प्रयास बहुत अच्छा है।
1: जी बिल्कुल, देखिए शोभित जी और अंकित जी का प्रयास तो ये है कि उनके दिशा निर्देश जो भी होते हैं उनके अनुसार हम काम करते हैं, जो भी वहाँ से हमें कहा जाता है उसी हिसाब से हम कार्यक्रम पेश करते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि शोभित जी और अंकित जी कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं तो यकीन मानिए पर्दे के पीछे रहकर वो आपके लिए इन कार्यक्रमों को पेश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपने हमें मैसेज किया।
0: कार्यक्रम का अगला पत्र हमें मिला है सरायमीर स्ट्रीट नगीना से रईस अहमद राही, रवीश अहमद राही, रुएश अहमद राही, रिशान अहमद राही, रुशेज अहमद राही, रुशमान अहमद राही और समस्त राही परिवार की ओर से। और ये लिखते हैं विवेक जी और सचिन जी के साथ सभी श्रोता साथियों को राही परिवार का प्यार भरा सलाम। कुछ हफ्तों से किसी कारणवश मैसेज नहीं किया, पर ऐसा हरगिज नहीं कि कार्यक्रम सुनने में कोताही हुई हो। इस सप्ताह तकरीबन सभी कार्यक्रम अच्छे लगे, खासकर संदेश.com, वो जागरूक श्रोता, सारे ही कार्यक्रम, सुहाना सफर, गीत तुम्हारे इत्यादि बहुत बेहतर लगे। साप्ताहिक रात के हम सफर भी हमें बहुत भाया। आजकल हमारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चलने के कारण आगे और कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, फिर कभी। धन्यवाद।
1: स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम दुआ करेंगे कि आपका बहुत जल्दी स्वास्थ्य ठीक होगा और आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। बहुत कुछ आपके मन में था वो आप नहीं लिख पाए क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और आपने बहुत सारे श्रोताओं का और बहुत सारे अनाउंसर का और बहुत सारे हमारे जितने भी कार्यक्रम आकाशवाणी नजीबाबाद से पेश होते हैं उनको बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए आपका रईस अहमद जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: विवेक भाई, ऐसा लग रहा है आज हमारे श्रोता कार्यक्रम को सुन नहीं रहे हैं या उनके पास कुछ है नहीं, तो अभी तक हमारे पास पत्र नहीं आ रहे हैं और कार्यक्रम में अभी 8 मिनट शेष हैं और कोई भी पत्र अब हमारे पास पेंडिंग नहीं है। और फिर हमारे श्रोता शिकायत करते हैं कि
1: हमारा मैसेज नहीं लिया,
0: हमारा मैसेज नहीं पढ़ा गया। और देखते हैं, ये बात कहते ही एक पत्र हमें मिला व्हाट्सएप पर, और ये लिखते हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू इस्माइल खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, संजीव, कंचन, सुनीता जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार। देखिए कितना अच्छा पत्र इन्होंने लिख रखा है, हरे दिल, लाल दिल, नीले दिल, कितने प्यार से ये पत्र लिखते हैं और सजाते हैं। प्रोग्राम आपका पत्र मिला पेश करने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम तो आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रम के बहुत पुराने श्रोता हैं। सुबह 5:53 से लेकर रात के 11:00 से 11:10 तक अंत में समाचार सुनकर हम कार्यक्रम अपना रेडियो सेटअप बंद करते हैं। आपका और आपके सभी अनुजों का, प्रिय अनाउंसर्स का प्रोग्राम पेश करने का अंदाज हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आपके प्रोग्राम जैसे सूरज के साथ साथ युववाणी, गीत तुम्हारे, आपकी फरमाइश, जागरूक श्रोता, फिल्मी संडे, नाटक, झलकी, संदेश.com, इतने अच्छे कार्यक्रम पेश करने के लिए हम आपका और आपके सभी अनाउंसर्स का, आकाशवाणी नजीबाबाद में गुलाब के फूलों के साथ पूरा धन्यवाद करते हैं।
1: बिल्कुल, आपने कहा है कि प्रोग्राम पेश करने का अंदाज़ इनको, हमारा जो भी हमारे अनाउंसर साथी हैं उनका जो अंदाज़ है वो इनको बहुत पसंद आया है, और हमें भी पसंद आया है इनका जो मैसेज लिखने का जो अंदाज़ है। कितने सारे दिल इन्होंने लिखकर भेजे हैं, रंग बिरंगे,
0: मतलब ये लग रहा है कि ये जो पत्र है ये दिल से लिखा हुआ है।
1: बिल्कुल, दिल की गहराइयों से लिखा गया है, और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से।
0: हाँ, कार्यक्रम का अगला पत्र हमें मिला है ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत सिंह, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश की ओर से, और ये लिखते हैं, नजीबाबाद आकाशवाणी के सारे ही कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, और बात करता हूँ, हेलो नजीबाबाद, और हेलो कैसे हैं आप, और अन्य प्रोग्राम भी सारे पसंद आते हैं, कोई भी शिकायत नहीं है आपसे, छोटी सी शिकायत आपसे ये है कि आप लोग शोभित शर्मा जी को आपका पत्र कार्यक्रम में सुनना बुला नहीं बुलाते हैं, और हम उन्हें सुनना चाहते हैं। हेलो कैसे हैं मैं, आप इनको मौका दिया जाए, इनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है, और उनको हमारा प्यार भरा नमस्कार पहुंचा दीजिएगा, धन्यवाद।
1: बिल्कुल, आपका नमस्कार उन तक पहुंच चुका है, और जहां तक आपकी शिकायत है या सुझाव है वो भी उन तक पहुंच चुका है कि शोभित जी और अंकित जी ये भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हों, और ख़ास तौर से इस कार्यक्रम में जो जोड़ता है हमें सीधे हमारे श्रोताओं से और हमारी आकाशवाणी से। तो आप चाहते हैं कि ये जो हमारे शोभित सर हैं और अंकित सर हैं ये इस कार्यक्रम में आएं, ये ज़रूर आपका जो मैसेज है सुन रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से, उन तक ये बात पहुंच चुकी है, मैसेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कार्यक्रम का अगला पत्र हमें मिला है मनोज कुमार नामदेव, ग्राम रसूलपुर नंगला, ज़िला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से, सुबह प्रभात भेला से लेकर और शुभ रात्रि तक के सारे कार्यक्रम अति उत्तम होते हैं। मेरे बड़े भाई दीपक नामदेव सारे कार्यक्रम सुनते हैं रात्रि तक, रेडियो अपने पास रखते हैं, और इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, सभी श्रोताओं से एक निवेदन है कि कोई ना कोई पेड़ ज़रूर लगाएं ताकि प्रकृति को लाभ मिले मानव जीवन के लिए।
1: वाह, बहुत ही अच्छा संदेश इन्होंने लिखा है, और आपको सारे प्रोग्राम हमारे पसंद आ रहे हैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सुबह से और रात तक हमारे सारे कार्यक्रम सुनते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।
0: कार्यक्रम का अगला पत्र हमें भेजा है जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश से नरेंद्र कुमार जी ने, और ये 10 पेज, मतलब जो पेज का पैरामीटर है A4 साइज या फुल साइज FS, उसमें 10 पेज लिखे हुए हैं, और कितनी तलीनता से हाथ से लिखा हुआ और इतनी साफ राइटिंग में लिखा है, और अक्सर इनके पत्र हमें हर हफ्ते मिलते हैं और वो ठीक इसी तरह से लिखे हुए होते हैं, तो अलग अलग कार्यक्रमों को दिन वार ये लिखते हैं। 17 जून को एक ही फिल्म से कार्यक्रम में कटी पतंग के गीत सुनवाए गए, बहुत अच्छे लगे। 18 जून को रेणु राजपूत जी ने वंदना सूरज के साथ साथ ये कार्यक्रम बहुत अच्छे प्रस्तुत किए, है ना। और कृषि जगत अनुभाग की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम में जितेंद्र कुमार ने किसान भाइयों से अनुरोध किया कि पालतू पशुओं के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए समय समय पर पेट के कीड़ों की रोकथाम हेतु दवा की समुचित मात्रा का सेवन उन्हें अवश्य कराएं, और इस तरह की सारी बातें। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में रेणु कोटनाला जी ने हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म के गीत सुनवाए। 19 जून को सचिन शर्मा जी ने वंदना, चिंतन, गांधी कथा, खेती की बातें, सूरज के साथ साथ सरीखे कार्यक्रम बेहतरीन प्रस्तुत किए। धरती गाती है क्रम में अखिलेश कुमार की गाय रागनी भी सुनने को मिली। सचिन शर्मा जी और राजबीर जी ने गीत तुम्हारे जागरूक श्रोता कार्यक्रम बहुत बढ़िया प्रस्तुत किया। कार्यक्रमों के प्रसारण के दौरान तकनीकी खराबियों का सामना न करना पड़े इसका खास ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। उसके बाद ये लिखते हैं 20 जून को ममता जी ने वंदना सूरज के साथ साथ सरीखे कार्यक्रम बखूबी प्रस्तुत किए। हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम को हिमांशु रंजन अंकित कुमार ने बखूबी प्रस्तुत किया। नजीबाबाद केंद्र के सुबह से दोपहर तक के कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। मनोज वर्मा जी और जसवंत सिंह जी ने बहुत अच्छे से उन्हें प्रस्तुत किया। तो इस तरह की इनकी कुछ 22 जून के बारे में लिखते हैं। रविकांत वर्मा जी ने वंदना, चिंतन, स्वास्थ्य चर्चा, खेती की बातें सारे कार्यक्रम बहुत प्रस्तुत किए, और देखिए कितना अच्छा लिख रहे हैं ये। और अभी इनका पत्र अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी 4 ही पेज पढ़े गए, वो भी हमने बहुत शॉर्ट में पढ़े हैं। विवेक जी,
1: जी
0: क्या कहना चाहेंगे? विवेक जी जल्दी से कह दीजिए,
1: देखिए इनका
0: टाइम समय कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने वाला है।
1: इनका जो ये पत्र है हमारे पास 10 पेज का आपने बताया है, 9 जून से लेकर और आज तक का जो है इनका
0: पूरा लिखा,
1: पूरा विश्लेषण इन्होंने तारीख के हिसाब से और जो जिन्होंने वो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उस हिसाब से इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इन्होंने लिखकर भेजी है, और बहुत अच्छा लगा। इतना डिटेल में जाकर आप हमारी तारीफ करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं।
0: हाँ, इस तरह से होता है क्योंकि अगर हमारे सारे श्रोता हमारे सारे कार्यक्रमों को सुनते हैं ना, और वो इतना लंबा पत्र लिखते हैं विवेक, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमसे कितने ज़्यादा अटैच्ड हैं

कि मतलब एक एक चीज को इतने जहन में रखते हैं और इतने दिन बाद तक भी उन्हें याद रहती है कि 20 जून को कौन सा कार्यक्रम हुआ, 17 जून को कौन सा कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया, अनाउंसर्स कौन थे, कंपेयर कौन थे, ये सब बातें उनके पास रहती हैं। और विवेक, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि घड़ी की सुइयां अब हमें इजाजत नहीं देती कि कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए, तो कर लेते हैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 होने वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी संडे।
1: फिल्मी संडे।
0: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम फिल्मी संडे में आप सभी का स्वागत है। आज के इस हसीन दोपहर में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म की दास्तान जिसने पर्दे पर आते ही एक नया इतिहास लिख दिया। आज से 34 साल पहले यानी 1992 में एक फिल्म आई थी, एक ऐसी फिल्म जिसमें बेपनाह दोस्ती थी, रोमानियत थी, सुरीले नगमे और इन सब के बीच छुपा था एक ऐसा खौफनाक साया जिसने थिएटर में बैठे दर्शकों की सांसें रोक दी थीं। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर अब्बास मस्तान की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है खिलाड़ी। ये वही फिल्म है जिसने अक्षय कुमार को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया और पूरी दुनिया में उन्हें खिलाड़ी के नाम से पहचान दिलाई। इस फिल्म की कहानी में चार मुख्य किरदार हैं। पहला राज मल्होत्रा यानी अक्षय कुमार, जिसे हर वक्त कोई ना कोई शर्त लगाने की धुन सवार रहती है। दूसरे हैं नीलम चौधरी यानी आयशा जुल्का, राज की मोहब्बत और उसकी सबसे अच्छी दोस्त। तीसरा किरदार इस फिल्म में है बोनी यानी दीपक तिजोरी, राज का सबसे पक्का दोस्त। चौथा किरदार है शीतलनाथ यानी सबीहा, जो नीलम की सहेली है और बोनी की गर्लफ्रेंड है। फिल्म की कहानी इन्हीं चारों के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा फिल्म में और भी किरदार हैं, जैसे टीनू आनंद जो कॉलेज प्रोफेसर के रूप में है, जॉनी लीबर जो अन्ना पिल्लई के रूप में है, शक्ति कपूर हैं इंस्पेक्टर सुरेश मल्होत्रा और राज मल्होत्रा के भाई के रूप में, अनंत महादेवन ने निभाया है नवीन चौधरी यानी नीलम के अंकल का किरदार, शरद सक्सेना हैं बहादुर सिंह के रूप में और प्रेम चोपड़ा जो शीतल के पिता हैं और शहर के बड़े रईस बिजनेसमैन हैं लेकिन अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है राज मल्होत्रा और बोनी की शर्त से, जिसमें दोनों मिलकर बहादुर सिंह को डराते हैं और हमेशा की तरह राज शर्त जीत जाता है। इससे नाराज सुरेश मल्होत्रा दोनों को लॉकअप में डाल देता है और वार्निंग देकर छोड़ देता है, क्योंकि इंस्पेक्टर सुरेश की पत्नी यानी राज की भाभी अपने देवर को छुड़ाने यानी राज मल्होत्रा को छुड़ाने पुलिस स्टेशन आती है।
2: आपने इन्हें बंद क्यों किया? क्या किया इन्होंने?
3: सुधा, मैंने इनको कितनी बार समझाया कि ये शर्तें लगाना और शरारते करना छोड़ दो, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है। अब इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। ये जो तुम तीनों नाटक कर रहे थे ना अभी, मैं सब समझ रहा था। और ये मत समझना कि तुम इनकी वजह से बच गए हो। ये आखिरी वार्निंग है, लास्ट वार्निंग। कल से तुम्हारे कॉलेज खुल रहे हैं, उसके बाद सिर्फ पढ़ाई, नथिंग एल्स। नाउ गेट आउट। एक मिनट, आप इधर आइए। आज शाम को मैं घर पर जल्दी आऊंगा। वो मोतीचूर के लड्डू है ना, तैयार रखना। क्या तैयार रखना?
2: मोतीचूर के लड्डू।
3: आप भी जाइए, खराब करती हूं सबको।
0: 90 की फिल्मों में कॉलेज के सीन हो और लड़ाई झगड़े और रैगिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस फिल्म में भी कॉलेज के कुछ सीन ऐसे ही दिखाए गए हैं। इसके अलावा कॉलेज में एक और चीज दिखाई जाती थी, वो है मोहब्बत। इसी मोहब्बत की शुरुआत होती है कॉलेज में आई एक नई लड़की नीलम और राज की कहानी।

0: राज नीलम को गुलाब देने की शर्त रख लेता है अपने दोस्तों के साथ।
1: अरे वाह, नीलम हॉस्टल में रहेगी, यानी कि बॉम्बे में अकेली।
2: इसका मतलब ये है तेरी लाइन क्लियर है।
1: हाँ।
3: हे, क्या लाइन क्लियर है? तू उसे अकेला समझकर उससे बात करने की कोशिश मत करना, वरना तेरा मुंह होगा और उसकी हील वाली सैंडल। राज वो तेरे ऊपर बहुत भड़की हुई है।
1: प्यार की शुरुआत गालियों से होती है, तेरे को याद है? उस दिन जब फूल बरस रहे थे तो मुझे कैसे देख रही थी, याद है ना तेरे को? हाय, पहली नजर में घायल कर दिया। अच्छा तो देख, थोड़े दिनों में रोज दे, जो लड़का जिस लड़की से प्यार करता है उसे एक लाल गुलाब देता है, और अगर वो लड़की भी उससे प्यार करती है तो मुस्कुराकर वो लाल गुलाब स्वीकार कर लेती है।
3: हाँ।
1: है ना? और मैं नीलम को लाल गुलाब दे के बताऊंगा।
2: क्या आइडिया है?
3: अरे ए, नीलम फूल लेके सीधा इसके मुंह पे मार देगी।
1: अच्छा,
2: और अगर उसने फूल ले लिया तो?
3: चल लगी 50-50 की।
2: अरे हाँ हाँ, एक मिनट। ए भाई, लगाऊं क्या?
1: हाँ बिंदास लगा लगा।
2: मरवाएगा तो नहीं?
1: नहीं नहीं।
2: डन
3: डन।

और गाने के एंड में हीरोइन हीरो से गुलाब ले ही लेती है और मोहब्बत की शुरुआत हो जाती है। कॉलेज में लड़कियों की बास्केटबॉल टीम का सिलेक्शन हो रहा है जिसमें नीलम और शीतल दोनों का सिलेक्शन होता है। बास्केटबॉल टीम टूर्नामेंट के लिए 7 दिन के लिए नासिक जा रही है और

0: और गाने के एंड में हीरोइन हीरो से गुलाब ले ही लेती है और मोहब्बत की शुरुआत हो जाती है। कॉलेज में लड़कियों की बास्केटबॉल टीम का सिलेक्शन हो रहा है जिसमें नीलम और शीतल दोनों का सिलेक्शन होता है। बास्केटबॉल टीम टूर्नामेंट के लिए 7 दिन के लिए नासिक जा रही है और
1: आज हम खाना नहीं खाएंगे, खाना खाने से नींद आ जाती है और फिर पढ़ाई नहीं होती।
2: ठीक है बेटी, हाँ लेकिन जूस जरूर पी लेना। हाँ देखा, इन दोनों को पढ़ाई करने का कितना शौक है और एक तुम दोनों हो। इंस्पेक्टर सुरेश मल्होत्रा के छोटे भाई हो ना तुम। हाँ मैं अब उसे फोन करता हूँ कि इसकी पढ़ाई लिखाई बंद करो और इसे किसी डाटा कंपनी में दाखिल करवा दो। लड़की बनने का बहुत शौक है इसे, अभी फोन करता हूँ।
0: कैलाशनाथ से डांट पड़ने के बाद शीतल और नीलम राज और बोनी को चिढ़ाती हैं और इस बात से तंग आकर राज शीतल से कैलाशनाथ को सबक सिखाने के लिए शर्त लगा लेता है।
3: बस करो, बात हो गया। एक तो कल तुम दोनों ने मुझे अंकल के सामने फंसा दिया और अब मेरा मजाक उड़ा रहे हो।
1: अरे बात ही ऐसी है।
3: अबे ओ शीतल, मैं तेरे डैडी की बहुत इज्जत करता हूँ और अगर मैं चाहूँ ना तो तेरे डैडी को हाथ पैर जोड़ने और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर सकता हूँ।
1: मेरे डैडी और तेरे आगे गिड़गिड़ाए इम्पॉसिबल।
3: लगानी है शर्त, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ ये खेल में जीत मेरी होगी।
4: क्या बोलती है?
1: अरे लगी 500 की, मेरी भी लग गई।
0: राज बोनी शीतल और नीलम कैलाशनाथ को सबक सिखाने के लिए शीतल की किडनैपिंग का नाटक रचते हैं और 5 लाख की डिमांड करते हैं। चारों दोस्त रात को एक कॉटेज में रुकते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है जॉनी लीबर की यानी कॉमेडी के बादशाह की यानी अन्ना पिल्लई की।
3: कॉटेज का भाड़ा क्या है?
5: 200 रुपया। साहब दे तो है ने, पर 200 रुपए दे के अब झटका मत करो साहब, बहुत गरीब आदमी ये सब झेड़ को जाता। हम खाली इसमें 20 रुपए मिलता, बहुत तकलीफ है
3: जी। आप
5: मेरे बात सुन, मेरे छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ बच्चे लगे, आपको मालूम बच्चे क्या होते
3: हैं? अच्छा भाई 200 रुपया।
5: एक मिनट, रात बड़े पांच बड़े मुत्त बड़े तेरी बात नहीं बाहर ही गया। मेरा बड़ा छोकरा है, इसको भाई बहुत बड़ा एडवोकेट वकील बनाने वाला है। क्यों मालूम है? बहुत झूठ बोलता पोरा मुट्ठा है। ये मेरा दूसरा छोकरा इसको मैं गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑफिसर बनाने वाला है। क्यों मालूम है? बहुत काम चोर है कोई वरंगड़ा। ये मेरा तीसरा छोकरा इसको मैं बहुत बड़ा अवलदार पुलिस वाला बनाने वाला। क्यों मालूम है? 1 रुपया 2 रुपए लेने के बगैर कोई काम नहीं करता पूरा भैया। ये मेरा छोटा छोकरा बहुत अच्छा, ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये कभी तरक्की नहीं करेगा, मेरे बाप नारियल पानी बेचेगा। क्यों मालूम है? ये बहुत ईमानदार बहुत अच्छा बड़ा।
0: जॉनी लीबर का ये कालजयी डायलॉग सुनकर आज भी श्रोताओं होठों पर मुस्कान आ जाती है।

0: किडनैपर को 5 लाख रुपए देने के लिए कैलाशनाथ बैंक से पैसे निकालने जाता है, लेकिन बैंक मैनेजर पुलिस को बता देता है कि कैलाशनाथ 5 लाख रुपए लेकर गए हैं और घबराए हुए हैं। अब पुलिस भी कैलाशनाथ पर नजर बनाए हुए है और कैलाशनाथ का फोन भी पुलिस के द्वारा टेप किया जा रहा है। पुलिस से बचते बचाते राज कैलाशनाथ से 5 लाख रुपए तो ले लेता है और शर्त भी जीत जाता है, लेकिन इन सब के बीच शीतल का खून हो जाता है। यहाँ से फिल्म एक नया और रोमांचक मोड़ लेती है।
1: नीलू, तुम तो यहाँ थी, कौन आया था यहाँ?
2: मैंने तो किसी को भी नहीं देखा, यहाँ तो कोई भी नहीं आया था।
1: तो फिर ये
2: राज, राज हमें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे?
1: बानी, हमें अंकल को सब कुछ बता देना चाहिए कि हमने ये खून नहीं किया, हम तो मजाक कर रहे थे।
3: कौन यकीन करेगा हम लोगों की इस बात पर? सिर्फ शीतल ही जानती थी कि हम लोग मजाक कर रहे हैं और खून का इल्जाम हमारे सर पर आ जाएगा राज। और तो और पुलिस भी यही समझेगी कि हम ही लोगों ने शीतल को किडनैप किया और उसके बाद पैसों के लालच में आके उसका खून कर दिया। हम लोगों को जेल हो सकती है, जेल।
0: अब नीलम, राज और बोनी की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस किडनैपर की छानबीन कर रही है, शीतल की मौत हो चुकी है। तीनों शीतल की लाश को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी दोस्त की मौत का तीनों को मलाल भी है।
2: शीतल की खून पर हमने पर्दा तो डाल दिया, लेकिन जिंदगी भर ये पछतावा रहेगा कि उसका खून हमारी वजह से हुआ। जिंदगी भर ये डर हमारा पीछा करता रहेगा कि कहीं हम पकड़े न जाए।
1: हमें कुछ नहीं होगा नीलम, क्योंकि हम बेकसूर हैं, और अगर फिर भी हालात ने साथ ना दिया तो हम पुलिस को जाके साफ साफ बता देंगे, फिर चाहे मुझे जेल क्यों ना हो जाए।
2: ऐसा मत कहो राज, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी?
1: तो वादा करो नीलम, जिंदगी किसी भी मोड़ पर किसी भी हालात में तुम मेरा साथ निभाओगे, वादा करो नीलम।
0: लाश को छुपाने की जद्दोजहद में अनजाने में राज और बोनी शीतल की लाश को कैलाशनाथ की गाड़ी में छुपा देते हैं और कैलाशनाथ को इस तरह से शीतल की मौत का पता लगता है। शीतल की मौत का गम कैलाशनाथ को तोड़कर रख देता है। अखबार में शीतल की मौत की खबर छपती है और जॉनी लीवर अखबार को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है।
4: तुम मर्डर के बारे में क्या जानते हो?
5: 4 दिन के पहले ये चौकरी मेरा कॉटेज में आया था साहब।
4: और कौन था इसके साथ?
5: इसके साथ में एक चौकरी और 2 चौकरे लोग, टोटल 4। पिकनिक बनाने के लिए मेरे पास आया, मैं उनको कॉटेज दे दिया, 25 रुपए एडवांस लेके हम उनको कॉटेज दे दिया। उसके बाद में कॉटेज छोड़कर कभी बागा मेरे को मारा नहीं है। मैं ये पेपर देख के इधर आया।

0: कैलाशनाथ के कुछ गहरे राज बोनी को पता चल जाते हैं और बोनी कैलाशनाथ को एक लड़की का खून करते हुए देख लेता है। उधर इंस्पेक्टर को भी बोनी पर शक हो जाता है। बोनी कैलाशनाथ से बचकर भागता है, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है और जान बचाकर भागता है। राज बोनी को बचाने की कोशिश में गुंडों के पीछे जाता है और नीलम ये सब बताने के लिए इंस्पेक्टर के पास जाती है और इस तरह से कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। आखिरकार बोनी को राज और इंस्पेक्टर ढूंढ लेते हैं और अस्पताल पहुंचाते हैं। अस्पताल पहुंचकर राज नीलम को फोन करता है।
1: हेलो
2: हेलो हेलो नीलम, तुम ठीक तो हो ना?
1: हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम कहाँ से बोल रहे हो? बोनी कहाँ है?
2: वो बुरी तरह से जख्मी हो गया।
3: मेरे और भैया ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया।
2: और सुनो नीलम, इस वक्त हॉस्टल में कौन कौन है?
1: सब लोग तो पार्टी में गए हुए हैं, मैं अकेली हूँ।
2: अकेली हूँ? नीलम, तुम सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दो और जब तक मैं ना हूँ खोलना मत।
1: क्यों, क्या बात है?
2: देखो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम्हारी जान खतरे में।
1: मेरी जान खतरे में?
0: अब एक और सन्नाटेदार खामोशी और रहस्यमय संगीत फिल्म के क्लाइमैक्स को और भी ज्यादा खतरनाक और शानदार बना देते हैं, क्योंकि कोई हमलावर नीलम को मारने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ है। फिल्म में सस्पेंस अपने शबाब पर है और जब क्लाइमैक्स में उस नकाबपोश कातिल का चेहरा सामने आता है तो सब दंग रह जाते हैं। वो कातिल कोई और नहीं बल्कि नीलम के चाचा नवीन चौधरी यानी अनंत महादेवन साहब निकलते हैं। इतने में ही पुलिस पहुंच जाती है और नीलम के अंकल को पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में नवीन चौधरी नीलम का अंकल सब कुछ बता देता है।
4: न वो मेरी भतीजी है, न मैं उसका अंकल हूं।
5: क्या?
4: मैं नीलम के पिता अनुपम चौधरी के फैक्ट्री में मैनेजर था। वो मुझ पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसी हालात में उन्होंने अपनी 3 साल की बच्ची नीलम और अपना सारा कारोबार मुझे सौंप कर चल बसे।
5: फिर
4: 15 साल बाद जब नीलम 18 साल की हुई तो सेठ अनुपम चौधरी का वकील एक वसीयतनामा लेकर मेरे पास आया। क्या लिखा है इसमें?
5: इसमें लिखा है कि जब नीलम 18 साल की हो जाए तो ये सारा कारोबार और प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाए। और हाँ, यदि नीलम को कुछ हो जाता है तो उसके गार्जियन होने के नाते उसकी प्रॉपर्टी आप ही के पास रहेगी।
4: ये सुनकर मैंने सोचा क्यों ना नीलम का कत्ल करके सारी दौलत का मालिक मैं बन जाऊं।
0: पैसों की हवस और लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकती है, अब्बास मस्तान ने इस क्लाइमेक्स में बखूबी दिखाया है। एक सिहरन पैदा करने वाली लड़ाई के बाद आखिरकार राज और बोनी खुद को बेगुनाह साबित कर देते हैं और बुराई का अंत होता है। श्रोताओं, साल 1992 की इस मास्टरपीस फिल्म खिलाड़ी की सिर्फ कहानी ही इसकी ताकत नहीं थी, बल्कि फिल्म की कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी हमारे दिलों की बेहद करीब हैं। सबसे पहली बात, इस फिल्म ने बॉलीवुड को ऐसा सितारा दिया जिसे आज हम खिलाड़ी कुमार के नाम से जानते हैं। अक्षय कुमार की वो बेपरवाह मुस्कान, उनके वो हैरतअंगेज स्टंट और उनकी एनर्जी ने युवाओं को अपना दीवाना बना दिया था। और दूसरी खास बात थी इस फिल्म का म्यूजिक। जतिन ललित के संगीत ने जो जादू बिखेरा वो आज 34 साल बाद भी फीका नहीं पड़ा है, चाहे वो अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में रोमानियत से भरे गाने हों, कॉलेज की यादों को ताजा करते हुए गीत हों, ये गाने कहीं ना कहीं आज भी हमारी प्लेलिस्ट की शान है। और आखिरी बात, इस फिल्म ने थ्रिलर सिनेमा का ढांचा बदल दिया। जॉनी लीवर साहब की वो कमाल की कॉमेडी और बैकग्राउंड में चलता वो खौफनाक सस्पेंस, इन दोनों का एक ऐसा मुकम्मल तालमेल फिर कभी देखने को नहीं मिला। खिलाड़ी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हमारे बचपन, हमारी जवानी और उस दौर के सिनेमा की एक बेहद खूबसूरत याद है। तो आज के इस फिल्मी संडे के सफर में इतना ही। अगले अंक में आपसे दोबारा कहीं मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
6: फिल्मी संडे,
7: फिल्मी संडे,
6: फिल्मी संडे,
7: फिल्मी संडे।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम फिल्मी संडे। श्रोताओं, आपको बता दें आज रात 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में आप सुनेंगे पंजाबी लोकगीत एएस कॉन्ग की आवाज में। अपराह्न 2:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक और अनेक का, जो आधारित होगा चेतन आनंद और अन्य कलाकारों पर। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। अपराह्न के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
7: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्ची में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। दो दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से

0: वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कल राजस्थान में हिन्दुस्तान की पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के अज्म और मुसलसल कोशिशों के जरिए उसने 21वीं सदी के सबसे बड़े तवानाई के बहरान पर कामयाबी से काबू पा लिया है। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान ने हर सतह पर बरवक्त फैसले किए, उभरते हुए बहरान का दुरुस्त अंदाजा लगाया, एक मौसर हिकमत अमली बनाई और मुल्की वसायल के मुतवाजन इस्तेमाल को यकीनी बनाया। वजीर आजम ने यह भी कहा कि सिफारतकारी और तजवीराती इकदामात के जरिए मुल्क ने इस बहरान से कामयाबी से निपटा।
1: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट नितिन नवीन कल पहली बार दो रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचे। कौमी सदर ने पार्टी हेडक्वार्टर में रियासती एग्जीक्यूटिव अहदेदारों और जिला सुदूर के साथ एक अहम मीटिंग की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और रियासती बीजेपी सदर और मरकजी वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी भी मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा उन्होंने वजीर आला, नायब वजीर आला, बीजेपी के अरकीन पार्लियामेंट और एमएलसी से भी मुलाकातें की। कल लखनऊ के अपने दौरे के दौरान जनाब नवीन ने हनुमान सेतु मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के दरबार में अपना सर झुकाकर मुल्क और रियासत के लोगों की खुशी, अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। लखनऊ के अपने दो रोजा दौरे के दौरान कौमी सदर जनाब नितिन नवीन ने रियासती सदर पंकज चौधरी के साथ लखनऊ में बीजेपी उत्तर प्रदेश के साबिक सुदूर की मीटिंग में भी शिरकत की और रियासती जनरल सेक्रेटरी तंजीम श्री धर्मपाल कौमी सदर आज मुख्तलिफ अवामी तकरीबात में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू काउंसिल ने अवामी अहमियत की अराजी से मुतल्लिक मुकदमात के जल्द और मेयारी निपटाने को यकीनी बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है। इस फैसले के तहत रिजर्व कैटेगरी की जमीन, सरकारी जमीन, ग्राम सभा की जमीन, नजूल अराजी, खाली होने वाली जायदाद और दुश्मन की जायदाद से मुतल्लिक तमाम मुकदमात की समाअत अब 3 रुकनी खसूसी बेंच करेगी। इस इंतजाम को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: उत्तर प्रदेश रेवेन्यू काउंसिल पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून इजलास बुलाने की हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मिस्टर रिजिजू ने कहा कि सेशन में कौमी अहमियत के मसाइल पर बामानी बहस और फैसला साजी पर तवज्जो दी जाएगी। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा इस साल भी बड़े जोश के साथ शुरू हुई। यात्रा के पहले 2 दिनों के दौरान 32,313 जायरीन ने मुकद्दस गार की जियारत की। दरियसना सालाना यात्रा के लिए यात्रियों का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान रवाना हुआ। रियासत के कई इजला में मरतूब गर्मी पड़ रही है, जिससे मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इधर लखनऊ समेत कुछ इजला में बारिश होने से शदीद गर्मी से राहत मिली है। कानपुर और टूंडला में

0: पल की मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक रियासत के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल वाटिका।

जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के बाल वाटिका कार्यक्रम में ढेर सारा मनोरंजन व ज्ञान का पिटारा लेकर हाजिर हैं आपकी अपनी दीदी अर्चना। हाँ, तो हमारे सभी बाल श्रोताओं को दीदी का ढेर सारा प्यार और शुभाशीष। साथ ही सभी बच्चों के लिए दिल से यही दुआ है कि आप सदैव स्वस्थ, निरोगी और प्रसन्नचित बने रहें और तन्मयता के साथ सुनते रहें अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल वाटिका। प्यारे बच्चों, अब आपकी समर वैकेशन समाप्त हो गई है और अब आपको जुट जाना है अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। जी हाँ, हमारा मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप लगातार पढ़ाई ही करते रहें। थोड़ा वक्त आपको बच्चों खेल कूद व अन्य गतिविधियों के लिए भी निकालना है। कहने का आशय ये है कि पढ़ाई और खेल कूद में आप संतुलन बनाकर रखें, यानी आपकी एक नियमित जीवन शैली होनी चाहिए। और बच्चों, ये तभी संभव है जब आप समय प्रबंधन का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल बच्चों, पढ़ाई व खेलकूद का आपका एक नियत समय होना चाहिए, यानी कि जब आप पढ़ाई करें तब आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर ही होना चाहिए और थोड़ा समय खेल कूद व व्यायाम है और अन्य गतिविधियों को आपको देना चाहिए, क्योंकि बच्चों मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार की जीवन शैली से बच्चों आप में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि पढ़ाई से ज्ञान, बुद्धि और भविष्य का निर्माण होता है, जबकि खेलकूद से शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और व्यक्तित्व का विकास होता है। और बच्चों, यदि आपका हर कार्य एक नियत समय पर होगा तो आप पढ़ाई खेलकूद दोनों में सफलता प्राप्त कर अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं और सब जगह प्रशंसा के पात्र बन सबकी वाही वाही भी लूट पाते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, जो समय का सदुपयोग करते हैं वे अपने सभी कार्य समय पर पूरे कर लेते हैं। वास्तव में समय प्रबंधन से पढ़ाई नियमित होती है। परीक्षा की तैयारी भी आप अच्छे से कर सकते हैं और आपको पढ़ाई का तनाव भी कम रहता है। साथ ही बच्चों, खेलकूद के लिए भी पर्याप्त समय आपको मिल सकता है, जिससे आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि लगातार पढ़ाई करने से आपका मन ऊब जाएगा, तो आप स्वस्थ प्रसन्नचित बने रहें तो खेलकूद भी आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन बच्चों, लगातार खेलकूद करने से आपकी पढ़ाई प्रभावित होती है, इसलिए दोनों के बीच संतुलन बने रहना चाहिए। प्रतिदिन एक निश्चित समय पढ़ाई के लिए और थोड़ा समय खेलकूद, व्यायाम, रचनात्मक कार्यों में भी आपको लगाना चाहिए, यानी एक स्वस्थ जीवन शैली बच्चों आपको अपनानी चाहिए। तभी आप जहां अपना उत्तम भविष्य संवार सकते हैं, वहीं देश के सुयोग्य नागरिक बन राष्ट्र हित में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी भी अदा कर पाएंगे। हाँ, तो बच्चों, बात जब स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की चली पड़ी है तो आप अपना समय रचनात्मक कार्यों व स्वस्थ मनोरंजन में भी लगा सकते हैं। जैसे यदि आपको लिखने, पढ़ने या संगीत सुनने का, ड्राइंग का शौक है तो आप अपनी इस क्रिएटिविटी को और बढ़ाएं। इस क्षेत्र में पारंगत लोगों का

0: मार्गदर्शन लें, अपने इस टैलेंट को नई दिशा प्रदान करें। हाँ तो बच्चों, बात जब स्वस्थ मनोरंजन की चली पड़ी है तो इसी बात पर हम आपको शमशेर भैया से सुनवाते हैं ये प्रेरणादायक कहानी, सच्चाई की जीत।
1: प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सच्चाई की जीत। किसी गांव में गोविंद नाम का एक डाकू रहता था। उसका काम लोगों से लूटपाट करना और कत्ल करना था। उसकी दहशत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस काम के लिए उसने अपने इलाके के अलावा दूसरे इलाके में भी अपनी पहचान बना रखी थी। वह रोज़ाना लोगों को लूटता और लूट मार के बाद उनका कत्ल कर देता था और उनके हाथ पांव भी काट कर फेंक देता था। जब लोग उसके बारे में जानना चाहते थे तो सुनकर दिल दहल जाता था और मारे खौफ के कांपने लगते थे। एक दिन की बात है कि वह डाका डालने के लिए घर से निकला। जब वह गांव से बाहर सुनसान जंगल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक मंदिर के पास चबूतरे पर बैठे महाराज जी लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, यानी उपदेश दे रहे थे। गोविंद डाकू भी महात्मा जी का उपदेश सुनने के लिए वहीं बैठ गया। महात्मा जी लोगों को बता रहे थे कि बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए लोगों को मारते हैं और डाका भी डालते हैं, सामान भी लूट लेते हैं और बाद में उनका कत्ल भी कर डालते हैं। वह इस काम को करने के लिए ज़रा भी दर्द महसूस नहीं करते और जो काम उनको करना होता है करते हैं। लेकिन ये लोगों, मेरी बात को ज़रा ध्यान लगाकर सुनो। उन सारे कामों का फल उसे ज़रूर भुगतना पड़ेगा और उनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी जो उसने किए हैं, क्योंकि बुरे काम का अंजाम बुरा होता है, चाहे उसमें राजा हो या गरीब या कोई डाकू हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि बुरे कामों से बचते रहो और हमेशा अच्छे काम करते रहो। इससे तुम्हारा जीवन सुख में बीतेगा और ऊपर वाले के दरबार में बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। इन सब बातों को सुनकर डाकू गोविंद के दिल पर बहुत असर हुआ। जब महात्मा जी की बातें पूरी हुई तो उसने अकेले में बैठकर महात्मा जी को सारे बुरे कामों के बारे में बता दिया। अब उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लज्जित हो रहा था। अब उसने तमाम बुरे कामों को अच्छे कामों में बदलने की तरकीब मालूम की जो उसने कर रखे थे। महात्मा जी ने उसको बड़े प्यार से समझाया, अगर तुम झूठ बोलना छोड़ दो तो तुम बुरे कामों की सज़ा से बच सकते हो। अब गोविंद ने झूठ नहीं बोलने की कसम खाई और उसी समय पक्का इरादा भी कर लिया कि अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। वह रात को गोविंद चोरी करने के इरादे से राजा के महल में चला। रात के 12 बज रहे थे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। वह उस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जैसे ही महल के अंदर दाखिल हुआ तो चौकीदार ने पूछा, कौन है? गोविंद ने जवाब दिया, चोर हूँ। चौकीदार ने सोचा कि महल का कोई नौकर मालूम होता है। उसने गोविंद का रास्ता छोड़कर कहा, नाराज क्यों होते हो, चले जाओ। गोविंद महल में दाखिल होते ही सीधे खजाने की तरफ बढ़ा। खजाने में पहुंचकर बिना रुकावट खजाने का ताला तोड़ा। उसने खजाने में से हीरे जवाहरात व रत्नों से भरा संदूक उठा लिया और उसे सर पर रखकर महल से बाहर आ गया। चौकीदार ने पूछा, क्या ले जा रहे हो? गोविंद ने जवाब दिया, हीरे जवाहरात से भरा संदूक ले जा रहा हूँ। चौकीदार ने सोचा, कोई आम आदमी होगा जो छोटी मोटी चीज ले जा रहा होगा, चोर कभी नहीं कहता कि मैं चोर हूँ। चौकीदार ने उसे जाने दिया। अब गोविंद संदूक लेकर अपने घर चला गया। उसे सच्चाई की बात साफ दिखाई दे रही थी। गोविंद ने अपनी जिंदगी में इतना माल दौलत और हीरे जवाहरात से इतनी आसानी से कभी भी हासिल नहीं किए थे। वैसे तो वह छोटी मोटी चोरी करता रहता था और कत्ल भी करता रहता था। सच बोलने से जीत हो सकती थी। अब सुबह होते ही यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई कि राजा के महल से हीरे जवाहरात से भरा संदूक चोरी हो गया है। महल के तमाम कर्मचारियों में खौफ छा गया। अब राजा के सिपाही चोर की तलाश में इधर उधर निकल पड़े। बहुत भाग दौड़ और बड़ी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने गोविंद चोर को हीरे जवाहरात के साथ गिरफ्तार कर लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, पहले यह बताओ, तुमने राजमहल में चोरी कैसे की? उसने राजा को सारी बातें सच सच बता दी। राजा उसकी बातों से बहुत खुश हुआ और उसकी सच्चाई से खुश होकर राजा ने उसे सदर चौकीदार बना दिया। सच बोलने की वजह से गोविंद को अब पैसा कमाने के लिए डाका डालने की ज़रूरत नहीं रही। प्यारे बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि सच्चाई के बराबर कोई दूसरा मज़हब नहीं। इसलिए हमें किसी भी परेशानी में झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही हमारे बड़े बड़े महापुरुष वे ऋषि मुनियों ने कामयाबी हासिल की है। यहाँ तक कि जैसे बड़े बड़े चोर डाकू भी इसी सच्चाई के रास्ते पर चलकर कामयाब हुए हैं। प्यारे बच्चों, हमें पढ़ाई के साथ साथ अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और अपने माता पिता वे गुरुजनों का आदर भी करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही अपने हुनर से बच्चों को फर्श से अर्श तक पहुंचाता है और गुरु ही हमेशा बच्चों को सच्चाई पर चलने की राह दिखाता है, जिससे हम बच्चे समाज में रहकर एक अच्छी पहचान बनाते हैं और अपना सर गर्व से ऊंचा करते हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। जिस प्रकार वह गोविंद डाकू अगर सच नहीं बोलता तो उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलती। हमें हर हाल में सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हर समय हर मैदान में हमेशा सच्चाई की जीत होती है, चाहे वह खेल का मैदान हो और चाहे नौकरी का मामला हो। सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं और इसी से सच्चाई की जीत भी होती है।
0: प्यारे बच्चों, शमशेर भैया से अभी ये आप ये प्रेरणादायक कहानी सच्चाई की जीत सुनने का आनंद ले रहे थे। हाँ तो प्यारे बच्चों, जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपको पुरस्कार मिलता है, मिठाई और चॉकलेट भी खाने को मिलती है। जी हाँ, हम जानते हैं कि हमारे सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को, क्या बड़ों को भी चॉकलेट बहुत पसंद होती है। हाँ तो बच्चों, बात जब चॉकलेट की चली ही पड़ी है तो बात करते हैं 7 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व चॉकलेट दिवस की। बच्चों, ये दिवस चॉकलेट के इतिहास, उसके स्वाद और लोगों के जीवन में उसकी लोकप्रियता का उत्सव मनाने के लिए मनाया जाता है। वास्तव में चॉकलेट आप बच्चों या बड़े जो भी हों, सभी की पसंदीदा मिठाइयों में से एक है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि ये चॉकलेट कोको के बीजों से तैयार की जाती है। ऐसा माना जाता है कि 7 जुलाई 1550 के आसपास चॉकलेट यूरोप में लोकप्रिय हुई, इसीलिए इस तिथि को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को चॉकलेट उपहार में देते हैं और कई वैरायटी वाली चॉकलेट खाने का आनंद लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपकी दीदी आपको एक हिदायत देती है कि चॉकलेट खाएं तो, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि जहाँ इसके फायदे हैं वहीं नुकसान भी। जैसे बच्चों, डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो सीमित मात्रा में सेवन करने पर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकते हैं। ये मन को प्रसन्न रखने, तनाव को कम करने में सहायक माने जाते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में चॉकलेट खाने से बच्चों, मोटापा, दांतों की समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, इसका सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में करना चाहिए। वास्तव में विश्व चॉकलेट दिवस केवल स्वाद का उत्सव नहीं, बल्कि खुशियां बांटने और अपनों के साथ मधुर संबंधों को मजबूत करने का अवसर भी है। हाँ तो बच्चों, आनंद लें और खुशियां बांटें। बच्चों, ज्ञानवर्धक बातचीत के इसी क्रम में सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

बच्चों, अभी आप सुन रहे थे ये जरूरी संदेश, और अब सुनते हैं एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRVP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण जानकारियों की इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं 11 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों, बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना, साथ ही जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और सतत विकास के महत्व को समझाना है। प्यारे बच्चों, जानते हैं जनसंख्या के लगातार बढ़ने से बेरोजगारी, गरीबी, प्रदूषण, पर्यावरणीय असंतुलन और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और बच्चों, यदि समय रहते इन पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में विकास की गति प्रभावित हो सकती है। हाँ तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमारी सरकार द्वारा अनेक प्रभावशाली कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे सबसे पहले शिक्षा का प्रसार, परिवार नियोजन के उपाय।

महिलाओं का सशक्तिकरण, विवाह की उचित आयु और तो और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। हाँ, तो ये दिवस ये संदेश देता है कि संतुलित जनसंख्या ही सतत विकास और बेहतर भविष्य की आधारशिला है। बच्चों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब बात करते हैं हमारे आज के महान विभूति क्रम में भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य जी की विषय में। बच्चों, इन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण इनका नाम विश्व के महान विद्वानों में लिया जाता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि है, जो कि बच्चों चार भागों में विभाजित है। कौन कौन से? लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। बच्चों, जानते हैं भास्कराचार्य ने शून्य, ऋणात्मक संख्याएं, बीजगणित, ज्यामिति, खगोल गणनाओं पर महत्वपूर्ण कार्य किया और साथ ही ग्रहों की गति, ग्रहण और समय की गणना का वैज्ञानिक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे और बाद में अनेक गणितज्ञों को प्रेरणाएं से मिली। हाँ, तो प्यारे बच्चों, भास्कराचार्य भारतीय ज्ञान परंपरा के गौरव थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा और शोध के माध्यम से गणित और भूगोल विज्ञान को नई दिशा प्रदान की। उनका जीवन हमें ज्ञानार्जन, जिज्ञासा और निरंतर परिश्रम की प्रेरणा देता है। बच्चों, ज्ञानवर्धक बातचीत का रुख मनोरंजन की ओर ले जाते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

प्यारे बच्चों, कार्यक्रम हमारा अंतिम पड़ाव की ओर है, तो चलते चलते अवगत कराते हैं कुछ रोचक अजब गजब जानकारियों से। हाँ तो बच्चों, जानते हैं तितलियां स्वाद का पता अपने पैरों से लगाती हैं, जबकि अन्य प्राणी जीभ से स्वाद का पता लगाते हैं। तोते कुछ शब्दों और आवाजों की हूबहू नकल कर बोल लेते हैं। और तो और बच्चों, डॉल्फिन एक आंख खोलकर भी सो सकती है। और जानते हैं बच्चों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहां आवाज सुनाई नहीं देती है। बच्चों, पेंगुइन जो कि पक्षी है, उड़ नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छे तैराक होते हैं। और बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कोबरा नाम का एक पेड़ भी होता है, जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये एक ऐसा विचित्र पेड़ है जिसके पास जाते ही उसकी शाखाएं पकड़ लेती हैं और तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि प्राणी प्राण ना त्याग दे। मैड्रिक नामक वृक्ष को काटने पर बच्चों रोने की आवाज आती है। और तो और बच्चों, आप क्या जानते हैं कि खीरा क्यों कड़वा होता है? खीरे का ऊपरी हिस्सा पता है? ये बात चलिए हम आपको बताते हैं कि खीरे की बेल में कुकर विटामिन नामक एक रासायनिक तत्व पाया जाता है, जो स्वाद में कसैला होता है। खीरे का ऊपरी भाग पौधों से जुड़ा होने के कारण कुकर विटामिन की जो कुछ भाग है, खीरे के डंठल के मार्फत उसमें भी प्रवेश कर जाता है। बच्चों, एक बात और, यदि खीरा लंबे समय तक ना तोड़ा जाए तो समूचा ही कड़वा हो जाता है। स्वाद को छोड़ दें तो वैसे बच्चों इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि कुकर विटामिन से कैंसर जैसे रोगों का इलाज संभव है। दूसरी बात, खीरे में 95% पानी और 5% जो है फाइबर पाया जाता है। कब्ज है, एसिडिटी है, सीने में जलन या गैस्ट्रिक की कोई भी प्रॉब्लम हो तो खीरे के लगातार सेवन से सही हो सकती है। हाँ तो बच्चों, ये थी आज की कुछ रोचक अजब गजब जानकारियाँ। इसी के साथ हमारा आज का ये बाल वाटिका कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें, पत्र भेजने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने विचार, सुझाव, प्रशंसा या कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर SMS या मैसेजेस भी कर सकते हैं। और इसके साथ बच्चों, यदि कोई स्वरचित कहानी कविता लिख भेजना चाहते हैं तो लिख भेजें इस पते पर, कार्यक्रम बालवाटिका द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 246763। हाँ तो बच्चों, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में नई उम्मीद, विश्वास और नई ऊर्जा के साथ। तो चलते चलते आप सभी को आपकी दीदी अर्चना का जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल वाटिका। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंजाबी लोकगीत। कलाकार हैं ए एस कोंग।

लोकधारा कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पंजाबी लोकगीत। कलाकार हैं ए एस कांग।

0: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी न्यूज रायपुर।
1: The Democratic Republic of the Congo has reported 1,500

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VBG रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी

0: महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल तंबानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: सिग्निफिकेंस इज इमेंस।
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक AI संवाद में AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो AI की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

0: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
1: दोनों जने मिल के सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं। जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया सेना लेने चला। सावन में
0: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेंद्र का और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुस जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और निर्देशक चेतन आनंद के काम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे किरदारों को बड़ी गहराई से तराशते थे। और जब बात किरदारों की हो तो एक नाम के बिना चेतन आनंद का जिक्र मुमकिन ही नहीं है।

नाम है प्रिया राजवंश का। प्रिया राजवंश सिर्फ चेतन आनंद की फिल्मों की नायिका नहीं थी, बल्कि वे उनकी असल जिंदगी की हमसफर और उनकी फिल्मों की लेखिका भी थी। फिल्म हकीकत से शुरू हुआ ये उनका सफर, ये साथ ही रांझा, हंसते जख्म और कुदरत जैसी फिल्मों तक जारी रहा। प्रिया राजवंश के तीखे नैन नक्श, उनकी संजीदगी को चेतन आनंद साहब ने कैमरे में जिस खूबसूरती के साथ कैद किया वो बेमिसाल है। हीर रांझा फिल्म की एक और ख़ास बात है कि पूरी फिल्म को शायरी के रूप में पेश किया गया है, और ये शायरी के रूप में पेश करना चेतन साहब का ही एक क्रांतिकारी प्रयोग था। और इस लाजवाब प्रयोग में उनका साथ दिया था दो और महान फनकारों ने, जिनका नाम है संगीतकार मदन मोहन और शायर कैफी आजमी ने। तो आइए सुनते हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत।

0: कार्यक्रम एक और अनेक आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashvaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक और अनेक और आज हम बात कर रहे हैं निर्देशक चेतन आनंद की। चेतन आनंद की टीम ने भारतीय सिनेमा को एक शानदार फिल्म दी जो आधारित है भारत और चीन युद्ध पर। यह फिल्म आई थी साल 1964 में, नाम है हकीकत। चेतन आनंद ने जिस शिद्दत और सच्चाई के साथ सरहद के हालातों को पर्दे पर उतारा, उसे मदन मोहन के संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज ने हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा के लिए अमर कर दिया। चेतन आनंद की ट्यूनिंग एक और कद्दावर गीतकार के साथ बहुत ही कमाल की रही, वो थे साहिर लुधियानवी। चेतन आनंद का धूप और छांव का वो बेमिसाल कैमरे का काम आज भी हमें एक तिलिस्म में कैद कर देता है।

श्रोताओं, जब बात चेतन आनंद की हो तो ये किस्सा तो सुनाना बनता ही है, क्योंकि ये चेतन आनंद के निर्देशन के प्रति समर्पण को बताता है। ये किस्सा है बेहतरीन फिल्म आखिरी खत का, जो सुपरस्टार राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी। चेतन अपनी फिल्म में छोटे बच्चे के असली भाव को दिखाना चाहते थे पर्दे पर। एक सीन में भूखे बच्चे को रोता हुआ दिखाना चाहते थे, जिसके लिए वे अपनी पूरी टीम के साथ पूरे दिन गलियों में बच्चों को ढूंढने के लिए घूमे थे, ताकि बच्चे का नेचुरल इमोशन कैमरे में कैद कर सकें। इसी कमाल के विजन की वजह से इस फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था। आइए सुनते हैं फिल्म आखिरी खत का ये गीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक और अनेक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। अपराह्न के 3 बजे हैं। अब हमारी प्रथम सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। संध्या 5 बजे अपनी दूसरी प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। हमारी द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सबसे पहले लीजिए सुनिए कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा वृद्धजनों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन और राष्ट्रीय वायुश्री योजना के विषय में। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत।

श्रोताओं, देश को उन्नत रखने के लिए उसका खुशहाल होना बहुत जरूरी होता है, और देश खुशहाल तभी होगा जब उसका प्रत्येक नागरिक खुशहाल होगा, उसकी आवश्यक आवश्यकताएं बिना किसी बाधा के पूरी होंगी। जीवन अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन वृद्धावस्था में ये चुनौतियां और अधिक बढ़ जाती हैं। भारत सरकार ने वृद्धजनों की जरूरतों को समग्र रूप से पूरा करने के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिनमें से सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सेज एक महत्वपूर्ण योजना है। वृद्धजनों के लाभ के लिए निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य सक्रिय, गरिमापूर्ण और उत्पादक वृद्धावस्था को बढ़ावा देने वाले समाधानों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्र में कार्यरत उद्यमियों और स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान किया जाता है। इसमें सरकार एक सुविधादाता के रूप में कार्य करती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को चयनित स्टार्टअप्स के माध्यम से विश्वसनीय और उपयुक्त उत्पाद और सेवाएं प्राप्त करने में सहायता मिलती है। स्टार्टअप्स का चयन उनकी सेवाओं की नवीनता, प्रासंगिकता और संभावित प्रभाव के आधार पर किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, आवास, देखभाल केंद्र और प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय सेवाओं, भोजन, धन प्रबंधन और कानूनी सहायता आदि शामिल हैं। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्टार्टअप मानदंडों को पूरा करने वाले वे सभी स्टार्टअप जो बुजुर्गों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन के पात्र हैं। वरिष्ठ नागरिक पोर्टल या आधिकारिक वेबसाइट scw.dosje.gov.in पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस वेबसाइट पर बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन भी नंबर भी जारी किया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर है 14567। इसी क्रम में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केंद्रीय कल्याणकारी राष्ट्रीय वयोश्री योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी उम्र संबंधी अक्षमताओं और शारीरिक दुर्बलताओं के लिए निःशुल्क सहायक चिकित्सीय उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जैसे चलने फिरने की छड़ी, कोहनी की बैसाखी, वॉकर, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, चश्मा, कृत्रिम दांत आदि। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को यह सुविधा उनके घर पर ही उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत इन उपकरणों का वितरण शिविरों के माध्यम से किया जाता है। लाभार्थियों की पहचान संबंधित राज्य सरकार या जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित मूल्यांकन शिविरों के माध्यम से की जाती है। लाभार्थी के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक आईडी प्रूफ और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। इन योजनाओं के विषय में और अधिक जानकारी के लिए इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है। श्रोताओं, ये थी कुछ जानकारी। आइए अब सुनते हैं ये गीत।

वृद्ध जनों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन और राष्ट्रीय वायुश्री योजना के विषय में आज हमने चर्चा की। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। आइए अब आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में बता दें।

अब से कुछ ही देर में शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में शब्दों के शिल्पकार बात जुबान से सेगमेंट के साथ साथ आज आप सुनेंगे बूस्टर्स और फिल्म संगीत। 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे आधुनिक कृषि में ट्राइकोडर्मा के अनुप्रयोग विषय पर सहायक विकास कृषि अधिकारी डॉक्टर विकास कुमार से आलोक कुमार की बातचीत। पूनम राणा की कहानी नेक सुनवाई जाएगी विविधा में शाम 6:45 पर।

फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे छायागीत में शाम 6:55 पर। परवेज मेहंदी की गाई गजलें सुनवाई जाएंगी 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में। शाम 7:50 पर अदबी दुनिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे इकरा शकील का कलाम।

कार्यक्रम गीत संध्या प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8 बजे। 8:30 पर आप सुनेंगे एक ही फिल्म से। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात्रि 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 10 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आइए अब आपको कल के प्रमुख प्रसारणों के विषय में बता दें। कल प्रातः 6:45 पर काव्यधारा के अंतर्गत आप सुनेंगे आदेश कुमार का काव्य पाठ। गुणों से भरपूर गोलर, इस विषय पर जानकारी दी जाएगी स्वास्थ्य चर्चा में प्रातः 7:05 पर। सूरज के साथ साथ जानकारी और मनोरंजन से भरा यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रोज की तरह प्रातः 7:31 पर।

कल प्रातः 9:25 पर धरती गाती है कार्यक्रम के अंतर्गत रुहेलखंडी लोकगीतों का आनंद आप ले सकेंगे। गायक कलाकार होंगी शशिकला राजपूत। परिवार जगत के अंतर्गत कल दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे मनु श्वेता की वार्ता वन संरक्षण दशा एवं दिशा। गोपाल बाबू गोस्वामी के गाए कुमाऊनी लोकगीत सुनवाए जाएंगे लोकधारा में 1:45 पर।

कल रात्रि 10 बजे फिल्म संगीत के अंतर्गत भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 10:30 पर श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: आपका इंतजार था।
1: अरे अरे, किसका इंतजार था? कौन आया? मुझे क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ?
0: अरे दिखेगा नहीं, फील करो, आ गया है हम सबका फेवरेट संडे।
1: ओ हाँ, ये तो है।
0: नमस्कार दोस्तों, आपका संडे में चार चांद लगाने के लिए आ गई हूं मैं, यानी कि आपकी अपनी रेडियो पार्टनर राशि त्यागी।
1: नमस्कार, हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। संडे के दिन प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी का दिल से स्वागत है आपके फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में, जिसमें आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रेडियो साथी शैली।
0: दोस्तों आज है ऐसा दिन जब अलार्म से ज्यादा अपनी मर्जी चलती है, चाय का स्वाद थोड़ा और बेहतर लगता है, अपनों के साथ बिताया हर लम्हा और भी खास बन जाता है,
1: तो चाहे आप घर पर आराम कर रहे हो,
0: या दोस्तों फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो,
1: दोस्तों के साथ आउटिंग पर हो,
0: या अपने सफर में हमारा साथ दे रहे हो,
1: अगले कुछ पलों तक हम रहेंगे आपके हम सफर।
0: जहां होगी ढेर सारी मस्ती, दिल को छू लेने वाली बातें और बेहतरीन गाने और हमारे खास सेगमेंट्स,
1: जिसमें सबसे पहले आप सुनेंगे कुछ खास है आज, फिर शब्दों के शिल्पकार और बात जुबान से।
0: तो बनाए रखिए अपना साथ, वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और संडे को बना दीजिए यादगार हर खूबसूरत सेगमेंट के साथ।
1: उससे पहले सुन लेते हैं आज की शाम का ये पहला प्यारा सा गीत।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: को इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
10: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
9: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
11: और डोज में क्या है?
10: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
11: ओ देख, परसों को दिवाली, मैं तो अपने पटाखे सुखा रही हूँ। देख कितने सारे भेजे मेरे पापा ने।
12: भाई तेरे पास तो सच में बहुत सारे पटाखे हैं।
11: हाँ देख, रॉकेट, फुलझड़ी, और तुझे पता मेरे पापा ने तो बम मार भी ला के दिए। सब कुछ है मेरे पास। तो तेरे पास क्या है?
12: मेरे पास वो है, अगर मैं लगा दूँ तो तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा।
11: है ऐसी क्या चीज है, कमी बन ले।
12: माचिस है मेरे पास, माचिस।
10: जी हाँ, मजा आ गया।
12: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट कुछ खास है आज में, जो हर बार लेकर आता है एक नया एहसास, एक नई सोच और जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया।
11: तो आज का हमारा टॉपिक है जीत की जिद। कहते हैं ना दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों जिंदगी में हार सबको मिलती है, लेकिन जो इंसान हार के बाद भी उठकर कहे मैं फिर कोशिश करूंगा, वही असली विजेता है।
12: जी हाँ, सोचिए अगर एक छोटा सा बीज ये सोच ले कि मिट्टी बहुत भारी है, अंधेरा बहुत गहरा है, तो क्या वो कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं, वो मिट्टी चीरता है और एक दिन विशाल पेड़ बनकर दुनिया को छाया देता है।
11: ठीक वैसे ही जैसे हमारी जिंदगी भी है, मुश्किलें हमें रोकेंगी नहीं बल्कि दोस्तों मजबूत बनाएंगी। जीत हमेशा ट्रॉफी बिल्कुल नहीं होती, कभी कभी खुद पर जीत हासिल करना सबसे बड़ी जीत है।
12: देखिए दोस्तों, दुनिया अक्सर उसी इंसान पर हंसती है जो बड़ा सपना देखता है, लेकिन इतिहास वही लोग लिखते हैं जो लोगों की हंसी से नहीं अपने हौसलों से पहचान बनाते हैं।
11: और अगर आज हम तैयारी हमारी चल रही है, तो कोई परीक्षा हम दे रहे हैं, नौकरी का सपना देख रहे हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जिंदगी की मुश्किल से लड़ रहे हैं, तो बस याद रखिए, हार मानना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन जीत की जिद आपको सबसे अलग बनाती है।
12: कभी कभी मंजिल देर से मिलती है, लेकिन जो सफर आपको मजबूत बना दे वो कभी बेकार नहीं जाता, क्योंकि दोस्तों गिरकर उठना जिसने सीख लिया उसने हर मुश्किल को जीत लिया। किस्मत भी सिर झुकाती है वहीं जिसने जीत की जिद को दिल से जी लिया।
11: तो दोस्तों आज का खुद से वादा करो, हालात कुछ भी हो चाहे आप कोशिश बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जीत किस्मत से नहीं लगातार मेहनत, विश्वास और जिद से मिलती है।
12: अब चलते हैं और अपने आगे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स की ओर, लेकिन उससे पहले सुनते हैं आज का ये दूसरा स्पेशल सॉन्ग।

0: गाना बंद।
1: दोस्तों, अब समय है हमारे अगले प्यारे से सेगमेंट शब्दों के शिल्पकार का, जिसमें हम बातें करते हैं अपने किसी ऐसे राइटर की जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अपनी जो है नई नई कहानियां या फिर नई नई रचनाएं हमें सुनने को मिली उनसे। तो आज भी हम सुनेंगे ये प्यारा सा सेगमेंट शब्दों के शिल्पकार। तो आइए सुनते हैं और एंजॉय करते हैं प्यारा सा सेगमेंट शब्दों के शिल्पकार।
2: शब्द जब दिल से निकलते हैं तो वो केवल पढ़े नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट सेगमेंट शब्दों के शिल्पकार में। आज की कहानी उस लेखिका की है जिसके कलम ने स्त्री के मौन को आवाज दी, पहाड़ों की मिट्टी को शब्द दिए और रिश्तों को नई संवेदना दी। आज बात होगी हिंदी साहित्य की अनुपम कथाओं की, हिंदी साहित्य की अनुपम कथाकार शिवानी गौरापंत की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शिवानी उनका असली नाम नहीं है, उनका वास्तविक नाम है गौरापंत, लेकिन शिवानी नाम से लिखी गई उनकी रचनाएं इतनी लोकप्रिय हुई कि यही नाम उनकी पहचान बन गया। जन्म राजकोट में हुआ, शिक्षा शांति निकेतन में मिली और मन

होता था उत्तराखंड के कुमाऊं में। इसलिए उनकी कहानियों में प्रकृति, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं ने एक साथ सांस ली। यही तो उनकी लेखनी का जादू था। वो कहानी नहीं लिखती थी बल्कि जीवन लिखती थी। उनकी चर्चित कृतियां कृष्णकली, 14 फेरे, भैरवी और शमशान चंपा आज भी पाठकों के दिल में जीवित है। कहा जाता है, संवेदनाएं जितनी गहरी हों, साहित्य उतना ही अमर होता है। और यही बात शिवानी जी की हर रचना में दिखाई देती है। एक और रोचक बात दोस्तों ये है कि वो कई भाषाओं की जानकार थी। शायद यही कारण था कि उनकी भाषा में अपनापन भी था, मिठास भी और साहित्य की गरिमा भी। उनकी कहानियों की नायिकाएं परिस्थितियों से हारती नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ जीना सीखती थी। यही वजह कि आज भी कई पीढ़ी उनकी रचनाओं से जुड़ाव महसूस करती हैं। उनकी बहुत सी फेमस लाइनें जो पूरी दुनिया आज भी जानती है, वो कहती हैं, रिश्तों की कीमत क्या होती है वो हर व्यक्ति नहीं जानता। मन के दर्द को शब्द देना हर लेखक के बस की बात नहीं, लेकिन शिवानी जी लिखती हैं केवल शरीर की व्यथा ही नहीं, मन की व्यथा भी। जो लाइन उनकी शमशान चंपा की थी, जीवन के संघर्षों को उन्होंने जितनी गहराई से महसूस किया, यह इन शब्दों में झलकता है, दुर्भाग्य के विष को कंठ ही में ही घोटक। दोस्तों, साहित्य की असली ताकत यही है कि वह समय बदल देती है और पुराने समय को भूलकर नए समय में प्रवेश कराती है। और शिवानी जी का साहित्य इतना सुंदर उदाहरण है, अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं पढ़ा है तो कृष्णकली से शुरुआत कीजिए। हो सकता है उस कहानी में आपको अपना ही चेहरा दिखाई देगा। तो चलिए, आज विदा लेने से पहले एक विचार। अच्छी किताबें हमें दुनिया नहीं खुद से मिलवाती हैं, और शिवानी जी की रचनाएं भी ऐसी ही आत्मीय मुलाकात है। और दोस्तों, उनकी लेखनी की सबसे बड़ी पहचान थी मजबूत महिला पात्र। शिवानी जी की कहानियां पढ़ने के बाद एहसास होता है कि साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। शायद यही कारण है कि आज भी उनकी रचनाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले समय में थी। तो चलिए दोस्तों, आज हमने शब्दों के शिल्पकार में सुना शिवानी जी को। अगली बार आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही लेखिका, लेखक के साथ, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दिखाएगा।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
2: अरे बहन, कैसे परेशान बैठी है?
3: अरे क्या करूं, तू तो जानती है एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है।
2: हाँ हाँ, समझ तो सकती हूँ, पर हुआ क्या बताएगी तभी तो समझूंगी ना कि तुझे कौन सा औरत वाला दर्द है।
3: अरे वही काम वाला, और क्या, काम करो तो सांस फूल जाती है, अगर बैठ जाओ तो सांस फूल जाती है।
2: हाँ, और कुछ ना करो तो हम खुद फूल जाते हैं।
0: जी हाँ, मजा आ गया।
4: तो दोस्तों, अब लेकर चलते हैं आपको हमारे अगले सेगमेंट बाद सुबह से की ओर, जिसमें दोस्तों आप सुनते हैं एक शब्द को। तो चलिए लेकर चलते हैं सेगमेंट की ओर।
5: अल्फाज सिर्फ आवाज नहीं होते, वो तहजीब भी होते हैं, एहसास भी, और कभी कभी पूरी जिंदगी का फलसफा भी। इन्हीं खूबसूरत अल्फाज की दुनिया में आपका इस्तकबाल है हमारे खास सेगमेंट बात जुबां से में, जहां हम एक ऐसे लफ्ज से रूबरू होते हैं जो सिर्फ बोला नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। और आज बात जुबां से में जिस लफ्ज का जिक्र होगा वो है फजूल। जरा सोचिए, हम कितनी आसानी से कह देते हैं फजूल बातें मत करो, फजूल खर्च मत करो, फजूल की फिक्र छोड़ दो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस लफ्ज के पीछे सदियों की जुबान, तहजीब और एक गहरी सोच छिपी हुई है। आज की इस महफिल में जानेंगे इस लफ्ज का सही उच्चारण, इसकी पैदाइश, इसके मायने, उर्दू अदब में इसकी अहमियत, कुछ दिल को छू लेने वाले अशआर और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। तो आइए शुरू करते हैं सेगमेंट बात जुबां से, जहां हर लफ्ज अपनी कहानी खुद बयां करता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सही उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन की। इसका सही प्रोनंसिएशन है फजूल। बहुत से लोग इसे फजूल या फिजूल बोल देते हैं, लेकिन उर्दू में इसका सही और नफीस उच्चारण फजूल है। यह फ और ज दोनों की अपनी अलग नजाकत है। अब जानते हैं कि इसकी पैदाइश कैसे हुई। फजूल लफ्ज अरबी भाषा से आया है। ये अरबी के मूल शब्द फजल से निकला है, जिसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, अतिरिक्त या फालतू। समय के साथ उर्दू में इसका अर्थ विकसित होकर बेकार, बेमानी, अनावश्यक या फिर बिना मकसद या फिर व्यर्थ का हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर फजूल चीज सचमुच फजूल नहीं होती। किसी के लिए पुरानी तस्वीरें फजूल हो सकती हैं, मगर किसी और के लिए वही यादों का खजाना होती हैं। किसी के लिए देर रात की लंबी बातें फजूल होती हैं, मगर किसी और के लिए वही सुकून का जरिया बन जाती हैं। यानी हर फजूल चीज का फैसला वक्त और नजरिए से होता है। उर्दू अदब और शायरी में फजूल सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक एहसास है। ये उन बातों, रिश्तों, उम्मीदों और ख्वाहिशों का जिक्र करता है जो बिना नतीजे के रह जाएं। मिर्जा गालिब, जॉन एलिया, अहमद फराज और बशीर बद्र जैसे महान शायरों ने अपनी शायरी में बेकार उम्मीदों, बेमानी बातों, लाहासिल मोहब्बतों को बेहद खूबसूरती से बयान किया है। भले ही हर शेर में फजूल शब्द ना आया हो, लेकिन उसकी रूह जरूर महसूस होती है। अब सुनिए फजूल शब्द पर कुछ अशआर। फजूल समझकर जिन्हें ठुकरा दिया था कभी, वक्त ने बताया वही सबसे कीमती थे। फजूल बातों में भी मुस्कुराहट मिल जाए अगर, समझ लेना जिंदगी अभी थकी नहीं है। हर बात का हिसाब रखना भी क्या जरूरी है, कुछ फजूल लम्हे ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बात को फजूल कहें तो एक पल ठहरिएगा, हो सकता है जो आज आपको फजूल लग रहा हो वही कल आपकी सबसे प्यारी याद बन जाए। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। मुस्कुराइए, अल्फाजों से दोस्ती कीजिए, क्योंकि हर लफ्ज अपने अंदर एक पूरी दुनिया समेटे हुए होता है। फिर मुलाकात होगी बात जुबान से सेगमेंट में एक और खूबसूरत लफ्ज और उसकी दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

0: राशि, तुम्हें क्या लगता है आज का जो हमारा प्रोग्राम जा रहा है वो हमारे दोस्तों को कैसा लग रहा होगा?
1: बहुत अच्छा लग रहा होगा शैली, क्योंकि आज हमारे दोस्तों ने इतने सारे सेगमेंट्स एंजॉय किए। हमारे दोस्तों ने आज सुना शब्दों के शिल्पकार, बात जुबान से और मज़ेदार बूस्टर्स, और साथ साथ हमने आज अपने दोस्तों को पार्टी सॉन्ग्स भी सुनाए। तो मुझे तो शैली पता है क्या लगता है कि हमारे दोस्तों ने प्रोग्राम सुनने के साथ साथ डांस भी किया होगा।
0: हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ना चाहते हुए भी हमारे दोस्तों का डांस आज निकल ही गया होगा, क्योंकि आज के जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग चल रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है?
1: बहुत अमेजिंग अमेजिंग है, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं वो सुनना भी पसंद करते हैं, डांस करना भी पसंद करते हैं। और दोस्तों, आज सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि आज है संडे, आज हमने इतने सारे सेगमेंट आपको सुनाए, सॉन्ग सुनाए, तो पक्का बात है कि आपने एंजॉय किए ही होंगे।
0: हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो राशि तुम, कि ऑफ कोर्स दोस्तों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि संडे इज अ फन डे। तो फन डे होता है तो ऑफ कोर्स ये रेडियो सुनना तो बनता ही है भाई, कि रेडियो तो सुनेंगे ही सभी लोग, क्योंकि फ्री होते हैं संडे के दिन, तो कुछ काम नहीं होता। बच्चे भी फ्री और जो जॉब पे जाते हैं वो लोग भी, सभी लोग फ्री। तो बच्चों ने भी मुझे लगता है आज तो एंजॉय किया होगा, क्योंकि उन्हें भी इस तरीके के गाने तो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं।
1: और दोस्तों, आपने हमारा शब्द सुना फिजूल, तो आपका समय बिल्कुल फिजूल नहीं गया है, आपने बहुत इंजॉय किया है, बहुत कुछ सीखा है।
0: राशि, फिजूल नहीं फुजूल।
1: बिल्कुल दोस्तों, आपने सबसे जरूरी बात ये सुना होगा कि सही प्रोनंसिएशन इसका है क्या, क्योंकि दोस्तों हम बहुत सारे शब्द डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं और हम उन शब्दों को गलत बोलते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा राशि, जैसे अभी फ्लो फ्लो में तुम्हारे मुंह से निकल गया था फिजूल, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनंसिएशन होता है फुजूल।
1: नहीं, मेरे मुंह से गलत नहीं निकला था शैली, मैं चाहती थी कि हमारे दोस्त महसूस करें कि क्या गलत है और क्या सही है।
0: ये तो तुमने बिल्कुल बढ़िया किया कि एक टाइम पे कंपैरिजन हो गया कि कौन सा वर्ड गलत है और कौन सा सही। वैसे राशि, मैंने ज्यादातर नोटिस किया है कि जो सभी लोग हैं वैसे फिजूल वर्ड को ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन बोलते फिजूल ही है, ना कि फुजूल। मैंने तो बहुत ही कम सुना है, तुमने सुना है किसी से?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं सुना, क्योंकि हमारा जो स्टेशन है, बहुत सारे स्टेशंस हैं, सब यही सिखाते हैं कि सही प्रोनंसिएशन बहुत सारे शब्दों का है क्या, क्योंकि बहुत से शब्द हम इस्तेमाल करते हैं डेली में और हम गलत बोलते हैं उन्हें।
0: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और उर्दू के काफी सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि अपने आप में बहुत नफीस हैं और उनके अंदर बहुत बड़ी नज़ाकत है, लेकिन उनका जो प्रोनंसिएशन है ज्यादातर लोग गलत लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि उर्दू के

0: अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू रखता है हिंदी लिटरेचर में और उर्दू लिटरेचर में भी। इसीलिए तो उनके शब्द गलत हो जाते हैं। तो हमारे दोस्त सही शब्द इस्तेमाल करें, बोले, तो हमें उम्मीद है हमारे दोस्त आने वाले समय में सारे शब्दों का इस्तेमाल सही करेंगे, और स्पेशली हमारे आज के स्पेशल शब्द का।
1: हाँ दोस्तों, आप फिजूल मत बोलिएगा, फजूल ही बोलिएगा हमेशा, और आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया हो ही जाएगा आपका वर्ड। तो हमें उम्मीद है कि आप फिजूल ना बोल के फजूल बोलेंगे।
0: तो चलिए, अब शैली बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब आपको जोड़ देते हैं मजेदार सॉन्ग के साथ।

0: दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763। और दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
1: दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है जिसका नाम है आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आकाशवाणी नजीबाबाद। आप लोग हमारे पुराने प्ले कहानियां हमारे प्रोग्राम्स यूट्यूब पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट जरूर कीजिए और अपनी साथी शैली
0: और दोस्तों राशि को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो

0: सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से दो दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मानसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.46 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। किसान भाई सुने अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई सब राज्य खुशी। देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। भैया देखो हमारे किसान भाई अपने खेतों में रात दिन मेहनत कर रहे हैं और भाई मेहनत भी हमारे किसान भाई जी तोड़ कर मेहनत करते हैं तो भाई फसल भी हमारे किसान भाइयों की अच्छी होती है। भाई देखो खरीफ का मौसम चल रहा है और खरीफ में हमारे किसान भाई इस समय देखो खाद्यान्न में चावल की फसल लगाते हैं और भाई चावल की फसल में हमारे किसान भाई यानी कि धान की फसल लगाते हैं, चाहे बासमती हो या सरबती हो या भैया कोई मोटी मुंजी हो या भैया IR24 जैसे कह दें हैं भैया, या खा रोटी बनाने वाली मुंजी हो जैसे धान बोल दें हम लाल वाले भाई वो हो। तो भाई हमारे किसान भाई देखो धान की फसल लगाते हैं और धान की रोपाई भैया हमारे किसान भाई कर रहे हैं और जो किसान भाई हमारे भैया कर चुके तो भैया वो जो है अपने खेतों में खरपतवार ना हो तो इसके लिए भैया आप जो है ब्यूटाक्लोर एक भैया खरपतवार नाशी आता है उसे भैया खेत में पानी भर कर और उसे भैया छिड़क दें ताकि भैया हमारे खेत में खरपतवार उगे ना, क्योंकि वो ब्यूटाक्लोर जो होता है वो भैया हमारे खेत में एक तरह की लेयर बना लेता है जिससे भैया खरपतवार नहीं उगते हैं। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई भैया धान की रोपाई कर रहे हैं तो भाई वो जो है सावधानी पूर्वक धान की रोपाई करें, साथ ही साथ भैया खेतों में अच्छी तरह से

दल कटुआ में जैसे हम हल से और भैया गहन लगाए कर रहे हैं, जिससे भैया पानी लंबे समय तक खेत में बना रहे। भाई दूसरी बात आती है कि भाई धान की फसल जब हमारे किसान भाई लगवाते हैं, चाहे भैया मैनुअल लगवाओ या भैया कृषि यंत्र जैसे कि ट्रैक्टर चालित एक मशीन आती है भैया, चाहे उससे लगवाओ, पेडी वीडर भैया पेडी रोपाई करने वाला होता है भाई वो होता है, तो भाई उससे यदि आप लगा रहे हैं तो भाई ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि भैया स्पेस जो है पौधे से पौधे का ज़्यादा ना हो भाई, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भाई जगह जगह पौधे हमारे जरूर लगने चाहिए। यदि कुछ पौधे उखड़ जाएं तो भैया उनके स्थान पर आप पौधे लगा दें, इस तरह से आप खेत की निगरानी बनाए रखें। साथ ही भाई हमारे किसान भाई हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भैया नकदी फसलों में मुख्य रूप से गन्ने की फसल लगाते हैं, और भाई गन्ने की फसल हमारे खेतों में खड़ी भी है, तो भाई गन्ने में इस समय समसामयिक कार्य हमारे किसान भाई क्या क्या कर सके हैं, थोड़ी सी इस बात की भी बात चर्चा करो लें, क्योंकि भाई देखो गन्ना हमारी मुख्य फसल है और भाई हमारे किसान भाइयों की आमदनी का भैया जरिया भी है। तो भाई देखो गन्ना जो है भाई हम अच्छा उत्पादन मिले हमारे किसान भाइयों को, और भाई हम जो है अच्छे उत्पादन के लिए ही भरसक प्रयास करते हैं, तो भाई देखो जैसा अब बरसात का मौसम चल रहा, तो भाई चाहे कहीं को बारिश हुई है या कहीं को नहीं हुई है, भाई जहां नहीं हुई है वहां बारिश भैया एक दो दिन में हो जाएगी, और भाई जहां हो गई तो भाई हमारे किसान भाइयों ने यदि उनके भैया उर्वरक जैसे कि हमारी यूरिया की अंतिम डोज लगाने से रह गई हो, तो भाई वो जो है अंतिम डोज अपने यूरिया की अपने खेतों में पूर्ति कर दें। साथ ही साथ कुछ भाइयों ने हमारे जो है जो भैया जागरूक किसान हैं भैया उन्होंने मिट्टी अपने खेतों में चढ़ा दी होगी, दूसरे भाई जिन भाइयों ने यदि मिट्टी नहीं चढ़ाई है और वहां बारिश भी हो गई अच्छी नमी है, तो भैया वो भी समय देख कर अपने खेतों में अपनी फसलों में भैया गन्ने की भैया मिट्टी चढ़ा दें। दूसरी बात भाई जब उमस भरी गर्मी होती है यानी कि कभी बारिश हो गई कभी गर्मी हो गई तेज, तो भाई ये वो समय चल रहा है इस समय, तो भाई हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि हमने जो है 3-4 वैरायटी तो लगाई रखी, ज्यादा तो लगा नहीं रखी भाई, हमारे कुछ किसान भाइयों ने CO 118 वैरायटी लगा रखी, कुछ ने भैया CO 98 014 लगा रखी है जहाँ जलभराव वाले क्षेत्र हैं, भाई CO LK 16202 लगा रखा। साथ ही साथ भैया आपने जो है भैया कुछ किसान भाइयों ने जिनका भैया नहीं सूखा रेड रोड के कारण, तो उन्होंने कुछ ने भैया 238 भी लगा रखा, तो भैया जिन भाइयों ने जो भी वैरायटी अपने खेतों में लगा रखी है चाहे 16202 हो 118 हो या भैया 238 हो या भैया 98014 हो या भाई अन्य वैरायटी जो भी हमारे किसान भाइयों ने लगा रखी हैं, भाई उन वैरायटियों में इस समय एक कीट का भैया प्रकोप हो जाता है जिसे हम मिलीबग बोलते हैं भाई, उससे जो है गन्ना बड़ा होने की बजाय छोटा होता चला जा, नीचे को बैठता चला जा। हमारे किसान भाई कह दिए हैं कि भाई उर्वरक भी पूरे लगा दिए सिंचाई भी पूरी कर दी, लेकिन भाई गन्ना हमारा ऊपर को उठने को तैयार नहीं है, भाई गन्ना नीचे को बैठता चला जा रहा, तो भाई वो मिलीबग होता है वो कीट होता है उसमें भैया कभी कभी हम देखते हैं कि कीड़ी सी हो जाती है और भाई वो पत्तियों के निचले हिस्से में अंदर रहता है, तो भाई उस कीट की रोकथाम के लिए आप अपने फसलों पर अपने गन्ने की फसल में भैया थायोलैम्डा एक दवाई आती है उसका स्प्रे कर दें। भाई सावधानी ये बरतनी है कि उसके साथ एक भैया एंटी इचिंग पाउडर मिलता है, उसको आप तेल में लगाकर अपने शरीर पर आवश्यक रूप से लगावें, क्योंकि भाई थोड़ी बहुत खुजली होने की आशंका उस दवाई से रहती है, लेकिन भाई खतरे की कोई बात नहीं है, आप अपनी फसलों को बचाने के लिए थायोलैम्डा अपनी फसल पर लगा सकते हैं और भाई अपनी फसल को मिलीबग कीट से बचा सकते हैं। साथ ही भाई उस कीट की जो है भैया जो प्रकोप होता है हमारी फसल पर भाई भैया वो कुछ ही जगह में होता है, जैसे भैया 5 बीघा का खेत है तो हमारी भैया कहीं पेड़ अगर खड़े हैं तो पेड़ों के नीचे भैया लगभग 1-2 बीघे जमीन में हो जाएगा या भैया अंदर को कहीं को थोड़ी सी जगह में हो जाएगा, तो इस तरह से भैया उस हमें 2-4 मीटर अंदर तक स्प्रे करना है, ना कि पूरे खेत में करने की आवश्यकता नहीं है, तो इस तरह से आप अपनी गन्ने की फसल को बचा सकें। दूसरी बात आती है भैया कि आप जो है यदि वर्षा नहीं हो रही हो तो भाई अपने खेतों में भैया पर्याप्त नमी बनाकर रखें, सिंचाई समय को देखते हुए कर दें। तीसरी भाई कीट रोगों की तो बात हो ही गई, क्योंकि भैया इस टाइम तना छेदक पायरिल्ला और अन्य भैया मिलीबग भी हमारी फसल में लग जाते हैं। दूसरे भाई देखो जिन भाइयों की फसल अच्छी है भाई तो वो जो है अपनी फसल को बंधवाने की तैयारी करें, क्योंकि भाई इस समय जिन भाइयों ने भैया गन्ने की फसल अच्छी कर ली, समय से गन्ने की बुआई करी थी या पेड़ी गन्ने की फसल अच्छी है, तो भैया वो नीचे की पत्ती उतार के उसकी और भैया ऊपर से हल्की सी एक बंधाई कर दें, भाई बंधाई थोड़ी नीचे करनी है, गन्ना जहां हो

0: पर ज्यादा हमें गोले की बधाई नहीं करनी है, इस बात की हमें सावधानी बरतनी है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। साथ ही भाई इस समय जो है हमारे खेतों में खरपतवार उगाते हैं, तो भाई आप खरपतवारों का भैया नियंत्रण करते रहें समय से। भाई देखो इस समय बेल हमें देखने को मिलती है अपने खेत में, यदि हम बढ़ेंगे तो भैया हमें जो है बेल काफी दिखाई देगी, भैया सूखा घास हो जाती है, अन्य खरपतवार हमारे खेत में उगाते हैं, क्योंकि भाई हमारे किसान भाई खाद देते हैं, सिंचाई करते रहते हैं इस समय। तो भैया देखो खरपतवार नाशी का आप प्रयोग कर सकते हैं भाई, समय देखते हुए और भैया मौसम को देखते हुए आप जो है खरपतवार नाशी का नियंत्रण करने के लिए भैया प्रयोग करें अपने खेतों में। साथ ही सावधानी बरतें अपने मुंह पर भैया मास्क पहनने और भैया पूरे पांव के कपड़े पहनने, साथ ही साथ अपने शरीर को ढक कर रखें। भाई हमारे कुछ किसान भाई क्या काम करें कि भैया खरपतवार नाशी का स्प्रे तो कर ही रहे हैं, साथ ही भैया खड़े होकर पानी पीने लगे हैं, तो भाई हम जो है सावधानी बरतनी है, अच्छी तरह से हाथ धोकर हम पानी पीना है, न कि भैया क्योंकि हम देखते हैं ना कि भैया कभी कभी हमारे किसान भाई बोतल बोतल से पानी पीवा, जो पानी वाली ये ठंडे की बोतल आवा है उसे भैया भर के ले जा जंगल को और उससे पीवा, तो भाई जो हाथ से हम दवाई कर रहे हैं उस हाथ की कभी कभी बूंद जो है हम जो ऊपर करते हैं उस बोतल को, तो मुंह पर हमारे गिर जाती है या मुंह के अंदर चली जाती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, आप हाथों की साफ सफाई रखें। तीसरे भाई हम बात करेंगे कि भैया जो सूखी पत्ती है वो तो निकाल ही दी होगी आपने, और भाई इस समय एक काम और थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को करना होता है अपनी फसल में गन्ने की, कि भाई देखभाल का कि हमारे खेत में कहीं चूहे तो नहीं लग रहे, क्योंकि भाई चूहों के द्वारा भी हमारी फसल का काफी नुकसान होता है। तो चूहों की भैया नियंत्रण करने के लिए आप भैया जिंक फास्फाइड दवाई आती है एक, उसका भैया आप प्रयोग कर सकते हैं और भैया अपनी फसल को गन्ने की बचा सकते हैं, और इस समय छोटे छोटे काम करके भैया आप गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो भाई अब देखो कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: संदेश के बाद एक बार फिर हमारे सभी किसान बहन भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम में। और भाई देखो हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, देखो हम खेती किसानी की बात तो कर ही रहे हैं भाई, जंगल को आप जब भी जाओ बरसात का मौसम है तो एक हाथ में आपके छोटा मोटी लकड़ी या डंडा होना चाहिए, साथ ही एक कपड़ा होना चाहिए सिर पर रखने के लिए, क्योंकि भैया हमारे खेतों के आसपास या सड़कों के आसपास घास फूस हो जाती है भैया, उसमें कोई भी खतरनाक जीव हमारे लिए छिपा बैठा हो हमें कुछ पता नहीं रहता, तो डंडा यदि हमारे हाथ में होगा तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। साथ ही भाई हम खेती किसानी से भैया अच्छा लाभ हो उसके साथ हम जो है सह व्यवसाय करने पड़ेंगे। देखो बरसात का मौसम चल लिया, हमारे कुछ किसान भाई कुछ नौजवान साथी जो है भैया मछली पालन करते हैं, और भैया मछलियों से भी भैया मछलियों के तालाब की देखभाल करके समय से, और भैया मछली पालन हमारे किसान भाई करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो भाई आज हम ऐसी बात करेंगे जिसमें भैया हमारे किसान भाई हमारे नौजवान साथी जो है उससे लाभ ले सकें। भाई लाभ लेने के लिए एक योजना चल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। भाई उसके संबंध में आज हम किसान भाई से बात करेंगे कि भाई ये योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके क्या क्या लाभ हैं। तो भाई देखो जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो चल रही है वो भैया भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य है मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन और भैया मछली मत्स्य क्षेत्र का आधुनिक विकास करना, उत्पादन बढ़ाना तथा मछुआरों और मत्स्य पालकों की आय बढ़ाना। जो भी हमारे नौजवान साथी भैया रोजगार की दृष्टि से देखते हैं तो भाई वो मत्स्य पालन कर सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। भाई कम लागत का अच्छा व्यवसाय है और अच्छा आमदनी हमारे किसान भाइयों को हमारे नौजवान साथियों को इससे मिल जाती है। भाई इस योजना के अंतर्गत मछली पालक तालाब का निर्माण, हैचरी और केज कल्चर के लिए सरकार द्वारा सहायता दी जाती है, जिसका लाभ हमारे किसान भाई हमारे नौजवान साथी उठा सकते हैं। साथ ही भाई इसके लाभ की यदि हम बात करें तो तो भाई इसकी छूट की भैया वर्ग सीमा है, यानी के सामान्य वर्ग के लिए।

0: कुछ छूट है, और SC ST के लिए, महिलाओं के लिए छूट के लिए भैया निर्धारण किया गया है कि भाई किस तरह से कितनी छूट हमें देनी है। तो इस तरह से आप उस सारी जानकारी लेकर भैया इस योजना का लाभ उठावें। साथ ही भाई देखो, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं या भैया नौजवान साथी हैं या किसान भाई हैं जो इस काम को करना चाहते हैं, उनके लिए भैया 40% की छूट है, और जो भैया महिलाएं हैं SC ST वाले हैं भैया उनके लिए जो है 60% की छूट इस योजना के अंतर्गत रखी गई है। आप इसकी जानकारी भैया अपने जिले स्तर पर ले सकते हैं। और भाई देखो, कोई भी कार्य यदि हमें करना है तो बिना जानकारी के हमें कभी नहीं करना चाहिए। जिला स्तर पर हो या आपके ब्लॉक स्तर पर हो, जो भी आपका भैया केंद्र बना हुआ है उससे आप जानकारी लें, और भैया तभी आप व्यवसाय की ओर बढ़ें। तो भाई देखो, ये तो कुछ जानकारी होगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में। भाई देखो, हम बातचीत तो करते रहते हैं व्यवसाय की, साथ ही साथ खेती किसानी की। तो भाई खेती किसानी से हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ हो, क्योंकि भाई आज हम देख रहे हैं कि खेती किसानी में हमारे किसान भाइयों को इतना लाभ नहीं हो रहा जितनी उनकी लागत लग रही। भाई लागत कैसे लग रही कि भाई हमारी फसल में, हमारे खेतों में भैया काफी फफूंदी जनित रोग लग जाते हैं, जिससे भैया हमारी फसल बिल्कुल शून्य हो जाती है या बहुत कम उत्पादन हमारे किसान भाइयों का हो जाता है। उसमें भैया जैसे अभी हमारे किसान भाइयों ने गन्ने की फसल सीओ जोरो 238 बो रखी थी, तो भाई 238 प्रजाति में अभी रेड रोट आया, जिसो कि भैया फफूंदी जनित रोग है, और जिससे भैया हमारे किसान भाइयों की भैया सैकड़ों बीघा फसल खत्म हो गई, और हमारे किसान भाइयों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। तो भाई ये फफूंदी जनित रोग है, और भाई ये फफूंदी किस तरह से हमारे खेतों से खत्म हो सके और हमारे किसान भाई अच्छा लाभ ले सके हैं, भाई एक ऐसी जानकारी हम आपके लिए लिख कर आए हैं। भाई जानकारी का विषय है आधुनिक कृषि में ट्राइकोडर्मा के अनुप्रयोग। भाई जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विकास कुमार, जो कि सहायक विकास अधिकारी कृषि हैं विकास खंड धामपुर में, और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया आलोक कुमार। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम के बीच में हैं डॉक्टर विकास कुमार, जो कि सहायक विकास अधिकारी हैं कृषि विकास खंड धामपुर में, और आज आपसे बातचीत का हमारा विषय है आधुनिक कृषि में ट्राइकोडर्मा के अनुप्रयोग। तो डॉक्टर विकास कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि बात ट्राइकोडर्मा की चल रही है, तो ये ट्राइकोडर्मा का इतिहास क्या है और इसका विकास कैसे हुआ, इस बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का।
2: जी आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्राइकोडर्मा एक जैव फफूंदनाशी है
1: जी।
2: और उसका जो विकास है उससे जो जुड़ी हुई बात है वो मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्राइकोडर्मा एक बायोफंजिसाइड होने के साथ साथ
1: हाँ
2: इसका जो विकास शुरू हुआ
1: जी।
2: वो 18वीं सदी में शुरू हुआ। परसुन नाम के एक वैज्ञानिक ने इसका वर्णन किया
1: अच्छा।
2: ट्राइकोडर्मा का।
1: तो देखिए, तो इसके विकास की और इतिहास की बात आई, अब बात ये आती है कि हमारे किसान भाइयों को इससे क्या फायदा है, यानी कि करता क्या है, ये थोड़ा सा बताने का कष्ट करें।
2: ट्राइकोडर्मा का जो एक जैव फफूंदनाशी के रूप में इसका जो हम प्रयोग करते हैं,
1: जी
2: तो ये बेसिकली मूलतः बीज का शोधन करता है एक, तो
1: अच्छा
2: दूसरे पौधों की जो मिट्टी है यानी कि पौधशाला
1: हाँ
2: जिसको हम सीडलिंग कहते हैं,
1: हाँ
2: उसको कहीं ना कहीं ये डिप करके इसमें हम प्रयोग करते हैं, और
1: हाँ
2: इससे उनकी जड़ों का विकास भी अच्छा होता है और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है और
1: जी
2: वो अपनी बीमारियों से लड़ पाते हैं।
1: बिल्कुल। तो देखिए, बहुत
2: जी
1: अच्छी बात आपने की, और जैसे इस समय जो है धान की फसल की रोपाई का समय है, तो हमारे किसान भाई जो हैं उसमें जो जब वो पौधशाला को में से पौध उखाड़ेंगे और रोपित करने के लिए पौध को तैयार करेंगे, तो वहाँ पर हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं
2: बिल्कुल कर सकते हैं।
1: जी। तो अब आप बता रहे थे कि इसके इससे और क्या क्या फायदे हो सकते हैं।
2: इससे जो और फायदे हो सकते हैं, ट्राइकोडर्मा एक जैव फफूंदनाशी होने के साथ साथ ये पौधों की जड़ों को ट्राइकोडर्मा में घोलकर डुबोकर पौधों को लगाते हैं,
1: अच्छा
2: और दूसरे पौधारोपण के समय खेत में पर्याप्त मात्रा में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कार्बनिक खादों जैसे कंपोस्ट की खाद है, खली है के साथ मिलाकर भी प्रयोग करते हैं।
1: अच्छा। तो दूसरी बात ये आती है, देखिए बहुत सारी बातें आपने बताई हैं और बहुत सारे इनके जो उपयोग हैं वो बता दिए। अब बात ये आती है कि ये एक ही प्रजाति का होता है या इसकी कई प्रजातियां हैं।
2: भारतवर्ष में ट्राइकोडर्मा की 5 प्रजाति पाई जाती हैं,
1: अच्छा, यानी कि कई प्रजातियों
2: कई
1: का है।
2: प्रजाति इसकी अलग अलग

0: प्रजातियां हैं,
1: तो कौन कौन सी हैं?
0: और प्रमुख प्रजातियों के रूप में पहली जो प्रजाति है वो ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, ट्राइकोडर्मा एस्पिरिलियम, ट्राइकोडर्मा कोइंगी,
1: अच्छा,
0: और ट्राइकोडर्मा पॉली स्पोरम, ये प्रजाति पाई जाती है।
1: अच्छा,
0: लेकिन जो सबसे मुख्य प्रजाति है ना, आमतौर पे जो प्रचलित प्रजाति है, अगर मैं बात करूं भारत में और भारत से भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में,
1: अच्छा,
0: तो जो प्रजाति है वो ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जियनम है। ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रजाति इसकी, ट्राइकोडर्मा की, उसका प्रयोग हम सीड ट्रीटमेंट में करते हैं,
1: अच्छा,
0: और विल्ट के रोग को रोकथाम के लिए, जड़ गलन को, हाँ, रूट रोट कहते हैं,
1: हाँ,
0: और स्टेम रोट को, इन बीमारियों को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है,
1: बिल्कुल,
0: इस प्रजाति का,
1: अच्छा
0: ट्राइकोडर्मा विरिडी का।
1: अच्छा
0: और ट्राइकोडर्मा हर्जियनम जो है वो हमारे कृषि विभाग में हम किसानों को उसको उपलब्ध कराते हैं,
1: अच्छा
0: और ये हमारी लैब है एक मुरादाबाद में, आईपीएम लैब,
1: अच्छा
0: तो वहां ये बनती है और एनबीआरआई से इसका स्ट्रेन मंगाया जाता है।
1: अच्छा
0: हाँ, ये जो प्रजाति है वो कृषि विभाग में ट्राइकोडर्मा हर्जियनम 75% सब्सिडी पर किसानों को हम वितरित करवाते हैं,
1: अच्छा
0: और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये भी जड़ों के में बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है जब
1: अच्छा
0: इसका हम प्रयोग करते हैं, और मिट्टी को स्वस्थ और बेहतर बनाता है।
1: अच्छा
0: विशेष रूप से मैं अपने किसान भाइयों को ये बताऊंगा कि ये धान, गेहूं, गन्ना, आलू, इसमें प्रयोग की जाती है ये वाली जो ट्राइकोडर्मा हर्जियनम है,
1: अच्छा
0: बहुत ही कॉमन प्रजाति है ये, और इसके परिणाम भी किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं
1: अच्छा
0: हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष में।
1: ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये है, हमारे किसान भाइयों को एक उत्सुकता होगी कि ये ट्राइकोडर्मा है, ये मिलता किस फॉर्म में है, पाउडर है या किस फॉर्म में मिलता है?
0: ट्राइकोडर्मा पाउडर फॉर्म में एक पैकेट में आता है,
1: हाँ
0: एक एक किलो के पैकेट हमारे कृषि विभाग द्वारा, राज्य के कृषि निवेश भंडार है,
1: हाँ
0: जैसे बिजनौर की मैं बात करूं तो यहाँ 11 विकास खंडों में राज्य के कृषि निवेश भंडार पर ये उपलब्ध होता है खरीफ
1: हाँ
0: और रबी में,
1: अच्छा
0: और इसका जहां तक किसानों को वितरण करने का बात आती है तो उसमें ये 1 किलो का पैकेट 1 एकड़ के लिए और 100 रुपए का पैकेट जो आता है पाउडर फॉर्म में, वो 75% सब्सिडी पर, छूट पर उपलब्ध है, और मात्र 25 रुपए का 1 किलो का ट्राइकोडर्मा किसानों को वितरित कराया जाता है
1: अच्छा
0: छूट के बाद।
1: अच्छा बात ये आती है, देखिए अब हमारे किसान भाई धान की फसल लगाने वाले हैं और वो अपनी पौध का जो शोधन करेंगे तो किस तरह के करेंगे, ट्राइकोडर्मा से क्या तरीका हो सकता है उसको?
0: ट्राइकोडर्मा से धान की पौध के शोधन का जहाँ तक प्रश्न आता है,
1: हाँ
0: तो उसमें ये जो ट्राइकोडर्मा है हमारा पाउडर फॉर्म में, ये 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा
1: हाँ
0: 1 लीटर पानी में, ठीक
1: अच्छा
0: है, मिलाकर उसकी जड़ में डिप करके और
1: अच्छा
0: फिर उसको खेत में रोपाई करनी चाहिए।
1: अच्छा
0: ये
1: अच्छा
0: बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही प्रभावित
1: अच्छा अच्छा
0: है ये
1: अच्छा
0: धान के लिए।
1: ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरह से हमारे किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब लौट कर हम आते हैं, ट्राइकोडर्मा उत्पादन की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं जिससे हमारे किसान भाई जो है इसे जान सकें और इससे लाभ उठा सकें?
0: जहाँ तक ट्राइकोडर्मा के उत्पादन की विधियों की बात आती है, तो
1: हाँ
0: इसका प्रयोग गोबर की देसी खाद का प्रयोग करते हैं इसमें, और
1: अच्छा
0: लगभग 25 से 30 किलोग्राम गोबर की खाद को छायादान स्थान पर बारीक कर लेते हैं,
1: अच्छा
0: उसके बाद फिर हल्का पानी का छींटा मार देते हैं उस पर,
1: ठीक
0: ठीक है। इसके बाद ट्राइकोडर्मा का शुद्ध कल्चर 60 ग्राम प्रति 25 किलोग्राम की दर से मिला लेते हैं उसमें,
1: जी
0: जी, और इसको जूट के बोरे से ढक देते हैं फिर,
1: ठीक
0: ठीक है, और समय समय पर पानी का छींटा मार देते हैं ताकि उसमें नमी का प्रतिशत बना रहे,
1: बिल्कुल
0: 30% से कम नमी नहीं होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: ये किसान भाई विशेष ध्यान रखें।
1: अच्छा, तो इस तरह से इसका उत्पादन किया जा सकता है।
0: हाँ,
1: अब बात यह आती है कि ट्राइकोडर्मा के जो खास खास लाभ हैं या प्रमुख जो लाभ हैं वो कौन कौन से हैं, इस पर विस्तार से बताइएगा थोड़ा सा।
0: ट्राइकोडर्मा, जैसा कि मैंने बताया कि ट्राइकोडर्मा एक जैव फफूंदनाशी है,
1: हाँ
0: इसको बायोफंजिसाइड कहते हैं, और ये इसको हम भिन्न फफूंदनाशी भी कहते हैं। तो भिन्न फफूंदनाशी का मतलब ये होता है कि अलग अलग रंगों में पाया जाता है ये
1: अच्छा
0: प्रकृति में, और
1: अच्छा
0: फिर इसके जहां तक लाभ की बात आती है, वो पहला जो लाभ है वो रोग नियंत्रण में, यानी
1: ठीक
0: कि डिजीज कंट्रोल करने में।
1: बिल्कुल
0: वो कैसे होता है, फसलों में लगने वाले नुकसानदायक जो फफूंद से बीमारी लगती है
1: हाँ
0: उनकी रोकथाम के लिए, जो जड़ को चूसकर खा जाती है उसके रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं ये रोग नियंत्रण में काम करता है,
1: अच्छा
0: और दूसरे मिट्टी की सेहत को भी सुधारता है,
1: बिल्कुल
0: ये एक बढ़वार का भी काम करता है।
1: अच्छा
0: जैसे हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम गन्ने की फसल ज्यादा लेते हैं,
1: हाँ हाँ
0: गन्ने के साथ साथ हम सरसों की फसल भी लेते हैं
1: बिल्कुल,
0: और धान की फसल भी लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको अच्छी बढ़वार करता है ये, क्योंकि अच्छा। ये जैविक है एक तरह से,
1: अच्छा,
0: और रासायनिक खादों के प्रयोग को भी कम करता है, और हमारा जो किसान है वो शुद्ध उत्पादन ले सकता है इसके प्रयोग से।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो बहुत अच्छी बात है, कुल मिलाकर इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अब देखिए हम महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आते हैं, जब हम किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसमें बहुत सारी सावधानियों की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसी प्रकार से ट्राइकोडर्मा का जब हम प्रयोग करें तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कुछ तो खास बात होगी जैसे जब हम प्रयोग करेंगे।
0: ट्राइकोडर्मा जैव फफूंदनाशी को प्रयोग करते समय जो महत्वपूर्ण हमें सावधानियां रखनी है या बातें ध्यान में रखनी है, वो बातें एक तो रसायन से दूरी,
1: ठीक,
0: हाँ, रासायनिक फफूंदनाशी दवाइयों और ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल के बीच कम से कम 7 से 10 दिन का अंतर होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: जैसे कि आप अगर रासायनिक दवाई डाल रहे हैं तो उसके कम से कम 10 दिन बाद ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हमें करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: ये सबसे पहली सावधानी है।
1: जैसे हम कीटनाशक डालते हैं या और भी कोई फफूंदनाशक डालते हैं
0: जी,
1: तो वो डालने में और ट्राइकोडर्मा का उपयोग करने में 10 दिन का अंतर होना चाहिए।
0: ये विशेष सावधानी हमें रखनी है
1: जी।
0: दूसरे, हमें नमी का ध्यान रखना है
1: बिल्कुल,
0: कि ट्राइकोडर्मा के अच्छे परिणाम के लिए खेत में पर्याप्त नमी का होना बहुत ही आवश्यक है।
1: अच्छा, वो सब फसलों के लिए है या किसी एक विशेष?
0: सभी जो कॉमन फसलें हैं सभी।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है।
0: जैसे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे किसान भाई बोते हैं,
1: ठीक है। तो दो बातें हो गई, एक तो हमें जो है रसायन का प्रयोग करने में और ट्राइकोडर्मा का उपयोग करने में 10 दिन का अंतर रखना है, दूसरी बात निकल के आई कि नमी का होना जरूरी है, और कौन कौन सी
0: और बातें हैं? एक तो भंडारण
1: जी,
0: जो महत्वपूर्ण है ये भी, इससे हमेशा सीधी धूप से बचाकर और ठंडी और सूखी जगह पर रखें।
1: ठीक
0: ठीक है,
1: हाँ।
0: तो ये एक
1: मतलब हम जब इसको रखें अपने घर में लाके तो ठंडी और सूखी जगह पर रखें, और क्या खास बात ध्यान में रखें?
0: और ये खास बात हमें ध्यान में रखनी है कि ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से मतलब जो भी चीज है उसको पहले ना अच्छे से वो कर लें, ट्राइकोडर्मा के वो तैयार कर लें,
1: अच्छा,
0: ठीक है, तब उसका प्रयोग करें,
1: ठीक है,
0: ताकि उसका उसकी जड़ तक फसलों की और पौधे को उसका प्रॉपर लाभ मिल सके।
1: बिल्कुल। तो देखिए अगर हम कृषि की बात करें तो ट्राइकोडर्मा का कृषि में क्या क्या योगदान है?
0: मैं अपने कृषक भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि ट्राइकोडर्मा का जो प्रयोग है वो जैव फफूंदी नाशक के रूप में किसान भाई हमारे कर भी रहे हैं,
1: हाँ।
0: और जो किसान भाई इसके लाभ को अभी तक कम जानते हैं या अनभिज्ञ हैं उस चीज से, तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से एक तो हमारा जो फसल उत्पादन है वो प्राकृतिक रूप में हमें मिलता है, शुद्ध मिलता है, ठीक है, रासायनिक खादों के प्रयोग से कम करके उसको जब हम जैविक के प्रयोग करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है बिल्कुल फ्रेश मिलता है और अच्छा अच्छा मिलता है, और उत्पादन भी रासायनिक खादों से अच्छा होता है उसमें।
1: अच्छा, तो कुल मिलाकर रासायनिक खादों की अपेक्षा ट्राइकोडर्मा का उपयोग जो है वो लाभदायक है।
0: और एक बात इसमें ये भी है, जो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य है इसके ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से, जैव फफूंदनाशी के प्रयोग से
1: जी,
0: वो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है,
1: हाँ।
0: और हमारी मिट्टी लंबे समय तक उर्वरा शक्ति हमें प्रदान करती है, और इसके साथ साथ ही मृदा प्रदूषित होने से भी बचती है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जन्म लेना ही छोड़ देती हैं।
1: अच्छा, बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर सारांश ये आया कि जो भूमि जिस पर हम खेती कर रहे हैं ये हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है और हम भी अगली पीढ़ी को ये सौंप के जाएंगे, तो ये भूमि जो है उपजाऊ बनी रहे और इसमें जो है अच्छी अच्छी फसलें पैदा होती रहें, तो यानी कि मिट्टी का स्वास्थ्य न बिगाड़ें, इसके लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग बहुत जरूरी है। तो अंत में और हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
0: अभी मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे सरकार हमारी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है
1: जी,
0: और वो कहीं ना कहीं जो रासायनिक खाद हैं, अभी पिछले दिनों हमारे भारत सरकार द्वारा 2 अभियान चलाए गए थे
1: जी,
0: उसमें एक अभियान था हमारा कृषक चौपाल जागरूकता कार्यक्रम
1: जी,
0: दूसरा था खेत बचाओ मिट्टी बचाओ अभियान
1: जी।
0: इन अभियानों से हमने किसानों में यही जागरूक करने का प्रयास किया कि रासायनिक खादों का प्रयोग तो करें लेकिन उसको बैलेंस रूप में, यानी कि उसको संतुलित रूप में करें। यदि हमारी फसल को 1 हेक्टेयर में, जैसे सपोज हम 7 NPK के बैग देते हैं आपको और 7 DAP के देते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं संतुलित उर्वरक का प्रयोग करना होगा, उस पर काम करना होगा, तभी हम अपनी फसल उत्पादन अच्छा ले सकते हैं, प्राकृतिक रूप में ले सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों को यही बताना चाहूंगा कि हम रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग करके जैविक पर आए, जैसे जैविक के रूप में हरी खाद होती है हमारी इसको, और एक हमारा जो मैं जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं ट्राइकोडर्मा, जो कि जैव फफूंदनाशी है। तो जैसे सपोज किसी एक किसान ने अगर 2 हेक्टेयर जमीन में फसलें लगा रखी हैं, तो कम से कम उसे 2 बीघे में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करके ही फसलों को उगाना चाहिए। तो यही मेरा किसानों के लिए संदेश है, यही मैं बताना चाहूंगा।
1: तो बिल्कुल, तो डॉक्टर विकास आपने आधुनिक कृषि में ट्राइकोडर्मा के अनुप्रयोग के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी, और विशेष रूप से संदेश ये दिया कि अगर हमें अपनी खेत को बचाना है, अपनी मिट्टी को बचाना है, अपनी फसल उत्पादन वाली भूमि को बचाना है, तो हमें जैविक तरीकों की तरफ आना पड़ेगा, और उसमें ट्राइकोडर्मा एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर विकास कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: तो अभी हमारे किसान भाइयों ने ये जानकारी सुनी, वह विषय था आधुनिक कृषि में ट्राइकोडर्मा के अनुप्रयोग, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विकास कुमार। भाई देखो कितनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने हमारे किसान भाइयों को दी। भाई डॉक्टर साहब ने ट्राइकोडर्मा के महत्व के संबंध में कितना अच्छा बताया कि भाई जो ट्राइकोडर्मा है ये भाई एक जैव फफूंद है, साथ ही साथ भैया ये एक हमारी मित्र फफूंद है जो कि हमारे खेतों में पड़ी जो हमारी शत्रु फफूंद होती है उसको खाती है। भैया ये एक ऐसी फफूंद है जो भैया फफूंद को ही खाती है और भाई हमारी फसलों को लाभ पहुंचाती है। तो भाई इसका प्रयोग के संबंध में डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी दी, बताया कि भाई किस तरह से इसका प्रयोग करना है। भाई देखो गोबर की सड़ी खाद में इसके पाउडर को हमें मिलाना है, साथ ही ये ध्यान रखना है कि जहां हम उस सड़ी हुई गोबर की खाद में इसके पाउडर को मिला रहे हैं तो वहां भैया छाया होनी चाहिए, या भैया कहीं आप टिपलर के नीचे उसको बिछा सकते हैं और भाई 5 से 7 दिन तक उसको पड़े रहना दें। साथ ही एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि भाई जो हमारी गोबर की सड़ी खाद है उसमें यदि नमी पर्याप्त है तो भाई बहुत अच्छी बात है, और यदि हमारा जो खाद है वो भैया सूखा है, जैसे भैया कुछ हमारे भाई क्या काम करें कि वर्मी कंपोस्ट में मिला लिए हैं या भैया अन्य कोई जैविक खाद हो उसमें मिला लिए हैं, तो भाई उसमें हमें थोड़ी सी एक नमी बना कर रखनी है ताकि भैया ट्राइकोडर्मा अपने आप को भैया अधिक गुणकारी या अधिक रूप से फैला सके। तो उसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या काम करना कि भैया उसमें थोड़ा सा 1.5 किलो गुड़ मिला लें, एक घोल बना लें गुड़ का, और भैया उसमें 0.5 किलो बेसन मिला लें, और भाई वो उसके ऊपर जो हमारा गोबर की सड़ी खाद पड़ी है भैया वो उसके ऊपर जो है छिड़क दें, छिड़क के भैया उसमें एक बार अच्छी तरह से हाथ निकाल दें यानी कि अच्छी तरह से मिला दें, तो उससे भैया उसमें नमी बन जाएगी, और नमी जब हो जाएगी तो भैया उसमें आप वो ट्राइकोडर्मा मिलाकर 7-8 दिन तक रख दें, और उसके बाद भैया उस कल्चर का प्रयोग आप अपने खेतों में कर सकते हैं। भाई इसका प्रयोग हमें करना है बुआई से पहले यानी कि अंतिम जुताई के समय। भाई एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि ट्राइकोडर्मा कल्चर को आप जब भी खेत में छिड़काव करें या स्प्रे करें या अन्य कोई किसी भी तरीके से आप अपने खेतों में उसको डाल रहे हैं तो भाई सुबह और शाम के समय हमें करना चाहिए, न कि भाई अधिक धूप में करना चाहिए। धूप इसको भैया जो हमारी मित्र फफूंद होती है भैया ये एक जीवित फफूंद होती है जिसे भैया धूप से बहुत जो है हानि होती है और धूप इसको भैया नष्ट भी कर देती है। तो भैया हम जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, सुबह शाम इसका प्रयोग करना है। साथ ही डॉक्टर साहब ने भैया ट्राइकोडर्मा के भैया प्रजातियों की जानकारी दी कि ट्राइकोडर्मा बिरडी और ट्राइकोडर्मा हरजेनियम, जो कि भैया जो हमारे किसान भाई ट्राइकोडर्मा हरजेनियम का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं तो भाई वो जो है जो आजकल हम देखते हैं गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग, भैया उससे भी हमारे किसान भाइयों को बहुत हद तक मुक्ति दिलाती है। भाई देखो जो लाल सड़न रोग है वो भैया कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नाम की फफूंदी जनित रोग होता है, और भाई उसकी फफूंदी को ये जैव फफूंद यानी कि ट्राइकोडर्मा खाकर नष्ट कर देती है जिससे हमारी फसल जो है सुरक्षित हो जाती है, हमारी फसल लहलहाती है। तीसरे भाई डॉक्टर साहब ने बताया कि हम खेती तो कर ही रहे हैं लेकिन भाई रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, तो भाई रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग ना करके भाई संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करो, साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करो, साथ ही जैविक खेती की तरफ बढ़ो, तो इससे भैया आपके स्वास्थ्य को मानव और भैया जो मानव स्वास्थ्य है उसको लाभ मिलेगा, साथ ही जो हमारा पर्यावरण है पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा, पर्यावरण संतुलित रहेगा, साथ ही भैया हमारी मिट्टी जो है वो भी सुधरेगी जिससे भैया जब हमारे भविष्य को या हमारी जो अगली पीढ़ी है हम उसको भैया अपनी ये मिट्टी अनमोल धरोहर देख कर जाएंगे तो भैया वो एक अच्छी मिट्टी होगी और अच्छा फसल उत्पादन वो हमारी अगली पीढ़ी को भी देगी। तो भाई देखो कितनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने ट्राइकोडर्मा के संबंध में दी। तो भाई इस तरह से यदि आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अपने खेतों में करें, अपनी फसलों के ऊपर करें, तो भाई आपको अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन मिलेगा। और भाई जब अच्छा उत्पादन मिलता है तो भाई हमारे किसान भाइयों का मन गदगद होता है और उन्हें लाभ जब दिखाई दे तो भाई मन हंसने को करता है। तो भाई अब किसान भाइयों को हंसी की ओर उस ले चलते हैं और संगीत की ओर ले चलते हैं। तो भाई अब किसान भाइयों कराते हैं मनोरंजन और सुनते हैं सेठ पाल आर्य व साथियों से यो प्यारी सी रागनी।

अभी हमारे किसान भाइयों ने ये रागनी सुनी, कदर नहीं बिन पैसे के। भाइयों देखो, इस रागनी के माध्यम से ये संदेश है कि भाई बिना पैसे के कहीं भी कदर नहीं है। भाई पैसा हमारे पास होना चाहिए, तभी तो भाई हम कोई सा भी काम कर सके हैं। तो भाई आप भी भैया अपनी जेब में पैसा रखेंगे, साथ ही साथ अपनी खेती किसानी के और भैया अपने अन्य जो भी जिम्मेदारी है वो समय से निभावेंगे, तो भाई आपका भरपूर मनोरंजन हुआ होगा और दिन भर की थकान आपकी उतर गई होगी। और भाई अब घड़ी भी हमें इस ओर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाज़त किसान भाइयों से बिल्कुल नहीं दे रही है। तो भैया देखो, अब हम किसान भाइयों को एक बात और बता दें कि भाई बरसात का मौसम है और हम अपनी फसलों में जो भी सिंचाई करनी है या भैया कोई सा भी स्प्रे करना है, चाहे खरपतवार नाशी का हो या भैया किसी कीट का हो या रोग का हो, तो भाई उसको भैया मौसम देखते हुए आप अपने खेतों में समय से करें। और साथ ही साथ भैया आप हम चिट्ठी पत्र लिखते रहें, क्योंकि भाई आपके चिट्ठी पत्रों के अनुसार ही हम अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। और भैया देखो, हमारा चिट्ठी लिखने के लिए पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। भाई इस पते पर हमें आपके चिट्ठी पत्रों का इंतजार रहेगा। और भाई आजकल देखो, हमारे किसान भाइयों के पास बड़े फोन हैं जिससे हमारे किसान भाई हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर है 94-57-07-82-88। भाई नंबर एक बार और लिख लें, 94-57-07-82-88। इस नंबर पर आप हमें SMS कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कार्यक्रम कृषि जगत, और जो भी भैया आप हमारे कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं या जो भी आपकी हमारे कार्यक्रम के प्रति राय है भैया, वो आप लिखकर हमें जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। और भाई अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। विविध कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं कहानी नेक। कहानीकार हैं पूनम राणा।
1: नमस्कार। कहानी नेक। उस छोटे शहर में बर्तनों की एकमात्र वही सबसे बड़ी दुकान थी, जिसके पास कांच से लेकर पीतल चांदी तक हर प्रकार के बर्तन थे। बर्तनों का वह महंगा सेट भी था जिसके लिए वह महिला उस दुकान के कई चक्कर लगा चुकी थी। उस दिन वह यह सोचकर निकली थी, कोशिश तो करनी ही होगी वरना लड़के की माँ मेरी बेटी का जीना हराम कर देगी। अगर हो सके तो नीलम कंपनी का स्टील का डिनर सेट देना जी। शुरू में विनम्रता से जताई गई लड़के की माँ की इच्छा अब जबरदस्त मांग बन चुकी थी और देना उसकी मजबूरी। लोगों के घरों में काम कर उन माँ बेटी का गुजारा मुश्किल से होता है, जानकर भी ऐसी मांग थी उनकी। इधर उसकी बेटी थी कि अभी विवाह को राजी ही नहीं थी। कहती थी, माँ मुझे आगे पढ़ना है। वह हर दिन समझाती थी, बिटिया गरीब की इज्जत पर कितने गिद्ध घात लगाए बैठे रहते हैं, तुम नहीं जानती, तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं क्या करूंगी। पर बेटी मानती ही नहीं थी। वह कहती, माँ उनकी ये मांग उनके लालची होने का बड़ा सबूत है, लोग ऐसे ही करते हैं। पिछली रात तो वह बहुत गिड़गिड़ाई थी। माँ मैं आगे पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती हूँ, आपको सब सुख देना चाहती हूँ, मुझे अभी विवाह नहीं करना है। और वह उस क्षण अपनी बेटी का मुख देखती रह गई थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी, ऐसे सपने तो कभी उसकी आंखों में भी थे, पर गरीबी सपनों से पहले पेट का हिसाब मांगती है, जानती नहीं थी। बिटिया तेरे सपने बहुत अच्छे हैं, पर दुनिया अच्छी नहीं है, गरीब की बेटी सबकी आंखों में चुभती है, कहकर उसे चुप करा दिया था उसने। वही महिला उस दिन जब दुकान में प्रवेश कर रही थी, पूरे स्टाफ ने उसकी ओर उपेक्षा से देखा था। लेती वेती कुछ नहीं, बस समय खोटा करती है। मगर शिवा जो उस दुकान का मालिक था आगे बढ़ आया और बोला, आइए बहन जी, बताइए क्या दिखाऊं। डिनर सेट, महिला ने हिचकिचाते हुए कहा और चुप

आप खड़ी बर्तनों को देखती रही। थोड़ी झिझक के बाद उसने स्टील के डिनर सेट के मूल्य पूछे। लगभग सभी के मूल्य उसकी सोच से अधिक थे। वह डिनर सेट जो उसे चाहिए था उसका मूल्य तो इतना अधिक था कि मोल भाव की हर कोशिश ही बेकार गई। अंत में उसने अपना दिल कड़ा करके एक सस्ता सेट पैक करने को कह दिया। अंतिम बार उस महिला ने निराश सी एक दृष्टि उस डिनर सेट पर डाली और आंचल में बंधी गांठ से पैसे खोलने लगी। शिवा ने देखा बर्तनों का थैला उठाते समय उसकी आंखें आवश्यकता से अधिक उदास हो गई थीं। पता नहीं क्या सोचकर उसने दुकान से बाहर निकलती उस महिला को रोका। सुनिए बहन जी, जरा ठहरिए। तो महिला ठिटक गई थी, कहीं उसके क्रय किए बर्तनों का मूल्य और अधिक तो नहीं जो उसकी पहुंच ही में ना हो, सोचकर वह घबरा उठी। शिवा उसके पास आया और बोला, बहन जी बुरा ना माने तो मुझे बताएंगे कि आपको ये बर्तनों का सेट किसके लिए चाहिए था? वो भैया, मेरी बिटिया का ब्याह है, उसी के लिए। बस बस बहन जी, सब समझ गया। बिटिया का विवाह है तो हमारी ओर से भी कन्यादान में कुछ नेक तो बनता ही है, आप ठहरिए। शिवा अंदर गोदाम में गया और नौकर से वही डिनर सेट पैक करवा कर लाकर उसके पैरों में रख दिया, जिसे बड़ी लालसा से देखती रही थी। बहन जी, यह हमारी ओर से बिटिया के विवाह के लिए। नाना भैया, आप तो मुझे जानते भी नहीं, अविश्वास और हैरानी से वह महिला बोली। भैया भी कहती हो बहन और कहती हो जानते भी नहीं, ले जाओ बिटिया को मामा की ओर से देना। महिला के हाथ कांपने लगे। उसने पहली बार उस सेट को छूने का साहस किया। कितनी बार वह इस दुकान में आई थी, कितनी बार दूर खड़े होकर देखा था, कितनी बार मन ही मन हिसाब लगाया था कि यदि दो घर और काम मिल जाएं, यदि अगले महीने बीमारी न पड़े, यदि राशन थोड़ा कम खरीदें तो शायद खरीद पाएं, पर हर बार गणित टूट जाता था। आज वही सेट उसके सामने था। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। शिवा ने उसके हाथ से दूसरे बर्तन का सेट लेकर उसके पैसे उसको लौटाते हुए कहा, बिटिया का विवाह है, ये पैसे रखो बहन, पता नहीं कहाँ काम आए। आभार स्वरूप महिला के हाथ स्वतः ही जुड़ते चले गए। उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों को पोंछते हुए कहा, धन्यवाद भैया, मेरा तो रिश्तों पर से यकीन ही उठ गया था। धन्यवाद न कहें बहन, मेरा तो बस इतना मानना है बेटियों के विवाह से पहले उन्हें पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा करना चाहिए। कहते तो आप सही हैं, पर मुझ गरीब के पास बस यही एक मार्ग है। खैर, सबके हालात अलग अलग होते हैं बहन, आप खुशी खुशी जाइए, आपको बेटी के विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। इस बात को कई वर्ष बीत गए। उधर के रास्ते, गलियां, चौराहे इस बात को और उस अद्भुत दृश्य को जैसे विस्मृत कर बैठे थे। तभी तो उस दिन वह महिला एक लड़की का हाथ थामे बिना झिझक उस शोरूम में प्रवेश करते ही अंदर का दृश्य देखकर गहरी झिझक से घिर गई थी। जाना पहचाना दृश्य बदल गया था। बर्तनों के स्थान पर वहां साड़ियों के ढेर थे और काउंटर के पीछे बैठा कोई दूसरा व्यक्ति था। उसे गहरा धक्का सा लगा। उसने दुविधापूर्ण दृष्टि से लड़की को देखा, फिर उसने झिझकते हुए काउंटर पर बैठे उस व्यक्ति से पूछा, भैया यहाँ पहले बर्तनों की दुकान हुआ करती थी? हाँ, बहुत पहले, अब तो साड़ियों का शोरूम है। भैया क्या आप बता सकते हैं पहले जो इस दुकान के मालिक थे अब वे कहाँ हैं? वे तो अब बहुत बुरी हालत में हैं, फांकों में जीवन काट रहे हैं, बस स्टैंड के पीछे वाली छोटी गली में रहते हैं। महिला सुनकर सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था इतनी जल्दी, मतलब इतना समय भी नहीं बीता था। उसने रुआसी होकर पूछा, ये सब उनके साथ कैसे हुआ भैया? भाई साहब सीधे थे, छोटे भाई ने धोखा किया उनके साथ, दुकानदार ने बताया। जब वह महिला बताए पते पर पहुंची तो हिलक कर रो पड़ी। सामने टूटी सी चारपाई पर बैठा शिवा प्लास्टिक के बदरंग से कप में चाय पी रहा था। भैया, सामने किसी महिला को ऐसे पुकारते देख शिवा अचरज में पड़ गया। कौन? मैं भैया, आप तो दान करके भूल गए, पर मैं कैसे भूल सकती थी? उसने बताया तो शिवा को सब याद आ गया। भैया, आज पुनः आपका धन्यवाद करने आई थी, मैं गरीब बिटिया को पढ़ाने की बजाय उसके जल्दी हाथ पीले करके अपने फर्ज पूरे करना चाहती थी, पर मैं दहेज के लोभियों का पेट नहीं भर सकी तो बारात वापस ले गए। पर कहते हैं ना, जो होना होता है वही होता है। इस बार मैंने इसकी जिद के आगे हार मान ली। आपके दिए पैसे बेटी को देने को बचा रखे थे, आपका दिया उपहार कुछ कम कीमत पर बेच दिया। ऐसे ही ऐसे कई जुगाड़ करके बेटी का दाखिला करवा दिया था मैंने, बाकी सब इसने संभाल लिया। यह शिवांगी है भैया, रात रात भर पढ़ती थी, लोग उन्हें ताने भी दिए, पर इसने किसी की एक न सुनी। खूब पढ़ाई करके वजीफा लिया और आज ये अच्छी वकील बन गई है। माँ की तारीफ पर बेटी मुस्कुरा दी। मामा सच कहूं तो कई बार हार

0: धोखा नहीं ढूंढा जाता न, उसकी आंखें भर आईं। जब तक समझ आया सब कुछ उसके नाम हो चुके थे। अदालतों के चक्कर लगाने की ताकत नहीं थी। लोग भी धीरे धीरे दूर हो गए। पर आज क्या कहूं बहन, आपके आने से मुझे कितनी खुशी मिली है। दूसरी बड़ी खुशी आपने बिटिया को अपने पैरों खड़े करके दी है। माँ ने तो पढ़ाया लिखाया मुझे, अपने पैरों खड़ा किया, पर कामयाब तो तब कहलाऊंगी ना मामा जब सब आपका आपको लौटा दूंगी। आपके साथ जो हुआ मुझे विस्तार से बताइए। उस फ्रॉड को मैं सबक सिखाऊंगी मामा, आपका केस मैं लड़ूंगी। बिटिया, हाँ मामा, सीधे साधे लोगों के साथ यही होता है, हमारे साथ भी यही होता आया। ऐसे धोखेबाजों और स्वार्थियों से निपटने को ही मैंने वकालत पास की है। शिवांगी के चेहरे पर आक्रोश छलक आया था। शिवा की आंखों से आंसू बह निकले। जिस दिन उसने उस महिला को डिनर सेट दिया था उस दिन उसने कोई उपकार नहीं किया था, बस एक गरीब माँ का दुख समझा था। मगर जीवन बड़ा अद्भुत होता है। कभी कभी हम जिन हाथों में एक छोटी सी रोशनी रख देते हैं वही हाथ वर्षों बाद हमारे अंधेरे में दीपक लेकर लौटते हैं। उसने शिवांगी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया दुकान मिले न मिले, मुकदमा जीतू न जीतू, आज मुझे लगता है मैं खाली नहीं हूँ। शिवांगी ने झुककर शिवा के चरण छुए और कहा, आप खाली कैसे हो सकते हैं मामा? जिसने किसी की राह रोशन की हो उसके हिस्से का उजाला कभी खत्म नहीं होता। बाहर सांझ उतर रही थी। टूटी चारपाई पर बैठे शिवा को वर्षों बाद लगा कि रिश्ते अभी मरे नहीं हैं। धन्यवाद।
1: पूनम राणा की कहानी नेग अभी आपने सुनी। विविधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म आखिरी खत से, आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना कैफी आजमी की और संगीत खय्याम का।

आइए अब सुनते हैं पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना जावेद अख्तर की, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का और फिल्म का नाम है मशाल।

किशोर कुमार की आवाज में मशाल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। इसी के साथ छाया गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए अब सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश गान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में बताते हैं।

शाम 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे परवेज मेहंदी की इकाई गजलें। 7:50 पर अदबी दुनिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे इकरा शकील का कलाम। गीत संध्या कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8:00। एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर।

नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात्रि 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। कल दिन में 1:15 पर परिवार जगत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे मनु श्वेता की वार्ता वन संरक्षण दशा एवं दिशा। गोपाल बाबू गोस्वामी के गाए कुमाऊनी लोकगीत सुनवाए जाएंगे लोकधारा के अंतर्गत 1:45 पर। कल शाम 5:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जिसके अंतर्गत सेगमेंट होंगे गपशप अड्डा, क्रश कोर्स, पैसा वसूल और लव स्टोरी। 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भेंटवार्ता कृषि में विविधीकरण। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर ओमपाल सिंह, आपसे बातचीत करेंगे नरेश पाल सिंह। 7:00 ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारी केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
3: चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल, कहा डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने NDA के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ, कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के पहुंचाया गया है, और डबल इंजन सरकार विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य निरंतर कर रही है।
10: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है, और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
9: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है कि यहाँ जो कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है, जो शक्ति केंद्र में काम करता है, वो पार्टी के शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है। श्री नवीन ने कहा कि विगत समय में जिन विषयों को लेकर पूरी दुनिया में अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से जनता की चिंता करता रहा।
11: पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में विक अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही।
9: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्षों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सेवा और विकास के एजेंडे पर जोर दिया। सहयोगी दलों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अपना दल एसके उपाध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय को लेकर खास तौर पर बात की गई।
0: विशेष रूप से जो समन्वय का कार्य कैसे, उस पर चर्चा हुई है। और मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि एनडीए के इस जीत में अपना दल ने हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
9: केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण BBGRAMJI अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता जताई है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने कहा कि जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी गांवों को समृद्ध और विकसित बनाना है।
6: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
9: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तेज हो गई है। मामले के विवेचक ने आज जिला कारागार में 8 आरोपियों में से 5 से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पेश है एक रिपोर्ट।
12: राम मंदिर दान घोटाला मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में CEO अयोध्या और विवेचक आशुतोष तिवारी जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने 5 आरोपियों लोकेश मिश्रा, रामशंकर यादव, टिन्नू, मनीष यादव, करुणेश पांडे और अनुकल्प मिश्रा से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की कल होने वाली अहम बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक में दान घोटाला प्रकरण के साथ चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र पर विचार किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य राम मंदिर व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
9: गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से कल से 11 जुलाई तक प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा विशेष सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
13: प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां इस अभियान की मुख्य नायक के रूप में कार्य करेंगी। समितियां अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार, जागरूकता, नामांकन तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। समितियां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित होंगी। अभियान के माध्यम से किसानों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक योजनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और भविष्य की सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान सभी समिति परिसरों में बैंकों, इफ्को, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विशेष सहायता और नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अभियान विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को गति देने के साथ साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
9: उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और यूपी के आमों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का आम वर्तमान में 30 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंह ने समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया और महोत्सव में 1501 प्रतिभागियों ने 3032 आम के नमूने प्रदर्शित किए। विभिन्न श्रेणियों में 147 पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। प्रदेश में मॉनसून आने के बाद से बारिश का सिलसिला जारी है। आज राजधानी लखनऊ समेत गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, प्रयागराज, बलिया और जौनपुर सहित 10 शहरों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी 8 से 10 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ। कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: लगे ना। सुगंध क्या हो रहा है?
1: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे।
2: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
3: मीडियम
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संकेत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं परवेज मेहंदी की गाई चंद गजलें। लीजिए सुनिए ये गजल। यूं तो किसी को याद रखना मुश्किल होता है, पर भुलाना भी कुछ आसान नहीं होता। 100 बार कहा दिल से चल भूल भी जा उसको, हर बार कहा दिल ने तुम दिल से नहीं कहते। लीजिए पेश है ये गजल परवेज मेहंदी की आवाज में।

दिल में दर्द अफसाना बनकर ठहर जाए तो लाख कोशिशों के बावजूद भी छिपाना बहुत मुश्किल होता है। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे।

इश्क के ढंग क्या कहें, सब निराले ही होते हैं। इश्क में सजना का सजना भी मोहब्बत के इजहार की तरह होता है। बहारें उसके आगे फीकी होती हैं और इश्क कहता है, किसी चमन में किसी गुल में कोई ऐसा रंग नहीं जो मेरे सजन के श्रृंगार में शामिल ना हो। आइए सुनते हैं ये गजल, और ये है कार्यक्रम की अंतिम गजल।

0: अभी आप परवेज मेहंदी की गाई चंद गजलें सुन रहे थे। सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आपको याद दिलाते हैं, आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। कल दिन में 1:15 पर परिवार जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे मनु श्वेता की वार्ता वन संरक्षण दशा एवं दिशा। कल शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वदेश दर्शन योजना तथा प्रसाद योजना के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी। कल शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे भेंटवार्ता कृषि में विविधीकरण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ओमपाल सिंह, आपसे बातचीत करेंगे नरेश पाल सिंह। इसी के साथ युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:15 पर। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कलामे शायर अदबी दुनिया। अदबी दुनिया में आज की कलामे शायर हैं इकरा शकील। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अदबी दुनिया।
1: गजल का मतला हाजिर कर रही हूं, मुलायजा फरमाएं। रस्ते कई हैं सामने, चलना तो सीख ले। रस्ते कई हैं सामने, चलना तो सीख ले। ठोकर भी कह रही है संभलना तो सीख ले। ठोकर भी कह रही है संभलना तो सीख ले। ये शेर भी देख लीजिए। पत्थर नहीं तू मोम है, दावा है ये तेरा। पत्थर नहीं तू मोम है, दावा है ये तेरा। हम मान लेंगे पहले पिघलना तो सीख ले। हम मान लेंगे पहले पिघलना तो सीख ले। ये शेर भी मुलायजा फरमाए। आ ही अगर गया है तू इस इम्तिहान में। आ ही अगर गया है तू इस इम्तिहान में। अब कामयाब होके निकलना तो सीख ले। अब कामयाब होके निकलना तो सीख ले। ये शेर खास तौर से समाप्त कर लें। जीना ही चाहता है तो सच्चाइयों को जी। जीना ही चाहता है तो सच्चाइयों को जी। सपनों से दूर रह के बहलना तो सीख ले। सपनों से दूर रह के बहलना तो सीख ले। इस शेर पर भी तवज्जो चाहूंगी। सुनना अगर है कुछ तो समय की पुकार सुन। सुनना अगर है कुछ तो समय की पुकार सुन। दुनिया के साथ खुद को बदलना तो सीख ले। दुनिया के साथ खुद को बदलना तो सीख ले। हासिले गजल शेर मुलायजा फरमाएं। बेसाखियों के बल पे ना पहुंचेगा लक्ष्य तक। बेसाखियों के बल पे ना पहुंचेगा लक्ष्य तक। खुद अपने पांव पर अभी चलना तो सीख ले। खुद अपने पांव पर अभी चलना तो सीख ले। गजल का मक्ता हाजिर कर रही हूँ, मुलायजा फरमाएं। दीपक के जैसा रोशनी देना कठिन नहीं, दीपक के

है वो सपना बहुत याद अब आता है, वो सपना बहुत। इस शेर पर भी और फरमा लें, काश एक दिन सामने देखूं उसे, काश एक दिन सामने देखूं उसे, कल्पनाओं में जिसे देखा बहुत, कल्पनाओं में जिसे देखा बहुत। इस शेर पर भी तवज्जो चाहूंगी, और कब तक आजमाओगे उन्हें, और कब तक आजमाओगे उन्हें, अब तो तुमने खा लिया धोखा बहुत, अब तो तुमने खा लिया धोखा बहुत। इस शेर में एक दुनियावी हकीकत बयान करने की कोशिश की है, मुलाहिजा फरमाएं। जाने क्या क्या जान लेना शेष है, जाने क्या क्या जान लेना शेष है, कुछ नहीं है वो जिसे समझा बहुत, कुछ नहीं है वो जिसे समझा बहुत। काश एक दिन सामने देखूं उसे, काश एक दिन सामने देखूं उसे, कल्पनाओं में जिसे देखा बहुत, कल्पनाओं में जिसे देखा बहुत। रोजमर्रा के तजरिबात इस शेर में मुलाहिजा फरमा लें, दूसरों का क्यों हुआ हैरत हुई, दूसरों का क्यों हुआ हैरत हुई, जिसको समझा था कभी अपना बहुत, जिसको समझा था कभी अपना बहुत। मक्ते से पहले एक शेर और देख लीजिए, मिल गया बैठे बिठाए ही कभी, मिल गया बैठे बिठाए ही कभी, तब नहीं पाया के जब ढूंढा बहुत, तब नहीं पाया के जब ढूंढा बहुत। गजल का मक्ता हाजिर कर रही हूँ, मुलाहिजा फरमाए। क्या अभी से थक गई इकरा शकील, क्या अभी से थक गई इकरा शकील, मंजिलें हैं दूर और चलना बहुत, मंजिलें हैं दूर और चलना बहुत। छोटी बहर की गजल हाजिर कर रही हूँ, मतला मुलाहिजा फरमाए। बस्ती बस्ती गाता जा, बस्ती बस्ती गाता जा, पग पग दीप जलाता जा, पग पग दीप जलाता जा। इस शेर में एक तल्ख हकीकत मुलाहिजा कीजिए, मित्रों को हर बार परख, मित्रों को हर बार परख, फिर भी धोखे खाता जा, फिर भी धोखे खाता जा। इस दौर की एक और सच्चाई भी देख लें, रूपनगर में आया है, रूपनगर में आया है, कुछ तो मन बहलाता जा, कुछ तो मन बहलाता जा। खास तौर से इस शेर पर भी गौर कीजिए कि ऐसी इश्क की आग लगा, ऐसी इश्क की आग लगा, ये पत्थर पिघलाता जा, ये पत्थर पिघलाता जा। रूपनगर में आया है, रूपनगर में आया है, कुछ तो मन बहलाता जा, कुछ तो मन बहलाता जा। ये शेर न्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कहने की कोशिश की है, मुलाहिजा फरमाएं। तोड़ भरोसे को मेरे, तोड़ भरोसे को मेरे, अपना रंग दिखाता जा, अपना रंग दिखाता जा। गजल का आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं। सूरज है तो ऐसा कर, सूरज है तो ऐसा कर, ये जर्रा चमकाता जा, ये जर्रा चमकाता जा, ये जर्रा चमकाता जा। शुक्र।

अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज में तेरी मेहरबानियां फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था SH बिहारी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए अब सुनते हैं हीरो फिल्म का गीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, आवाज दी अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास ने।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। आइए अब सुनते हैं विजय पथ फिल्म का गीत, जिसे लिखा है जमीर काजमी ने, संगीत अनुमिलक का है और आवाजें अलका याग्निक कुमार शानू की हैं।

अलका याग्निक और कुमार शानू को अभी आपने सुना फिल्म विजयपथ में। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, आवाज विनोद राठौड़ की, शब्द रचना समीर की, संगीत नदीम श्रवण का। फिल्म का नाम है दीवाना।

0: विनोद राठौड़ के गाए दीवाना फिल्म के इसी गीत के साथ गीत संध्या कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुली नंबर 1 फिल्म के कुछ गीत। ये फिल्म सन 1995 में बनी, जिसका निर्देशन डेविड धवन ने किया और इसे रूमी जाफरी और कादर खान ने लिखा था। फिल्म में गोविंदा, करिश्मा कपूर, कादर खान, शक्ति कपूर, हरीश कुमार, सदाशिव अमरापुरकर और महेश आनंद ने अभिनय किया था। फिल्म के लिए संगीत दिया आनंद मिलिंद ने। आइए सुनते हैं ये गीत अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में।

श्रोताओं, इस फिल्म के गानों के बोल समीर के रहे और संगीत की दृष्टि से ये फिल्म बहुत अधिक लोकप्रिय रही और यह उस वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाले बॉलीवुड साउंड ट्रैक में से एक बन गया था। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गीत, चंदना दीक्षित और अभिजीत के युगल स्वरों में।

कुली नंबर वन फिल्म करिश्मा कपूर की शुरुआती सफल फिल्मों में से एक थी और गोविंदा को इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए दशक के सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में स्टार स्क्रीन अवार्ड स्पेशल जूरी अवार्ड मिला और आने वाले वर्षों में यह फिल्म हिंदी फिल्म इतिहास में एक क्लासिक बन गई है। आइए सुनते हैं इसी फिल्म से ये एक और गीत और यह है कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: अभी आपने कुली नंबर वन फिल्म से कुछ गीत सुने। इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग-अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जल स्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोह में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
4: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
5: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
4: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है।

0: आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलू का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले

का विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेहकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल इजाफे से इत्तेफाक किया है। फीफा आलमी कप में आज रात न्यू जर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा और T20 क्रिकेट आलमी कप में लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, बिजली चमकने और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले चार दिन में मानसून के गुजरात के कुछ मजीद इलाकों, हरियाणा, पंजाब के बकिया इलाकों और राजस्थान के कुछ मजीद इलाकों में आगे बढ़ने के इम्कान हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड में दिन के दौरान शदीद से ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले दो से तीन दिन के दौरान अलग अलग जगहों पर बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र में आज मानसून की शदीद बारिश से बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं। बारिश की वजह से कुछ हादसात पेश आए, जहां बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायगढ़ जिले में पुलिस ने 10 से 12 सयाहों को खपोली के नजदीक अदूषी आबशार से बचाया, क्योंकि यहां पानी की सतह में अचानक इजाफा हो गया था। हुक्काम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मानसून के दौरान दरियाओं, आबशारों और पानी के दीगर जखायर से दूर रहें। मुंबई में आज दोपहर मूसलाधार बारिश के दौरान कुर्ला में एक दुकान पर एक दरख्त गिर जाने से एक 63 साल शख्स हलाक हो गया। बीएमसी ने बताया कि शहर में दरख्त गिरने के 64 और दीवार और जुजवी तौर पर मकान गिरने के 8 हादसात की खबर मिली है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से परवाजों के आने जाने में भी काफी रुकावट आई है। भारत के महकमे मौसमियात ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी समेत कोंकण जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में डांग, नवसारी, वलसाड़, भावनगर, अमरेली, गीर सोमनाथ और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली में कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई है। आईएमडी अहमदाबाद में साइंसदान प्रदीप शर्मा ने हमारे नामानिगार को बताया कि इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और माही गीरों को मशवरा दिया गया है कि वो अगले 5 दिन समंदर में न जाएं। इसी दौरान दिल्ली एनसीआर के बहुत से इलाकों में आज दोपहर औसत दर्जे की बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम में यकसर तब्दीली आई और लोगों को नमी वाले मौसम से कुछ राहत मिली। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस माह की 20 तारीख से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को 20 जुलाई से शुरू करने के लिए हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉ मोहन यादव ने आज शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस प्लांट की तामीर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ अडानी ग्रुप करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी की तारीख में आज एक नया बाब रकम किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से ये जिला सनती तरक्की, दिफाई साजो सामान की तैयारी और एक खुद कफील भारत के तस्वुर से वाबस्ता हो जाएगा। जनाब सिंधिया ने यह भी कहा कि शिवपुरी के मेहनती नौजवानों के जरिए बनाए गए हथियार और मिसाइल भारतीय फौज को मुस्तहकम करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना दौरा शुरू कर दिया है। वो इस दौरे में कतर, बहरेन, कुवैत और ओमान जाएंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जस्सीम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया, जिसमें बिलखसूस तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और अवाम का अवाम से राबता शामिल है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने कलीदी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की गरज से नए मौकों की जस्तजू की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय बिरादरी के तहफ्फुज और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और मगरबी एशिया तनाजे और उसके असरात के ताल्लुक से अपने जायजों से वाकिफ कराने के लिए उनकी तारीफ की। डॉक्टर जयशंकर इस माह की 13 तारीख को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे, जहां वो अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की 2028-29 की मुद्दत के लिए भारत की सरकारी मुहिम का आगाज करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इसके बाद तीसरी भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत और टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के अपने हमसबों से बातचीत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार में इस साल अगस्त से 188,000 बैरल रोजाना का इजाफा करने से इत्तेफाक किया है। ये फैसला तेल मार्केट की आलमी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वर्चुअल वसीले से मुनाकदा एक मीटिंग के बाद किया गया। आज इस मीटिंग के बाद जारी किए गए बयान में 7 ओपेक प्लस रुकन मुल्कों ने, जिसमें सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं, कहा है कि इस फैसले का मकसद मार्केट के इस्तेहकाम में मदद करना है। उन्होंने एक मोहतात और लचकदार तरीकेकार के तहत अपने अज़्म को दोहराया, जिसमें मार्केट के हालात पर इनेसार करते हुए तेल की पैदावार में इजाफे, इसे रोक देने या इसे कम कर देने के मुतबादिल भी शामिल हैं। तेल की पैदावार वाले इस ग्रुप ने कहा कि वो आलमी तेल मार्केट पर करीबी नजर रखता रहेगा। ग्रुप ने पैदावार के उन निशानों को भी पूरा करने की यकीन दहानी कराई जिन पर रजामंदी की गई है। ज़िराअत और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। जनाब चौहान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ इस स्कीम पर अमलावरी का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि रियासतों के पास खातिरखाह फंड्स मौजूद हों ताकि उजरतें 15 दिन के अंदर अंदर अदा की जा सके। जनाब चौहान ने यह भी कहा कि इस एक्ट के तहत 286,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अगले 5 बरस में सरमायाकारी की जाएगी ताकि विकसित भारत के तस्वुर को तेजी के साथ बढ़ाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि VBG रामजी एक्ट ने कामयाबी के साथ महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम की कायापलट कर दी है।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 286,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अदायगी के बाद पेश किए जाने वाले इश्तहारों में बच्चों के जिंसी एतबार से इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मटीरियल CSEAM पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। हुकूमत ने इंस्टाग्राम को हुक्म दिया है कि वो इस तरह के मटीरियल तक रसाई की सहूलत बहम पहुंचाने वाले और इस मवाद को फरोख देने वाले तमाम इश्तहारात को रोक दे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाआती टेक्नोलॉजी की वजारत ने इस सिलसिले में मेटा से 7 दिन के अंदर तफसीली वजाहत तलब की है। हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत की सालिसी के तहफुजाती रहनुमा खतूत पर अमल किया है या नहीं। उरिया फिल्में और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक वीडियोज की तशहीर डिजिटल कवानीन के तहत भारत में एक मुजरमाना खिलाफ वर्जी है। इससे पहले वजारत ने इन रिपोर्टों की बिना पर कि इंस्टाग्राम कुछ ऐसे काबिल एतराज वीडियो दिखाता है जिससे बच्चों के साथ जिंसी इस्तेहसाल की तशहीर होती है, अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए अफसरान को हिदायत जारी की थी कि वो इस सिलसिले में मेटा से जवाब तलब करे। हुकूमत ने आबनाए हुरमुज के रास्ते LNG लाने ले जाने के अमल की बहाली के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद हंगामी बंदिशें खत्म कर दी हैं। यह बहाली मगरबी एशिया तनाजे में जंगबंदी के बाद हुई है। इस सिलसिले में हंगामी अहकामात लाजमी अशिया के कानून के तहत इस साल मार्च में जारी किए गए थे जब आबनाए हुरमुज के रास्ते LNG लाने ले जाने वाले जहाजों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई थी। भारतीय बहरिया का तरबियती जहाज INS सुदर्शनी न्यूयॉर्क की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया। वो अमरीका के बैन अलाक्वामी नेवल रिव्यू 2250 और सेल 14th 250 तकरीबात में भारत की नुमाइंदगी करेगा। हटसन दरिया में कल कश्तियों की परेड के दौरान मशहूर जमाना 3 मस्तूल वाली कश्ती ने बड़े फखरी अंदाज में भारतीय तिरंगा लहराया, जो भारत की फरामा समंदरी सरहद की सकाफत और सदियों पुराने समंदरों के सफर की रिवायत का जश्न था। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जत्था यात्रा के अगले मरहले के लिए चंपावत जिले के टनकपुर इलाके से रवाना होगा। पहला जत्था 49

0: यों पर मुश्तमिल है, जिनमें एक डॉक्टर, 34 मर्द और 15 खवातीन शामिल हैं। दुनिया भर में मारूफ पांडों की दास्तान बयान करने वाली पद्म विभूषण एजाज याफ्ता डॉक्टर तीजन बाई की आज शाम दुर्ग जिले के उनके आबाई गांव गनियारी में सरकारी तौर पर आखिरी रसूम अदा कर दी गई। उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक सकाफत को आलमगीर मकबूलियत अदा की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया के अहलकारों, फनकारों, अदीबों और हजारों सोगवारों ने आर्ट की इस शोरे आफाक शख्सियत को नम आंखों से खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान के जेरे कब्जा कश्मीर में कशीदगी के उस वक्त बढ़ गई जब पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से मुबैना तौर पर मुजाहिरीन पर गोली चलाए जाने के वाकये में एक शख्स हलाक और दीगर मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ये वाकया बुनियादी हुकूक, माशी राहत और सियासी आजादी पर जारी एहतजाज मुजाहिरों के दौरान पेश आया। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद के खिलाफ मुजाहिरों के बाद खित्ते में 600 से ज्यादा सिविल हुकूक के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इंग्लैंड में मुकीम कश्मीरी बाशिंदों ने मुजाहिरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए एहतजाज किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कराची शहर में अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों के एहतजाज ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स बकाया वजीफों की अदायगी, बेहतर सिक्योरिटी और अस्पताल में अच्छी सहूलतों का मुतालबा कर रहे हैं। डॉक्टरों ने मुतनब्बे किया है कि अगर उनके मुतालबात न माने गए तो वो खिदमात मुअत्तल कर देंगे। ईरान के सियासी, मिलिट्री और मजहबी कायदीन ने आज तेहरान में साबिक अजीम रहनुमा मरहूम आयतुल्लाह खामेनेई की नमाज जनाजा में शिरकत की। सरकारी टेलीविजन की खबरों के मुताबिक अजीम रहनुमा के तीनों बेटों मसूद, मेसम और मुस्तफा ने तेहरान के मुसल्ले आजम में जनाजे की क़यादत की। इस मौके पर सदर मसूद पेजिशकियां, पार्लियामानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और आला कमांडर भी मौजूद थे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उनके मुल्क के तारीखी दौरे के 100 साल पूरे होने के मौके पर 2026 और 27 के दौरान 15 महीने तक जारी रहने वाले प्रोग्राम के जरिए इसकी याद बनाएगा। आकाशवाणी के खबरों के शोबे में खसूसी बातचीत करते हुए इंडोनेशिया के लिए भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि यादगारी तकरीबात का इफ्तिताह कल से शुरू होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के दौरे में होगा। फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात न्यू जर्सी में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक 1:30 पर खेला जाएगा। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको सिटी में कल सुबह 5:30 पर इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। आज सुबह फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल के एक मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे पर 0-1 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस के कप्तान ने वार की तरफ से मिलने वाली स्पॉट किक पेनल्टी पर मैच के 70वें मिनट में वाहिद गोल किया। आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप फाइनल में अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 ओवर्स में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। पूरे भारत में जुनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल इजाफे से इत्तेफाक किया है। खबरें खत्म हुई।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और लोकगीतों की धुन पर मुस्कुराता है। इस बात संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान, आलेख है शाहिद अनवर का और इसे प्रस्तुत किया है राजीव रंजन तिवारी ने।

0: आज हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आंखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपने श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंची इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी MDs आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियन, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश है, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकते। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीबी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं,
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन्स ऑफ कार्बन इमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन्स है, उसी का भी घर में, जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है, एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहां ये सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो TMH में लोड कम होता है। बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग 1000-1200 crores एवरी ईयर टू ब्रिंग इट टू लेवल वेयर पीपल इवन एट 500 meters। अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
0: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती, बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं।
1: आज के जनरेशन के एम्प्लॉयज से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम 3rd generation है, 4th generation है, कुछ एम्प्लॉयज मिलेंगे जो बोलेगा 5th generation है। नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जितना शॉप है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट है, सिंगबूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय

0: लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे, उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का, इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल को कैसे उत्पन्न कर सकेंगे, बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है, जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
1: ईंट पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास। यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं, जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश के धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप
2: ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
3: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही है इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होती है।
4: अपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है।
3: यहाँ से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ है, अगले ही महीने वहाँ का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता
4: है। थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती हैं कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहाँ से होता है ताकि आगे जाकर की जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
1: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
4: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
1: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में NML इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
4: हमारा उद्देश्य ये है, कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाइपर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है, शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज व्हाट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री व्हाट वर्क्स इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई-वेस्ट रिसाइकलिंग।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
5: एनआईटी जमशेदपुर 31 एनआईटी से देश का एक एनआईटी है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में, तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग

0: नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फीड उपलब्ध कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं।
1: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है। प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं,
0: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन में गया। इधर से एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग EV, रोबोटिक्स, अभी AI का जो आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे। प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
0: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही तैयार करना बहुत जरूरी है। उन लोग को बोलना है जे भाई, ये इट्स नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म, यू डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
1: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
2: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है जो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
1: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉरपोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारी आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
3: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये लगाए, हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग कम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस ऋषि मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उसमें और जिम्मेवारी लगा, और जोश लगा, तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग SHG ग्रुप का काम किया।
1: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का

0: मौका भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
1: बहुत कोशिश की है, बहुत संघर्ष की है, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
0: एक सुदूर गांव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
1: आज पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूंगी।
0: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराई कला। सोहराई के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
2: सोहराई पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में, और युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है, लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
0: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराई पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
2: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ा मादर की थाप घुसती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारे जनजातीय कलाकारों विचारकों और साहित्यकारों बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
0: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हीं को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
3: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह, पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
0: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सकें।
3: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी जाते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं। तो मैं सोचूं लाइफ जिंदगी सार्थक है, और बार बार यही सोचती हूं कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
0: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में

0: रेड बुल चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
1: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
2: इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी अकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं इंडिया को रिप्रेजेंट, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपनी पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहाँ लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है TFA का।
1: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
2: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉल है। ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व है और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी इस स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
1: हॉकी भारत के दिल में बस्ती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे

0: स्टोर को वापस लाने की है।
1: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल सिनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स, जहां पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस आरडीसी लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
0: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
2: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आँखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या बिष्टुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी। शहर का रूप रंग बदला है लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं है। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
0: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत, प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आँखों का उजाला है। जमशेदपुर जहाँ कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहाँ प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहाँ खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहाँ संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहाँ विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।
3: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी वादन। कैलाश शर्मा का संगीत जगत से परिचय बचपन में ही हो गया था। बांस से बने इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली मधुर ध्वनियों से प्रेरित होकर उन्होंने नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय में श्री प्रकाश एन सक्सेना से बांसुरी सीखना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने पंडित विनय चंद्र मौदगल्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का भी अध्ययन किया। बांसुरी कैलाश शर्मा के जीवन का अभिन्न अंग बन गई और उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अंतर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तब से लेकर आज तक कैलाश शर्मा ने अपने व्यावसायिक जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने भारत तथा विदेशों के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं और उनके संगीत को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है। उन्होंने महान संगीत सम्राट पंडित रविशंकर के साथ अनेक अवसरों पर कार्य किया तथा विश्वविख्यात रंगकर्मी श्री पीटर ब्रुक द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए उनका चयन किया गया। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा मध्य पूर्व के 10 देशों की यात्रा पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकल वादक के रूप में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया। कैलाश शर्मा ने राजधानी में आयोजित अनेक प्रमुख संगीत समारोहों में एकल वादक के रूप में प्रस्तुति दी है, जिनमें विष्णु दिगंबर जयंती, शंकर लाल संगीत समारोह, सेहर तथा नैना देवी स्मृति समारोह प्रमुख हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित कैलाश चंद शर्मा। पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक व्हाइल ही वॉज स्टिल अ चाइल्ड। इंस्पायर्ड बाय द साउंड्स दैट इमानेटेड फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ बैम्बू, ही स्टार्टेड लर्निंग द फ्लूट फ्रॉम श्री प्रकाश एन सक्सेना at Gandharva Mahavidyalaya, New Delhi. Later, he also learnt the nuances of the Indian classical music from Pandit Vinay Chandra Modgalya. The flute became an integral part of Kailash Chandra Sharma's life and he played on, participating in and winning prizes at inter-college university level music competitions. Since then, Pandit Kailash Chandra Sharma has come a long way professionally, having performed a great deal in India and many countries abroad. He has worked with the great maestro Pandit Ravi Shankar on many occasions and was selected to participate in a workshop organized in Paris by the renowned theatre personality Mr. Peter Brook. He was sent on a tour for 10 countries in the Middle East by the ICCR to perform as a soloist. Pandit Kailash Chand Sharma has performed as a soloist in some of the major music festivals that are held in the capital, such as Vishnu Digambar Jayanti, Shankar Lal Music Festival, Seher, the Naina Devi Memorial Festival, to name a few.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित विनोद लेले। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मालगुंजी से कर रहे हैं। विलंबित रचना एक ताल व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: Today he is accompanied on tabla by Pandit Vinod Lele. Kailash Chand Sharma begins his flute recital with Rag Malgunji. Vilambit composition is set to Ek Taal and Drut composition is set to Teen Taal.

0: ये था पंडित कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद्र शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड in the studios of Akashvani Delhi. This program came to you from Delhi station of Akashvani.

0: आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में

0: तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall tomorrow has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath and Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli tomorrow. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather this afternoon with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much-needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of a defense manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Sindhya said, a new chapter is being written in Shivpuri's history today. Not only missile propellant, but also explosives, missile assembly and some of the world's most advanced weapons will be manufactured in Shivpuri. This is the largest investment by a private sector company in South Asia. Mr. Sindhya said, the project will connect the district to industrial development, defense production and the vision of a self-reliant India. Prime Minister Narendra Modi will embark on a state visit to Indonesia from tomorrow till the 8th of this month. This will be Prime Minister Modi's fourth visit to Indonesia. The Prime Minister will hold bilateral discussions with President Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of cooperation under the strategic partnership. In Jakarta, the Prime Minister is also scheduled to address a large gathering of the Indian diaspora. Coinciding with Prime Minister Modi's visit, Indonesia will launch 15-month-long commemorative programs marking the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to the country. Talking to Akashvani News, India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakravorty said, celebrations will include exhibitions and year-long cultural programs highlighting the deep cultural ties between India and Indonesia. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar began his official visit to West Asia today, covering Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman. On the first leg of his visit, Dr. Jaishankar reached Doha, where he met Qatari Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. Both the leaders reviewed various facets of bilateral cooperation, especially energy, trade, investments, connectivity, security and people-to-people ties. In a social media post, Dr. Jaishankar said, they explored new opportunities for deepening the strategic partnership. Dr. Jaishankar thanked Mohammed bin Abdul Rahman for ensuring the safety and well-being of the Indian community and appreciated his sharing of assessments on the West Asia conflict and its impact. In the ICC Women's T20 World Cup final, chasing a target of 151 runs set by England, Australia were 137 for the loss of 2 wickets in 15 overs at Lord's Cricket Ground in London when reports last came in. Earlier, Australia won the toss and opted to bowl first. Put to bat, England scored 150 for 4 in stipulated 20 overs. Skipper Natasha Brunt was top scored with an unbeaten 58 runs, while Freya Kemp made 44 runs. In the FIFA World Cup, Brazil will take on Norway in the round of 16 match in New Jersey at 1:30 a.m. Indian Standard Time tonight. England will face Mexico in Mexico City in the other pre-quarterfinal at 5:30 a.m. tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की द्वितीय प्रसारण सभा अब संपन्न होती है। प्रथम प्रसारण सभा में प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।